मरुक सुराय दीर्घत मच जावेस कर जाए निरसिकित फल पिके फल बक बके कम ना आवे पत मिटत नीवी नानका गुण चंगियाया तत सबको निवे आपको पत।

जमाने में जो हंता मिर्ग आगे शीस नाय क्या थी है जर दे कुछ दे जाए मोहल्ला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादन सिर पुष्पक समादन मुख छूट भूख संसारन त्रैपाल तिहार विचारन गल माला दिल गलाटन धोती बसर कपाटन जे जानस ब्रह्म कर्म साफो कर निश्चो कर्म नानक नेह चो ध्यावे बिन सतगुरु

मुक्तियां हटिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया बंड छकिया देख चलाई ते दवाही देख के अन डिट किता प्यारे।

तमिल सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चत अमन का सबका सब सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रे आयत, बेगत बफत बिरद की पैज, पंत की जीत श्री साहिब जी सहाय, खालसा जी के बोल बल बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखानू सिखी दान केस दान रहत दान, विवेक दान विसाह दान प्रसाद दान, दान सरदान नाम दान, सुरे अमृत सर साहिब जी दे दर्शन कृष्णान, चौंकिया चंदे बुंदे जुगे जुगे अटल, परम का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उचे, मत पत दा रख आप वाहे गुरु, से अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जिया, श्री ननकाण साहेब अते होर गुरुद्वारे अंदर धम्मा दे जना तो पंथ नु भी छोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दादान, खालसा जी नु बख्शो हे नमाणे आंदे मान, वे ताणे आंदे प्राण, लोटे आंदी ओट धन धन, श्री गुरु रामदास साहिब जी आप जी दे पावन पवित्र स्थान, सचखंड श्री हर मंदिर साहिब जी विखे, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर, शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास, भुल चुप माफ करनी सच्चे पातशाह जीओ, जना जना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों प्रसाद भेटा कीता गया।

सर्वासन समूह संगतन अपने कल्याण दी अरदास सतगुरु जीओ सर्वत साध संगत में अपने दरों करों सके सदका परसान नाम दान बख्शना शुभ पावनावान पूरिया करनिया आप जी दे हाजूर कहा प्रसाद दी दे हाजर हैं दार प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे राम चित आवे सिखा पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद हुआ नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दाम पला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतह।

मुंशी सरवनकारी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सदा प्रसारण आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस की पंजाबी सेवा नजर तुहाडी कर रहे हैं सूफियाना कलाम

रोरो वाट निहारा सावल मोड़ मुहारा बी एस नारंग दे गाए गुलाम फरीद दे इस कलाम दे नाल ही नेबरहुड सर्विस दी पंजाबी सेवा दी पहली सभा हुण इत्थे खत्म हुंदी है। एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ ते असीं आकाशवाणी दे अमृतसर केंद्र तो बोल रहे हां। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।

यह आकाशवाणी की सिंधी सरसाएं 9870 किलोहर्ट से तय समय आकाशवाणी की सिंधी सर्विस रोज ऑन एयर ऐप एंड डिफर डिश तक भी सघंदा आहियो। प्रोग्राम शुरू थी चुको है, डिटेल्स कुछ न कराएं। थोड़ी देर में हमेशा अवां भगत कलाम साहब जन के मिठड़े आवाज में कलाम बुधंदा, तंखा पोए तवां तकरीर बुधंदा। उन्होंने आहे सिंध के माजी जानी तकरीरकार जनाब अर्जुन शाह, ऐं तंहिंखां पोइ कुझु हुब वतनी गीत पेश कंदा। इहा त असांजे प्रोग्राम जी तफ़सील। हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे। हींअर छो त भगत कलाम जन जो मिठो आवाज़ ॿुधूं।

Bye.

0: हाँ भगत का राम जन जो सदाबार आवाज सुधरिया ही आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आए हर पेशा तक ऑन आए सिंध जे माजी जानिया तकरकार जनाब अर्जन शाद
1: उहे भी के दी हुआ सिंध जो यादू विसरण जो ना है उहे माजी जा मजा रूह जी तकलीयत अज भी जी में नई जान भरे छदिन सिंधुओ जो छोह भरी छोलियूं सखर बराज लाड़काने जो घाड़वाह हैदराबाद जी फुलेली कराची जी क्यामाड़ी ए क्लिफ्टन मुझे जिंदगी जे अर्तका जो हिस्सो आहिन छोजो मां जाओ होस सखर में मेरे पुणे

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है 9870 किलोहर्ट्ज़ पे। आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डीडी फ्री डिश से बुझी सकता है। आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुझा हिरपेश एंड हुबवतनी गीत है।

ਸਜਾ ਕਦੇ ਮਿਟਾਏ ਨਾ ਸਜਾ ਕਦੇ।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी आहे हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे वरी असां मुलाक़ात थींदी सुभाणे सुबुह जो यानी कि भारतीय वक़्त मुताबिक़ 6:30 ताईं ईंदा मोकल सदाईंगढ़।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉ काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती

0: राज्य समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच करने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में इन भाषाओं पर उच्च स्तर का शोध किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सत्यन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मछार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह में पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने श्री स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। श्री नेतन्याहू ने कैप्टन मछार के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले साल 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके तहत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नवद्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित करने की भी योजना बना रही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में कॉफी की खेती का विस्तार करने, उत्पादकता और कॉफी बीन्स की गुणवत्ता बढ़ाने तथा मजबूत मूल्य श्रृंखला के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया और राज्य के कृषि विभाग द्वारा आयोजित हिल्स टू कप कॉफी कार्यशाला में कहा कि राज्य सरकार कार्यशाला में दिए गए सुझावों पर आगे कार्रवाई करेगी और कॉफी उत्पादकों को हर संभव सहायता देगी। एशियाई खेल आज भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न होंगे। समापन समारोह जापान के नागोया सिटी मिजुहू पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। भारतीय समय के अनुसार ये कार्यक्रम शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted several parliamentary committees related to different ministries. BJP MP Bharthru Hari Mehtab has been appointed as the chairperson of the Committee on Finance, comprising 21 members from the Lok Sabha and 10 members of Rajya Sabha. Mr. Birla has appointed Congress MP Shashi Tharoor as chairperson of the Committee on External Affairs. It includes 21 members from the lower house and 10 from the upper house, while the Committee on Railways will be headed by BJP MP Sudhir Gupta. Mr. Birla has appointed Lok Sabha MP Dr. Kakoli Ghosh Dastidar as the chairperson of Committee on Chemicals and Fertilizers. Congress MP Charanjit Singh Channi will be the chairperson of Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीत का। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। और अब वक्त हुआ है गीतों भरी क्विट मॉर्निंग का। जी हाँ,

जी हाँ, और गीतो भरी गुड मॉर्निंग के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल सही बात है कि खुदा कहाँ रहता है, भगवान कहाँ रहता है, ईश्वर कहाँ रहता है। तो सबको सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग और आदाब। और इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल सुबह सुबह प्रकृति को देखने की खुशी के साथ साथ हम भगवान के भी दर्शन

और ठंडी ठंडी हवा, पेड़ों पे आती चिड़ियों की चहचहाट और घास पर चमकती उसकी बूंदें, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने पूरी दुनिया को खूबसूरत तोहफा दिया हो। सुबह सुबह जब हम बाहर निकलते हैं तो आसमान का रंग भी कुछ अलग ही नजर आता है, कहीं हल्का नारंगी और कहीं सुनहरा और कहीं नीला आसमान। सूरज की रोशनी जैसे हर चीज में नई जान भर देती है।

जी हाँ बिल्कुल सही। और जब सुबह सुबह हम बाहर निकलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत जब हवा चल रही होती है और प्रकृति के नज़ारों को देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा हमें खुशी का एहसास होता है। जी हाँ, और खास तौर पर जब सबसे खास बात ये कि सुबह की खूबसूरती हमें बिना कुछ कहे बहुत कुछ सिखा जाती है, और ये सिखाती है कि हर दिन एक नई शुरुआत है। कल जैसा भी हो, कल जैसा भी रहा हो, पर आज का सूरज हमें एक नया मौका देता है। कुछ पल अगर हम मोबाइल और भागदौड़ की भरी जिंदगी से दूर होकर सिर्फ प्रकृति को देखें तो मन की सारी थकान जैसे धीरे धीरे खत्म हो जाती है।

आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग सिमरन कौर के साथ। जी हाँ, और जब ठंडी हवा चेहरे को छूती है तो ऐसा लगता है कि प्रकृति खुद आकर ये कह रही हो कि रुक जाओ, कुछ पल मेरे साथ है तो बताओ। क्योंकि सुबह की सैर सिर्फ शरीर के लिए अच्छी नहीं होती बल्कि मन के लिए भी खूबसूरत एहसास है। जब हम उगते हुए सूरज को देखते हैं तो अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, तो ऐसा लगता है कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, अंधेरी रात के बाद एक सुबह तो जरूर ही आ जाती है।

और हम ये कहेंगे कि खास तौर पर कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, बहुत ही खूबसूरत होती है अगर हम उसे समझकर बिता दें तो। यानी कि हम अगर समझना चाहें कि शायद इसी वजह से सुबह की प्रकृति को देखने की खुशी भी पूरी तरह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि इसे महसूस करना जरूरी है। ठंडी हवा में, चिड़ियों की आवाज में, पत्तों की सरसराहट में और सूरज की पहली किरण में।

तो क्या अगली बार जब सुबह हो तो कुछ मिनट के लिए, यानी कि कुछ मिनट अपने लिए भी निकालें, क्योंकि अपने लिए निकालना बहुत जरूरी है। और बाहर जाइए, आसमान को देखिए, पेड़ों को देखिए, पक्षियों की आवाज सुनिए और बस उस पल को महसूस कीजिए, क्योंकि जिंदगी की असली खुशी हमेशा बड़ी चीजों में नहीं होती, छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातों में होती है।

और हम ये कहेंगे कि कभी कभी सुबह की शांत हवा, सूरज की एक किरण और प्रकृति का एक खूबसूरत नजारा ही हमारे पूरे दिन को खुशनुमा बनाने के लिए काफी होता है, क्योंकि हम अगर सुबह मुस्कुराते हुए घर से निकलें तो कितना खूबसूरत लगता है, और अगर यही मुस्कुराहट कोई देख भी ले और हमें पूछ भी ले तो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी मुस्कुराने लगता है, क्योंकि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता।

जी हाँ, और ऐसे ही गीतों भरी गुड मॉर्निंग के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी आपकी दोस्त और होस्ट सिमर कौर। दीजिए मुझे अनुमति, आपसे फिर मिलूंगी और हमें यूं ही सुनते रहिएगा इंद्रप्रस्थ चैनल पे। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। नए अध्यक्ष किए नियुक्त। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का कड़ा विरोध किया। पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया आमंत्रित। और जापान के नागोया में आज एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह, भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी ध्वजवाहक। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता

0: करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता दान करेगी। इन 5 केंद्रों की स्थापना भारत की शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन, अनुसंधान और संरक्षण के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया।
2: भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। सीमा सुरक्षा बल BSF ने उन्हें कई बार वापस लौटने की चेतावनी दी, लेकिन वे सीमा बाढ़ की ओर बढ़ते रहे। इसके बाद BSF को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच कराने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में युवा प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन होगा। इसमें दुनिया भर से भारतीय मूल के युवा, कारोबारी, पेशेवर, शिक्षाविद और नवाचार से जुड़े लोग शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस का यह 19वां संस्करण दुनिया भर में रह रहे भारतीय समुदाय के भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने पर केंद्रित होगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने कैप्टन स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। श्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। ये सम्मान इसीलिए खास है क्योंकि इसराइल में स्वतंत्रता दिवस पर ज्योति जलाने का सम्मान आमतौर पर केवल इसराइल नागरिकों को दिया जाता है। कैप्टन स्मिथ का इस समय अबू धाबी में उपचार चल रहा है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लेंडो ने भी भारतीय पायलट स्मिथ के अदम्य साहस की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि पायलट स्मिथ ने एक भयावह घटना को होने से बचा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इस भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास

0: किए जा रहे हैं। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको देश में विकसित हो रहे आधुनिक नागरिक उड्डयन ढांचे और हवाई अड्डों पर उपलब्ध विश्व स्तरीय सुविधाओं से परिचित कराएंगे।
1: बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज यात्रियों और कार्गो के लिए एक बड़ा हब बन गया है, जो टेक सिटी बेंगलुरु को भारत और दुनिया भर की जगहों से जोड़ता है। 2025-26 के दौरान यहां 4 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की, जिसमें अकेले इंटरनेशनल यात्रियों की संख्या में लगभग 24% की बढ़ोतरी हुई। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस एयरपोर्ट में लगभग 2.8 लाख विमानों का आना जाना भी दर्ज किया गया। पिछले साल यहां 5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कार्गो को संभाला, जिससे कारोबार भारत और विदेशों के बड़े बाजारों से जुड़े। मॉडर्न चेक इन, डिजी यात्रा और बैगेज सुविधाएं, फ्लाइट की जानकारी देने वाले डिस्प्ले, लॉन्च और शानदार इंटीरियर की वजह से सोशल मीडिया पर इसकी काफी तारीफ हुई है। T2 का टर्मिनल इन द गार्डन कॉन्सेप्ट, जिसमें हरी दीवारें, छत से लगे बागान, सुंदर लैंडस्केप और सूरज की स्वाभाविक रोशनी को फिल्टर करने वाले इंजीनियर बांस का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको याद दिलाता है कि बेंगलुरु को गार्डन सिटी भी कहा जाता है। यह एयरपोर्ट यात्रियों की सुविधाओं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, अनोखे आर्किटेक्चर और कड़ी सुरक्षा का बेहतरीन मेल है। साथ ही यह उस शहर की पहचान को भी दिखाता है जिसकी ये सेवा करता है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नव द्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित करने की भी योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रिजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मतदान मंगलवार 6 अक्टूबर को होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में भाजपा उम्मीदवार हसी रानी रथ के समर्थन में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। स्पष्ट और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित कराने के लिए दोनों विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान ने कहा है कि अमेरिका के बढ़ते आर्थिक दबाव और प्रतिबंधों के बीच ईरान ने नई व्यवस्था अपनाई है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति पजिश्कियान ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान की अर्थव्यवस्था और वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा रहा है। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिवेहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। यह बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संघर्ष खत्म करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले जारी रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस ने कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों से आम लोगों को विस्थापित करने के उद्देश्य से हवाई हमले तेज करने की नई नीति अपनाई है। श्री जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे पता चला है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सर्दियों से पहले नागरिक ठिकानों पर हमलों का दायरा बढ़ाने वाली नई सैन्य नीति को मंजूरी दी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी शेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो की याद में आयोजित की जा रही है। श्री शेखो ने वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। और अब जापान में आज होने वाले एशियाई खेलों के समापन समारोह की जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं आज जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होने वाले भव्य एशियाई खेलों के समापन समारोह के साथ। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक महिला निशानेबाज नीरू होंगी। वो तिरंगा लेकर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। समारोह में खिलाड़ियों की परेड और खेलों के औपचारिक समापन सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए क्रिकेट की, तो भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है।

0: ने दो मैच जीतने के बाद भारत को कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए अंतिम मैच में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। तो फरहत, ये थे अब तक के कुछ खेल समाचार।
1: मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 2 दिन में बिजली कड़कने, तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश की संभावना है। वहीं कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद फरहत। 20वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, गोल्डन 5 के साथ चौथे स्थान पर पहुंचा भारत। पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर जीता स्वर्ण। पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर कटाया ओलंपिक टिकट। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, स्वर्णिम उछाल, क्रिकेट से लेकर हॉकी में गोल्ड मेडल। हिंदुस्तान ने उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन के आर्थिक सम्मेलन में संबोधन का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना जरूरी। उपराष्ट्रपति ने कहा, समावेशी विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अमर उजाला ने युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति शीर्षक से लड़ाकू विमानों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, तेजस, राफेल और F-35 ने एक साथ भरी उड़ान। बच्चों की देखभाल के लिए पिता को भी मिल सकती है छुट्टी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने निजी क्षेत्र के पुरुष कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव देने समेत 37 सिफारिशें दी, दैनिक जागरण की सुर्खी है। स्क्रीन का घातक नशा, भारतीय रोजाना गवा रहे 141 करोड़ घंटे। भारत में 66 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे, राजस्थान पत्रिका में है। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों में दिखेगी राम राज्य की झलक। पंडाल में भगवान राम और हनुमान की होगी मूर्तियां, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने राजस्थान में हाड़ोती के प्रसिद्ध डोल मेले की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, झिलमिल रोशनी, झोलों की रफ्तार, डोल मेले में उमड़ रहा हाड़ोती।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया, नए अध्यक्ष की नियुक्ति। शिक्षा मंत्रालय में शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का विरोध किया, पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम निशित कुमार। द हेडलाइंस। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रिकॉन्स्टिट्यूट्स सेवरल डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमिटीज फॉर 2026-27 टर्म। यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री अप्रूव्स 5 न्यू सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल लैंग्वेजेस, एसमीज, बंगाली, मराठी, पाली एंड प्राकृत। इंडिया समन्स पाक एनवॉय टू रजिस्टर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट ओवर कंटिन्यूड फैसिलिटेशन ऑफ इलीगल क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान। 19th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन टू बी हेल्ड फ्रॉम द 7th to 9th of January next year in Kolkata. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu describes Indian pilot Smith Macher, hero of Israel, India and entire world, invites him and Prime Minister Narendra Modi to Israel's Independence Day ceremony. And Asian Games 2026 to conclude today at Nagoya in Japan. Trap shooter Neeru Dhanda to be India's flag bearer for the closing ceremony. Now the news in detail. Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted several parliamentary committees related to different ministries. BJP MP Bharthruhari Mehtab has been appointed as the chairperson of the Committee on Finance comprising 21 members from Lok Sabha and 10 members from

0: की असर नौ तश्कील की है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट भारद्वाज महताब को खजाना की कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है, जिसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 अरकान शामिल हैं। जनाब बिरला ने कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर को उमूर खारजा की कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया है। इस कमेटी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 अरकान शामिल हैं। रेलवे की कमेटी की सरबराही बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट सुधीर गुप्ता करेंगे। जनाब बिरला ने लोकसभा की रुकना डॉक्टर काकुली घोष दस्तेदार को केमिकल्स और खादों से मुतालिक कमेटी का चेयरपर्सन मुकर्रर किया है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट चरणजीत सिंह चुन्नी जरात मवेशी परवरी और खुराक के डब्बाबंद कमेटी के चेयरमैन होंगे। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट राधा मोहन सिंह दिफा से मुतालिक कमेटी के चेयरमैन होंगे। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट राजीव प्रताप रूडी की आबी वसाइल से मुतालिक कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है, जबकि देही तरक्यात और पंचायती राज से मुतालिक कमेटी की सरबराही कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट सप्तगिरी उलाका करेंगे। इसी तरह बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे को मवासलात और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। इन कमेटियों की मुद्दत कार पिछले महीने की 26 तारीख से नाफिजुल अमल हुई। तालीम की वजारत ने क्लासिकी जबानों के मुतालियात के लिए 5 महारत के मराकज के क्याम की मंजूरी दी है। आला तालीम के महकमे ने क्लासिकी आसामी, क्लासिकी बंगाली, क्लासिकी मराठी, क्लासिकी पाली और क्लासिकी प्राकृत के मुतालियात के लिए 5 महारत के मराकज के क्याम की मंजूरी दी है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये महारत के मराकज आसाम की तेजपुर यूनिवर्सिटी, मगरबी बंगाल की विश्व भारती यूनिवर्सिटी, पुणे के दक्कन कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में कायम किए जाएंगे। इस इकदाम के तहत आला सतह की इल्मी तहकीक, लसानी व अदबी विरसे के तहफ़ और इसे डिजिटल शक्ल देने, नीज इन क्लासिकी जबानों से मुतालिक इल्मी मालूमात को वसी पैमाने पर आम करने के लिए खसूसी इदाराजाती ताउन फराहम किया जाएगा। इन 5 मराकज का क्याम भारत की क्लासिकी जबानों के मुताले तहकीक और तहफ़ के लिए इदाराजाती निजाम को मजीद मजबूत बनाने की समत में एक अहम कदम है। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: 19वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन अगले साल 7 से 9 जनवरी तक मगरबी बंगाल में कोलकाता में मुनाकिद किया जाएगा। कन्वेंशन वजारत खारजा और मगरबी बंगाल सरकार के इश्तराक से मुनाकिद किया जाएगा। इसका इफ्तिताह वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे, जबकि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इफ्तिताही इजलास की सदारत करेंगी और प्रवासी भारतीय सम्मान एजाजात तकसीम करेंगी। वजारत खारजा के मुताबिक प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी को खराज अकीदत के तौर पर मनाया जाता है, जो 9 जनवरी 1915 को जनूबी अफ्रीका से भारत वापस आए थे। अपग्रेड किए गए आईटीआईस के जरिए प्रधानमंत्री हुनरमंदी और रोजगार के मौके फराहम करने वाली स्कीम पीएम सेतु का आज एक साल मुकम्मल हो गया है। हुनरमंदी की तरक्की और एंटरप्रेन्योरशिप की वजारत की स्कीम पीएम सेतु का आगाज पिछले बरस 4 अक्टूबर को हुआ था। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इस स्कीम का मकसद सनअत पर मबनी हुक्मरानी को मजबूत करना, तरबियत से मुतालिक बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना और उभरती हुई अफरादी कुव्वत की मांग के मुताबिक कोर्सेज को फरोग देना शामिल है। यह स्कीम भारतीय सनअती तरबियती इदारों आईटीआईज को जदीद सनअत से हमाहंग तरबियती इदारों में तब्दील करके पेशावराना तरबियत और बेहतर मयार के मौके फराहम करती है। स्कीम की मजमूई लागत 60,000 करोड़ रूपये है, जिसमें 30,000 करोड़ मरकज की जानिब से, 20,000 करोड़ रियासतों की जानिब से और 10,000 करोड़ रूपये सनत की तरफ से ताउन शामिल है। आईटीआईज नौजवानों को पेशावराना तरबियत से आरास्ता करते हैं और उनके लिए सनत में रोजगार के मौके पैदा करते हैं। दस्तकारी की तरबियत की स्कीम सीटीएस के तहत सरकारी और प्राइवेट सनअती तरबियती इदारों में इंजीनियरिंग और गैर इंजीनियरिंग से मुतालिक रोजगार के लिए तरबियत दी जाती है। इस कोर्स की मुद्दत 6 महीने से 2 साल तक है। दिल्ली से हर्षिता ओझा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: नीति आयोग के रुकन राजीव गाबा ने तेजी से तब्दील होते हुए जुग्राफियाई, तकनीकी और इक्तसादी माहौल से हम आहंगी करते हुए एक इंजिबाती फ्रेमवर्क तश्कील करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पॉलिसी साजों के सामने इंजिबात और तरक्की के दरमियान किसी एक का इंतखाब करना ही एक चैलेंज नहीं है, बल्कि ऐसे जाब्तों को तय करना है जो इख्तिरा, मुसाबकत और सरमायाकारी की हिमायत करते हुए खतरा से निमट

0: रेखा का मतलब होता था मोटे तौर पर या तो एक्सट्रीम अच्छाई रेखांकित करना या बहुत जो बुरा है उसको बताना। शुक्ल जी ने बताया कि किताब को ठीक से कैसे पढ़ा जाए, ये बहुत बड़ा योगदान है, और समझकर परखकर उसके ऊपर कैसे लिखा जाए ये भी उन्होंने सिखाया। तो ये पहला ढंग का काम था हिंदी आलोचना को लेकर, और इसी काम को रामविलास शर्मा ने आगे बढ़ाया। इन दोनों के बीच में जो हिंदी आलोचना है या हिंदी साहित्य को देखने की जो इतिहास दृष्टि है वो पनपती हुई दिखाई देती है। डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं इस बारे में?
1: जी आपने जो शुक्ल जी के बारे में और रामविलास जी के बारे में जो बातें कही हैं, मैं तो सोचता हूं कि अगर रामचंद्र शुक्ल न होते तो हिंदी आलोचना का जो आज रूप है वो शायद इतना जल्दी नहीं होता। रामचंद्र शुक्ल की जो मेरी दृष्टि में खासियत है कि उन्होंने सबसे ज्यादा जोर जो है वो रचना की क्लोज रीडिंग कैसे की जाए, इसका सर्वोत्तम उदाहरण जो है आप रामचंद्र शुक्ल की आलोचना में पाएंगे, खासतौर से तुलसीदास।
0: तुलसीदास
1: उनके प्रिय कवि थे
0: जी,
1: और तुलसीदास पर उन्होंने जो लिखा है, नए लोगों को कई बार शुक्ल जी को समझने के लिए वो एक तरह से उनकी आलोचना की धार क्या है और उनकी आलोचना का मर्म क्या है और धर्म क्या है, ये तीनों तत्व जो है आप पाएंगे कि रामचंद्र शुक्ल जो है किस तरह से जगह जगह तुलसीदास को रेखांकित करते हैं। एक और बात मैं ये कहना चाहता हूं कि रामचंद्र शुक्ल रचना में वो सबसे ज्यादा लोक मंगल को महत्व देते हैं, और तुलसीदास को इसीलिए उन्होंने मेरुदंड कवि कहा, और लोक मंगल की भावना जो तुलसीदास में है जिसको बाद में विश्वनाथ त्रिपाठी ने लोकवाणी तुलसीदास किताब वो भी उसी परंपरा में,
0: उसी परंपरा में है।
1: तो ये जो लोक मंगल की अवधारणा है मुझे लगता है कि इस चीज को आगे के आलोचकों ने जैसे नामवर सिंह ने, रामविलास जी जिनकी चर्चा आप कर रहे थे, इन लोगों ने भी पकड़ा है। जो सामाजिक यथार्थ की पहचान की बात मार्क्सवादी आलोचना करती है उसकी एक तरह से पूर्व पीठिका जो है वो शुक्ल जी ने तैयार कर लेते। तीसरी जो चीज है वो आप देखिए कि शुक्ल जी की आलोचना में जैसे भक्तिकाल का मूल्यांकन करते हुए उन्होंने कहा कि ये विरोधों का सामंजस्य का दौर है, तो उन्होंने विविधता को रेखांकित किया। कबीर की भूमि अलग है, कबीर को हालांकि उन्होंने, लोग कहते हैं कि कबीर के साथ जाति की, हम लोग भी मानते हैं कि आप भी शायद सहमत होंगे कि कबीर को वह उस तरह महत्व नहीं दे पाए जिस तरह उन्होंने तुलसीदास, लेकिन हर आलोचक के अपने पूर्वग्रह होते हैं। तो आप एक आलोचक को भी मतलब उस पर तासीर गर्म नहीं कर सकते कि तुमको इसी तरह लिखना है। शुक्ल जी ने यह कहा कि भाई ये जो विरुद्धों का सामंजस्य है भक्तिकाल में है, और आप ये देखिए कि शुक्ल जी ने अपनी आलोचना में इस तत्व को जगह जगह रेखांकित किया है, लेकिन लोक मंगल को और साहित्य का जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है इसको उन्होंने हमेशा रिफ्लेक्ट किया। जैसी की भूमिका जो उन्होंने लिखी है वो भी बहुत मूल्यवान है।
0: जी जी,
1: मुझे एक जो शिकायत है परवर्ती प्राध्यापक की आलोचना से कि उन्होंने शुक्ल जी को रसवादी दृष्टि से मूल्यांकित करने की कोशिश की, जबकि मुझे लगता है कि शुक्ल जी को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो उन्होंने साधारण मनुष्य की खोज
0: जी,
1: ये जो रसवाद की जो मोटी चादर बिछा दी गई या खाल ओढ़ा दिया गया कि रसवादी, उसको आप हटाइए जरा तो आप देखिए कि वो साधारण मनुष्य जो है शुक्ल जी की आलोचना में कविता का मूल्यांकन करते हुए जगह जगह जो है स्पष्ट होता है। तो मैं समझता हूं कि शुक्ल जी का यह बहुत बड़ा योगदान है, और बकर नामवर सिंह की दृष्टि में डेढ़ ही आचार्य हुए, एक तो रामचंद्र शुक्ल और दूसरे जो है वह उनके गुरु हजारीप्रसाद द्विवेदी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे गुरु हजारीप्रसाद द्विवेदी आधा ही है। तो निर्विवाद रूप से शुक्ल जी हिंदी के प्रथम आचार्य, विधिवत आचार्य
0: जी जी।
1: और आप ये देखिए कि कविता क्या है, निबंध तो कसौटी है, कविता लिखने वालों के लिए भी और कविता पर बात करने वालों के लिए
0: जी।
1: वो निबंध आप आज भी पढ़ेंगे तो वो हम लोगों को प्रेरित करता है, और उन्होंने कविता के बारे में जो चिंताएं प्रकट की हैं वो आने वाली पीढ़ियों को भी आकृष्ट करेगी।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने ठीक कहा कि उनके यहाँ लोगों ने रस का आधिक्य देखा
1: जी जी जी,
0: तो थोड़ा सा तो छूट देते हैं, ऐसा नहीं है कि रस का निषेध उनके यहाँ मिलता
1: जी,
0: है
1: जी जी
0: है
1: जी, जी
0: और वो सेलिब्रेट करते हैं उसको
1: जी,
0: कोई शास्त्रीय किस्म का रस चिंतन नहीं है।

0: भी होती है, लेकिन मुझे जो एक एक शब्द आपने कहा कि समाज को लेकर चलना या लोक को लेकर चलना, बात वही है। तो जो और काम किया इसका विस्तार किया उन्होंने, समाज को कोई अमूर्त इकाई नहीं बन
1: जी जी जी जी,
0: ये शुक्ल जी के बूते की बात थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि आमतौर पर अभी तक कथित तौर पर समाज शास्त्रीय आलोचना के नाम पर चला तो वहाँ पर समाज बड़ा ठसका नजर आता है।
1: जी जी,
0: समाज मतलब क्या?
1: जी जी जी,
0: तो उसका कारण ये था कि शुक्ल जी का इतिहास बहुत सघन है, गहन है।
1: जी जी,
0: ना इतिहास को नहीं छोड़ते वो।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: वो मतलब काल्पनिक स्मृतियों के ऊपर बात नहीं करेंगे, इतिहास के सहारे ही आगे बढ़ते हैं। दूसरा उन्होंने क्या किया, लोक से जुड़ाव तो है ही, वो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन भाव और सोच का जो मिश्रण है
1: जी जी जी,
0: और संतुलन में है
1: जी जी जी,
0: ये भी उनसे सीखने वाली बात है।
1: जी जी,
0: दुर्भाग्य से नहीं सीखा, बात के आलोचकों ने नहीं सीखा,
1: नहीं,
0: लेकिन अगर वो करते तो वही जो आपने तुलसीदास की बात की, क्योंकि तुलसीदास उनकी नजर में इसलिए महत्वपूर्ण मुझे दिखाई देते हैं कि उनको ऐसे कवि के रूप में रेखांकित करते हैं या मानते हैं कि वो लोगों के मन से जुड़ा हुआ कवि है।
1: जी जी,
0: इस चीज को उन्होंने ध्यान में रखा है। और दूसरी बात कि उस किताब को, उस चिंतन को वो खारिज करते रहे जो केवल अपने में ही डूबी हुई है।
1: जी जी जी,
0: हालांकि खुद जिस कवि को उन्होंने इतना बड़ा कहा वो स्वांते सुखा है कि बात करते हैं, लेकिन लिखने के बाद तो लिखा हुआ अपना थोड़ी रह जाता है, सबका हो जाता है। शुक्ल जी इसको पहचानते थे
1: जी जी,
0: कि जो केवल अपने में मगन रहेगा वो क्या मतलब है, वो तो ही नहीं, साहित्य नहीं है। इसी नजरिए से आम आदमी की भाषा में बात करता है, आम आदमी की बात करता है, इसलिए इन खूबियों के सहारे वो आगे बढ़े। जहां तक रामविलास जी की बात है तो मुझे लगता है कि हालांकि वो उनके शिष्य परंपरा में नहीं आते शुक्ल जी के, लेकिन गुरु केवल वो नहीं होता जिसके
1: जी जी
0: पास बैठकर हम कक्षा में पढ़ते हैं, वो जिसके साथ हम रिसर्च करते हैं, वो नहीं है, रूढ़ अर्थ में गुरु है, सीख तो आप किसी से भी सकते हैं।
1: जी जी,
0: तो रामविलास जी ने बहुत गहरे अर्थ में शुक्ल जी को पढ़ा है।
1: जी जी,
0: उसके ऊपर छाप है, अगर किसी आलोचक की छाप रामविलास जी इससे कम नहीं हो जाता उनका
1: जी जी जी,
0: लेकिन शुक्ल जी के वो बहुत गंभीर अध्येता नजर आते हैं। नकल नहीं की उन्होंने, लेकिन शुक्ल जी की बातों को अपने समकाल के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ाया।
1: जी जी,
0: क्योंकि वक्त बदल गया
1: जी,
0: दोनों के उसमें बहुत फर्क है, चीजें तेजी से बदली। तो उन्होंने क्या काम किया, शुक्ल जी की नजर में जो समाज था वो ज्यादा महत्वपूर्ण था, रामविलास जी ने साहित्य को भाषा और समाज दोनों के साथ जोड़ा।
1: जी जी,
0: जो भाषा पिछड़ रही थी,
1: आलोचना उनकी एक किताब ही है।
0: हाँ हाँ जी, तो ये काम किया। देखिए वैचारिक दृष्टि से वो मार्क्सवादी हैं रामविलास जी, शुक्ल जी के यहाँ मार्क्सवाद जैसी कोई चीज नहीं है।
1: जी,
0: लेकिन वही जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, दोनों का जो बिल्कुल आत्यंतिक लक्ष्य वो एक है।
1: जी जी, समाज
0: समाज
1: और साधारण मनुष्य का जीवन।
0: हाँ,
1: और सम को वो महत्व देते हैं, सम से कविता को जोड़ते हैं।
0: जी,
1: तो ये मुझे लगता है कि बहुत मूल्यवान है। और वो केवल जो सौंदर्यवादी दृष्टि है नगेंद्र वाली
0: जी,
1: वो नहीं है रामविलास।
0: वो नहीं है
1: रामविलास जी, आगे जाते हैं
0: जी,
1: तो रामविलास जी का ये महत्व तो है। और देखिए उन्होंने निराला को शताब्दी का कवि कहा, और बात सही भी है,
0: बिल्कुल
1: उस बात को उन्होंने पकड़ा। उस तरह का काम नए आलोचकों ने नहीं किया,
0: नहीं किया।
1: हालांकि ऐसा काम करना चाहिए, बहुत सारे कवि हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये रामविलास जी के बारे में एक विशेषांक निकला था आलोचना का
0: जी,
1: तो रामवर जी ने उसका जो संपादकीय लिखा है उसका शीर्षक ये है, भूधर यूं जलती मशाल।
0: जी,
1: एक भूधर है
0: जी जी,
1: मतलब दिल्ली के इन पर ही कार्यरत था, और जब गंभीर रूप से बीमार थे तो नंद भरद्वाज और मैं दोनों आदमी लोकनायक अस्पताल है वहां रामविलास जी को देखने गए, और वो आईसीयू में थे, वो रामविलास जी का अंतिम दर्शन मैंने किया था
0: जी।
1: तो वो मुझे लगा कि वो सोए हुए हैं, और ग्रीक पर्सनालिटी उनकी भी थी
0: जी,
1: ये आपको पता ही है कि रामविलास जी को और श्रीमंगल सिंह सुमन को हालांकि पट्ट शिष्य
0: जी,
1: तो इन दोनों को अखाड़ा लड़ाते थे। वो कहते थे कि अगर आलोचना में दम लाना है तो पहलवान बनो। और आप रामविलास जी की भी पर्सनालिटी आप देखिए
0: जी,
1: और इस आकाशवाणी केंद्र पर भी मेरा सौभाग्य है कि एक बार वो आए और उनका एक इंटरव्यू प्रसारित किया गया
0: जी।
1: तो रामविलास जी तो सचमुच हमारे समय के ऋषि व्यक्तित्व थे
0: जी जी जी।
1: मैं आज से ये बात पूछना चाहता हूँ कि यह मत भूलिए कि रामविलास जी और शुक्ल जी शुरुआती दौर में कवि थे
0: जी।
1: और तार सप्तक के कवियों में एक कवि आपके राम

0: कैलाश शर्मा,
1: बिल्कुल
0: ये क्यों आप भूलते हैं? और मेरा भी ये मानना है और आप भी सहमत होंगे कि वही आलोचक बड़ा होता है। हिंदी में अभी तक जितने भी बड़े आलोचक हुए हैं वो सब कहीं न कहीं मूलतः कवि रहे हैं। कवि का संस्कार, उनकी सदियों की सूरत जाग उठे, उनका कविता संग्रह है वो आप देखिए। तो वो जो मुझे लगता है कि जो काव्यत्व है, कविता की जो समझ है, ये शुक्ल जी में भी और रामविलास जी दोनों में बड़ी गहरी है
1: जी।
0: उसकी जड़ें बहुत गहरी है, तभी वो उनकी आलोचना भी उतनी ही मूल्यवान है। वो प्राध्यापकीय आलोचना का स्पष्टीकरण नहीं है
1: जी। जी जी, देखिए ठीक है, आप भी अध्यापक रहे, मैं भी अध्यापक
0: जी, जी जी जी,
1: लेकिन आलोचना अगर की है
0: जी जी
1: तो 90% अध्यापकों ने ही की है।
0: नहीं नहीं
1: है ना,
0: रामलाल जी तो अध्यापक रहे ही
1: जी जी, जी जी। तो अगर इस नजरिए से हम देखते हैं,
0: और शुक्ल जी भी अध्यापक
1: रहे और कवि होने की बात है वो भी ठीक है, वो काम करता है, मतलब एक जैसे कहते हैं कि अंतर्भुक्त एक तत्व होता है
0: जी जी।
1: अब वो सफल असफल कभी अलग बात है,
0: हाँ हाँ वो अलग,
1: क्योंकि ये लोग नहीं थे अक्सर। डॉक्टर नित्यानंद तिवारी हमारे गुरु, वो यही कहते थे, वो भी शुरुआती दौर में कवि रहे,
0: कवि नई कविता के अंक में बहुत सारी कविताएं हैं।
1: तो तिवारी
0: जी की,
1: हाँ वो यही कहते थे कि देखिए आलोचक में वो चाहे किसी भी विधा की आलोचना करे, उसे बुनियादी तौर पर कवि होना चाहिए।
0: अच्छा,
1: ये बहुत बड़ी बात,
0: बहुत बहुत बहुत बहुत,
1: ये अगर नहीं भी लिखी तो कवि मन होना चाहिए
0: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
1: उसमें ये अगर होगा तो वो पकड़ पाएगा, क्योंकि यही समझ थी उन्होंने कि कविता साहित्य का गणित है।
0: शुक्ल जी में भी और रामविलास जी में भी ये बुनियादी रूप से मतलब एक नींव का काम कविता कर रही थी, इसीलिए उनकी आलोचना बड़ी हुई। मेरा ख्याल है कि ये हमारे श्रोताओं को ये बातचीत कुछ दिलचस्प लगेगी, और आप आए और आपको धन्यवाद
1: धन्यवाद धन्यवाद,
0: फिर मिलेंगे,
1: फिर मिलेंगे जी जी।
2: हिंदी आलोचना रामचंद्र शुक्ल से रामविलास शर्मा तक, अभी आप ये बातचीत सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे वरिष्ठ आलोचक और प्राध्यापक डॉ अरविंद त्रिपाठी, वरिष्ठ साहित्यकार और प्राध्यापक डॉ हेमंत कुकरेती। और आइए अब सुनते हैं श्रीमती योगिता यादव की कहानी, आषाढ़ की एक अधूरी बारिश।
3: जिंदगी में सूखा हो तो हर समय बारिश का ख्याल रहता है। मैं इन दिनों हर समय बारिशों के बारे में सोचा करती हूँ, फुहार, कणियां, बौछार, मूसलाधार। मैं उनकी हर दस्तक, हर रूप को पहचानने लगी हूँ। उनकी ध्वनियों और खुशबू से मैं उनकी तासीर जान जाती हूँ। और यह भी कि आषाढ़ का आसमान कई बार यूं ही उमड़ घुमड़ कर धोखा दिया करता है, बरसता नहीं है। इस अनुभव से गुजरना मुझे बेतरह तड़पा देता है। यह मौसम अपनी ही देह की तहों में दुश्वारियां ला रखता है। अंबर रात देर तक जागा है, उसे अपने ऑफिस का जरूरी असाइनमेंट पूरा करना था, पर उसे करने से पहले वह मुझे भली तरह फेंट चुका था। यह उसे ऊर्जा देता है, इसके बाद वह ज्यादा फोकस होकर काम कर पाता है। मगर किनारे तक लाकर अपनी सब लहरें समेट लेना, मोहब्बत का ये कौन सा शऊर है? फेंटे जाने के बीच भी मैं भय और आनंद के मिश्रित भावों के बीच डूबती उतराती रही थी। दूसरे कमरे में बेटी पढ़ रही है। अंबर इस बात से निश्चिंत था कि यह उसका अपना कमरा है, और जब तक बेटा नहीं आ जाता वह यहाँ कुछ भी कर सकता है। एयर कंडीशन कमरे होने के बावजूद मैं बार बार इस भय में झूलती रही थी कि अगर बेटी ने पानी लेने के लिए भी अपने कमरे का दरवाजा खोला तो वह इस कमरे से आ रही सब आवाजें सुन लेगी। यह कितनी अजीब बात है कि यहाँ होने का मुझे एक एक पल इंतजार रहता है, वहाँ होते हुए भी मैं एक अनहुए की कल्पना पर से शर्मिंदा हो रही हूँ। आधी रात तक जागकर उसने जो पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन बनाई है वह उसके डिपार्टमेंट की साख बचा सकती है। सर्वजन हिताय, अंबर देर रात तक जागा था और मैं रात भर अनिद्रा अतृप्ति में सुबह का इंतजार करती रही थी। बच्चों की उम्रें घर का रंग रूप और स्वभाव बदल देती हैं। हमारा घर अब दो हिस्सों में बट गया है, एक जैसे जनान खाना हो गया है जहां मैं, बेटी और हम दोनों के जरूरी सामान रहते हैं, और दूसरा हिस्सा बेटे, उसके पिता और उन दोनों के जरूरी सामान का है। बेटा और बेटी ही बस हम दोनों के साझे हैं। हमारी अलमारियां, हमारे कमरे, हमारे बिस्तर भी कब अलग हो गए नहीं पता। बच्चों के बढ़ते कद, जरूरतें और अपेक्षाएं शायद हम दोनों के बीच पसरते चले गए, पर यह कब हुआ ठीक ठीक याद नहीं। शायद किसी एक सुबह मेरी बगल में आ बैठी होगी मेरी बेटी डाइनिंग टेबल पर, या किसी दिन शायद बेटा अपने पिता

के साथ गाड़ी की अगली सीट पर बैठ गया होगा और मैं हंसते हुए पिछली सीट पर चली गई होंगी। हो सकता है बेटी की उम्र के किसी एक बदलाव के समय मैंने अपनी अलमारी का कुछ सामान उसे दिया हो, या फिर यह भी हो सकता है कि कोई एक बात बेटे ने सिर्फ अपने पिता से साझा की हो। इनमें से कुछ या हो सकता है सब कुछ हुआ होगा और हम दोनों एक दूसरे से दूर होते चले गए, इतना ज्यादा कि अब मैं अंबर को अपने बच्चों के पिता और अंबर मुझे अपने बच्चों की माँ के तौर पर ही ज्यादा पहचानते हैं। इसी हैसियत से हमारे बीच ज्यादातर संवाद होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए मैं खुद को विथड्रॉ करता गया। अब वो और उसका दफ्तर, बस यही उसका हर रोज का रूटीन हो गया है। कोई त्योहार हो, उसने किसी बहुत जरूरी काम से छुट्टी ली हो, तो भी वह दिन भर अपने लैपटॉप पर ही व्यस्त रहता है। वह कौन था जो हाथ पकड़कर मुझे गृहस्थी के इस ट्रैक पर ले आया था, एक ऐसा ट्रैक जिसके दो हिस्सों के बीच हमेशा एक संतुलित दूरी बंधी रहती है। बेटी के बिस्तर पर करवटे बदलते रात भर एक वाक्य मेरी आत्मा पर बजता रहा है, मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम कभी बूढ़ी नहीं हो पाओगी। आपाद मस्तक मुझे चूमते हुए बरसों पहले कहा था अंबर ने, पर शायद वे अपने कहे को खुद ही भूल गया है। तभी तो हर बार अपनी अनुपलब्धता को उम्र के मत्थे मढ़ देता है। मैं बार बार खुद से सवाल करती हूँ, क्या बच्चों के बड़े होने से हम बूढ़े हो गए हैं, और क्या बूढ़े होने से हम एक दूसरे की भावनाओं की लिपि पढ़ना भूल गए हैं। मेरी हल्की फुल्की बातें भी उसे अब ताने लगती हैं, और उसका हर बात पर सफाई देना मुझे उसकी अतिरिक्त चालाकी। वह अब क्यों नहीं मेरे हर शिकवे को मुझे चूम कर भुला देता, क्यों हर बार उन पर लंबी जिरह पर उतारू हो जाता है। वह यह भी भूल गया है कि उसने मुझसे कभी उदास न होने का वादा लिया था, तब जब पहली बार हमें लंबे समय के लिए एक दूसरे से दूर होना पड़ा था। उस दूरी को अपनी मोहब्बत से पाटते हुए उसने कहा था, मैं तुम्हारे हर दुख की भरपाई करूंगा अवनी। कयामत ये कि उसे यह भी याद नहीं है। वह जिस सक्रियता से अपने सोशल सर्कल में सक्रिय रहता है, जिस तत्परता से दफ्तर की हर ईमेल हर मैसेज का जवाब देता है, घंटों बिना थके फाइलें निपटाता है, अपने जूनियर्स को मोटिवेट रखता है और सीनियर्स के सामने हाथ बांधे खड़ा रहता है, उससे वह 25 बरस का भरी पूरी ऊर्जा वाला नौजवान लगता है। मगर मेरे आभा चक्र में दाखिल होते ही वह दुनिया का सबसे अक्षम, असमर्थ, मजबूर और व्यस्त आदमी हो जाता है। उसकी अनदेखी कैसे एक खुश्की बनकर मेरे वजूद को घेरती जा रही है उसे अंदाजा ही नहीं है। भोर की बारिश ने फिर देहराग छेड़ दिया है। 4 बजते मुझे ख्याल आया कि बेटा अब जिम जाएगा और बेटी ने सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया है। यह 4 से 5 बजे के बीच का एक घंटा हमारी अधूरी बारिशों को फिर से पूरा कर सकता है। मैं बच्चों की आंख बचाकर झट से अपने हिस्से का कुछ समय चुरा लेना चाहती हूँ। मैंने चोर नजरों से बेटी की तरफ देखा है। वह सचमुच सो रही है ना? बिस्तर के सिरहाने तिपाई पर रखी अलार्म घड़ी को दोबारा जांच कर तस्दीक की है। ये 5 बजे ही बजेगी ना, उससे पहले तो नहीं। रसोई से आ रही आवाजों से मैंने अंदाजा लगाया है कि बेटा अपने लिए प्रोटीन शेक बना चुका है और अब वह जूते पहनकर लिविंग एरिया से बाहर निकल रहा है। मैं दम साधे दरवाजा बंद होने का इंतजार कर रही हूँ। 2 बार चाबी घुमाने की आवाज ने मुझे निश्चिंत किया है कि अब वह जिम के लिए निकल गया है। अब मैं अपने अंबर की तरफ जा सकती हूँ। एक भय अब भी मेरे भीतर है। मेन डोर की चटखनी अंदर से बंद कर मैं उस भय को काबू करने की कोशिश करती हूँ। एक अलग तरह की बेचैनी, झिझक, उतावलापन मुझ में हिलोर ले रहा है। क्या मुझे ये शोभा देता है? अंबर मेरा है, क्यों नहीं? दाम्पत्य में होना ही तो अद्वैत हो जाना है। अगर वो भूल गया है तो मुझे पहल करनी चाहिए। एक आंख से दूसरी को देखने में कैसी झिझक, अपनी जिल्द की सलवटों को खुद ही खोलने में कैसा शर्माना। अंबर के कमरे में दाखिल होते मैंने तमाम तरह से खुद को तैयार किया है। नीम अंधेरे में सिर्फ उसके चेहरे की आभा से पूरा कमरा रोशन हो रहा है। सिर से पांव तक कोई लहर उठी है मेरे भीतर। अंबर जब गहरी नींद में होता है कितना प्यारा लगता है। उसकी भौहें, पलकें, नाक, होंठ, सब कुछ तो वैसा ही है। मुझे बांध लेने को आतुर, बाहर से आती बारिश की आवाज भीतर की तरंगों में लयबद्ध हो रही है। मैंने झुककर अपनी शुष्कता को उसके होंठों पर धर देना चाहा है। हम दोनों को अब रतिराग में भीग जाना है, मगर मेरे छूते ही अंबर की घबराई सी देह

0: में हरकत हुई है। उसने अपने होठों को अपने ही भीतर कस लिया है। ये कैसा भय है? किससे बचने में अंबर ने अपनी देह को इस तरह कस लिया है? अंबर की देह अवनी की छुअन भूल गई है क्या? क्या सब कुछ इतना यंत्रबद्ध हो गया है? मैं प्यास, तड़प, बेचैनी, शुष्कता, उदासी, खामोशी, खालीपन और जो कुछ भी कठोर, रूखा, बोझिल हो सकता था, सबको समेट कर बाहर आ गई हूँ। थोड़ी ही देर में दिन चढ़ने लगेगा। मुझे दिन भर की तैयारी करनी है। 5 बजे बेटी के लिए ब्लैक कॉफी बनानी है, उसकी नींद भगाने और ध्यान लगाकर पढ़ने के लिए उसे इसकी जरूरत होती है, खाना बनाना है, कपड़े इस्त्री करने हैं। बाहर बारिश की आवाज और तेज हो गई है। बारिश तेज हुई तो शायद ड्राइवर समय से न पहुंच पाए। बेटा बरसाती पहनकर गया होगा कि नहीं? आज दिन के पहले हिस्से में ही मीटिंग है, उसकी तैयारी मुझे भी करनी है। मुझे दफ्तर जल्दी पहुंचना है। बेटा, बेटी, घर, दफ्तर के बारे में सोचते और रसोई की खटपट के बीच मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर छाता कहाँ रख दिया।
1: अभी आप श्रीमती योगिता यादव की ये कहानी आषाढ़ की एक अधूरी बारिश सुन रहे थे। और आइए अब सुनते हैं सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियाँ। प्रस्तुत कर रहे हैं युवा पत्रकार डॉ. नाथूलाल लोटवाड़ा।
2: साहित्य, शिक्षा, समाज और संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय संस्था पत्रकारिणी का पंचम वार्षिक उत्सव 27 सितंबर को शाहदरा स्थित ईस्ट एंड क्लब महाराजा सूरजमल मार्ग में उत्साहपूर्ण साहित्यिक वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में शिक्षा एवं साहित्य की वर्तमान चुनौतियां एवं बदलते परिवेश पर सार्थक विमर्श हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. एसपी सिंह ने की। मुख्य अतिथि प्रोफेसर मधु चतुर्वेदी तथा डॉ. सविता चड्डा रही। ओम प्रकाश प्रजापति, डॉ. विशाल पांडे, ज्ञानचंद मिश्रा, श्रीमती मंजुला श्रीवास्तव, एमके झा, डॉ. उषा श्रीवास्तव, सोनिया सोनामाक्ष, शुभ्रा पालीवाल की कार्यक्रम में उपस्थिति रही। राजभाषा समिति एवं शब्दिता मिरिंडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित हिंदी माह का समापन एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम दिनांक 30 सितंबर को संपन्न हुआ, जिसमें हिंदी की चुनौतियां वर्तमान परिपेक्ष पर विचार विमर्श हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार श्री सुधाकर पाठक रहे। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा शुक्रवार 25 सितम्बर को हिंदी भवन विष्णु दिगम्बर मार्ग दिल्ली में साहित्यकार सम्मान समारोह 2026 का आयोजन संपन्न हुआ। समारोह में साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार श्री अनिल जोशी और अध्यक्षता श्रीमती इंदिरा मोहन, अध्यक्ष दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन ने की। कार्यक्रम में सम्मानित साहित्यकारों में सर्व श्री चंद्रभानु आर्य, डॉ. अंजू दुआ, श्री कमलेश पांडे पुष्प, कमंडीलाल अग्रवाल, अशोक कश्यप, नीलम मदान, बाबा कानपुरी, कविता विकास, मनीषा गिरी और नीति जैन रहे। 27 सितंबर को मानव मंदिर मिशन एवं राजकमल प्रकाशन समूह की ओर से लेखक एवं चिंतक डॉ. मयंक मुरारी की पुस्तक जीवन के अर्थ की खोज का लोकार्पण नई दिल्ली में आयोजित संगोष्ठी में किया। कार्यक्रम में शिक्षा, साहित्य और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े वक्ताओं ने आधुनिक जीवन में अर्थ, उद्देश्य, चरित्र निर्माण और नई पीढ़ी की चुनौतियों पर विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉ. अमित कुमार श्रीवास्तव, निदेशक नेताजी सुभाष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रहे। इस अवसर पर सर श्री पुरुषोत्तम प्रतीक, डॉ. सीमा त्यागी, अमोक महेश्वरी, मनोज श्रीवास्तव कार्यक्रम में उपस्थित रहे। राजभाषा विभाग दिल्ली परिवहन निगम द्वारा हिन्दी पखवाड़ा समापन समारोह कवि सम्मेलन का आयोजन 29 सितंबर मंगलवार को IDIR परिसर बुराड़ी में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री निहारिका राय रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि दिनेश रघुवंशी ने की। कवि सम्मेलन में सहभागी कवियों में सर श्री वंद प्रकाश, अभय सिंह निर्भीक, मास्टर महेंद्र रहे। वैशाली महिला समिति द्वारा कवयित्री सम्मेलन का आयोजन पीतमपुरा वैशाली कम्युनिटी सेंटर में किया गया। हिंदी पखवाड़े में विशेष रूप से आयोजित इस काव्यगोष्ठी का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके हुआ। इस अवसर पर डॉ. राधिका सिंह द्वारा रचित सरस्वती वंदना का युवा कवित्री द्वारा गायन किया गया, जिनमें अंजू जैन, अदिति गुप्ता, पूजा जैन ने किया। गोष्ठी में चारूगोट, मीनाक्षी यादव, मंजुला गंगराड़े उपस्थित रही। चिंतन हिन्दी साहित्य सभा BGDAV महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय हिन्दी पखवाड़ा हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और मीडिया जगत में हिंदी चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 29 सितंबर 2026 को आयोजित इस कार्यक्रम में प्रोफेसर दविंद्र कुमार, प्रोफेसर निरंजन कुमार, विक्की कुमार, डॉ. वेद प्रकाश, डॉ. चैन सिंह मीना, डॉ. संदीप कुमार रंजन की उपस्थिति रही। प्राध्यापक और डीन प्रोफेसर निरंजन कुमार ने हिन्दी की स्थिति और विश्व में इसके स्वरूप और विकास पर विचार व्यक्त किये।

0: आचार्य प्रोफेसर देवेंद्र कुमार ने सभी का स्वागत करते हुए महाविद्यालय में हिंदी के प्रचार प्रसार पर बल दिया। इवेंटेक अकादमी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी गाजियाबाद में भविष्य और साधना कवि सम्मेलन का आयोजन हिंदी दिवस पर संपन्न हुआ। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता डॉ जयसिंह आर्य ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ कवि पवन कुमार रहे। इस अवसर पर दीपक दीप, जयप्रकाश मिश्र, डॉ राधेश्याम मिश्र, संजीव रूप, डॉ कमल तिवारी, संजीव नायक, कोमल रस्तोगी ने अपने काव्य से सभी को भावविभोर कर दिया। कवि सम्मेलन का संचालन वरिष्ठ कवि श्री जेपी मिश्रा ने किया। 2 अक्टूबर को फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में अजय साहित्यिक व सामाजिक मंच के तत्वाधान में काव्य कारवां कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। आमंत्रित कवियों में डॉ वीरेंद्र सिंह वीर, डॉ पी भल्ला, रिया अग्रवाल, प्रीति पाठक, माधुरी मिश्र, चेतना वशिष्ठ, शशि रंजन, मधु वशिष्ठ, दीपा शर्मा उजाला, चूड़ामणि प्रभात, मंजूषा पंवार, धर्मवीर शर्मा, सागर और अतुल मिश्रा शामिल थे। कार्यक्रम के संस्था की अध्यक्ष मंजू तंवर, उपाध्यक्ष डॉ विकास शुक्ला, विवेक पैरन, डॉ पारुल राज ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम के आयोजिका डॉ प्रीता पंवार ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ कवि नीरज त्यागी ने अपने कायपाठ और उद्बोधन से सभी को प्रभावित किया। जैन युवा क्लब शाद्रा द्वारा 30 सितंबर 2026 को विराट हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन कड़कड़डूमा शाद्रा दिल्ली में आयोजित किया गया। कवि सम्मेलन में पूरे भारत से आए हास्य कवियों ने खूब हंसाया। हास्य कवि सम्मेलन में विनीत चौहान, डॉ प्रवीण शुक्ल, सुदीप भोला, शिवम श्रीवास्तव, सुनील व्यास, गौरी मिश्रा, भगवान मकरंद, महेंद्र मधुर, मोहित सौर्य ने हास्य के रंग बिखेरे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद एवं वैश्विक हिन्दी परिवार के तत्वाधान में हिंदी पखवाड़ा एवं साहित्यिक सम्मान समारोह का आयोजन 1 अक्टूबर को प्रवासी भवन दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में किया गया। समारोह में प्रोफेसर विमलेश कांति वर्मा, सुश्री इंदिरा मोहन, प्रोफेसर पूरन चंद टंडन, सुश्री सविता टंडन, ऋषि कुमार शर्मा, डॉ वरुण कुमार, शिव कुमार निगम, मनोज श्रीवास्तव, डॉ शिवम शर्मा, डॉ विवेक शर्मा, डॉ जितेंद्र तिवारी, आरुषि ठाकुर, प्रखर शर्मा, सुश्री विशाखा ने हिंदी के विकास एवं संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण विचार रखे।
1: अभी आप सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रहे थे श्री नाथूलाल लोटवाड़ा। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अभी ही संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साहित्यिकी और श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे अतिथि।
3: नमस्कार, हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं नीलम अलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप जानते ही हैं इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो शख्सियत होती हैं वो असल में एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरी कहानी होते हैं अपने आप में। कैसे किस काम की शुरुआत हुई, क्या संघर्ष थे, क्या उपलब्धियां और आज किस तरह से दूसरों को प्रेरित कर रही हैं, अपना काम करते करते हम ये सब जानते हैं इस कार्यक्रम में। और अलग अलग क्षेत्र जो हैं उनके बारे में भी समझते हैं किसी एक व्यक्ति के माध्यम से। आज स्टूडियो में जो शख्सियत हैं, जो आपसे मिलने के लिए आए हैं, ये हैं संजीव श्रीवास्तव जी। आप जाने माने फिल्म समीक्षक हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं और हाल ही में आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है। संजीव जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत।
4: बहुत धन्यवाद नीलम जी।
3: सबसे पहले आपको आकाशवाणी परिवार की ओर से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त होने की, ये सम्मान प्राप्त होने की बहुत बहुत बधाई।
4: बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।
3: हम सब जानना चाहेंगे राष्ट्रपति जी के करकमलों द्वारा ये सम्मान पाते हुए कैसी अनुभूति थी, कैसा लगा आपको?
4: राष्ट्रपति जी के हाथों सम्मान पाकर के ऐसा लगा कि जैसे मेरे जीवन में कोई नया चमत्कार हो गया
3: जी।
4: अब तक मैं विज्ञान भवन में दूसरे कलाकारों और लेखकों को देखा करता था और पुरस्कार प्राप्त करते हुए उस वक्त मैं तालियां बजाया करता था और उस वक्त मेरी आंखों में भी सपने होते थे कि काश कभी मुझे भी यह पुरस्कार मिलेगा क्या। आज जब मुझे यह पुरस्कार मिला तो मैं बहुत भावुक हो गया। मैं बताना चाहूंगा नीलम जी की 18 जुलाई को जैसे ही इस पुरस्कार की घोषणा हुई और मुझे पता चला कि बेस्ट फिल्म क्रिटिक का अवार्ड दिया जा रहा है तो घर में बहुत ही भावुक माहौल था और मैं अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ घर से निपट करके बिल्कुल बच्चों की तरह रोने लगा
3: जी।
4: और घर में भी सब लोग बिल्कुल ही बहुत ही भावुक हो गए। सपनों के सच होने जैसा था जब 22 सितंबर को केवड़िया में राष्ट्रपति जी के हाथों यह अवार्ड मिला। इस बीच पुरस्कार की घोषणा होने से लेकर के पुरस्कार मिलने तक

0: जो धड़कन थी, जो नेतानी थी, वो तो बिल्कुल ही अनकही है, शब्दों में बिल्कुल ही व्यक्त नहीं किया जा सकता
1: जी।
0: ये बहुत ही महसूस करने वाली बात है
1: जी।
0: और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उस पुरस्कार की बड़ी सफलता है।
1: मैं ये भी जानना चाहूंगी संजीव जी आपसे कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने के बाद जीवन में क्या बदला?
0: बहुत कुछ बदला है, नजरिया बदला है। जैसे बताऊं मैं आपको कि फिल्में देखना और फिल्मों पर लिखना बहुत गंभीरता से कभी नहीं लिया जाता रहा है, और मुझे अपने घर में ही उस नजरिए का शिकार होना पड़ा कई बार
1: जी।
0: जब मैं समझ पर फिल्म देखने चला जाता था तो घर में मुझे ताने सुनने के मिलते थे कि और कोई काम नहीं है क्या, सुबह उठे और फिल्म देखने चले गए। या फिर हमारे बहुत सीनियर साथी हैं हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, उनका भी एक नजरिया होता था कि यार इतना सीनियर व्यक्ति है और फिल्मों पर लिखता रहता है, उन्होंने कभी बहुत गंभीरता से इस चीज को लिया नहीं
1: जी।
0: लेकिन जब पुरस्कार का ऐलान हुआ तो मुझे अपने घर में ही सबसे पहले छूट मिल गई
1: जी,
0: जाइए अब जितनी फिल्में आपको देखनी है देखिए। और हमारे प्रोफेशनल लाइफ में जो लोग मुझे अभी तक बहुत इग्नोर कर रहे थे, गंभीरता से नहीं ले रहे थे, ये बहुत ही भावुक पक्ष है, उन्होंने अब मुझे बहुत अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हाँ बहुत अच्छा काम किया हो, जीवन में एक उपलब्धि हासिल की है, आगे बढ़ो
1: जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि भारत के किस राज्य में आपका जन्म हुआ, बचपन कैसा था?
0: मेरा जन्म बिहार में हुआ है। बिहार का एक बहुत ही प्रसिद्ध जिला है, बहुत ही प्रसिद्ध और साहित्यकार हुए हैं फणीश्वरनाथ रेणु, जिन्होंने मैला आंचल जैसा उपन्यास लिखा, उनके शहर में मेरा जन्म हुआ। लेकिन वैसे मेरा जो पैतृक शहर है वो बिहार का सीतामढ़ी जिला है
1: जी।
0: सीतामढ़ी नॉर्थ बिहार के बॉर्डर पे है और बहुत ही मशहूर जानकी स्थान मंदिर के लिए बहुत ही फेमस है
1: जी,
0: जो कि सीता जन्मस्थली के तौर पर वो जगह जानी जाती है। तो वो मेरा पैतृक शहर है। वहां का एक गांव है रिखौली, जहां मेरा बचपन बीता। पूर्णिया से आने के बाद कुछ ऐसे हालात बन गए थे कि शहर छोड़ करके पूरी फैमिली गांव में शिफ्ट हो गई थी कुछ सालों के लिए। तो गांव में कुछ साल हमारे बीते और गांव में जो साल बीते वे साल बहुत ही कठिनाइयों भरे थे। गांव में तब बिजली नहीं थी, सड़कें बहुत ही कच्ची हुआ करती थी और वहीं रह करके हमने 12वीं तक पढ़ाई की। पैदल जाता था स्कूल, वो करीब 2.5-3 किलोमीटर भी होता था।
1: तो इन संघर्षों के बीच जब आप पढ़ रहे थे तो उस वक्त क्या सपना था कि बड़े होकर हमें क्या बनना है, कौन सा ऐसा क्षेत्र था जिससे आप जुड़ना चाहते थे?
0: बिल्कुल, जो सिनेमा में आज जो सम्मान मिला है इसका बीज उन्हीं दिनों पड़ गया था। सच बताऊं मैं आपको
1: जी,
0: कि उस वक्त रेडियो से गाने बहुत आते थे, शहर जाकर के फिल्में देखता था और जब शुक्रवार को नए पोस्टर लगते थे हमारे जो कसाई इलाके हैं वहां कि कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है, तो फिल्म तो बाद में देखना है, पोस्टर के सामने खड़ा हो जाता था और पोस्टर पे जो हीरो हीरोइन की तस्वीरें होती थी उनको गौर से देखता था और खासतौर पर देखता था उसमें कौन कौन सितारे हैं, गीतकार है, संगीतकार है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कौन है, सभी लिखा रहता था पोस्टर पर, उन सबको देखा करता था। तो हमारे शहर में एक बड़ी खास बात थी उस दौर में ये कि स्टूडेंट कंसेशन मिला करता था 50%, शनिवार को भी और रविवार को भी। तो शनिवार को मॉर्निंग शो में और रविवार को मैटिनी शो। और सबसे दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि मुझे हफ्ते भर जो पॉकेट खर्च मिला करता था उसमें से मैं कुछ पैसे बचा लेता था फिल्म देखने के लिए। हर हफ्ते फिल्म देखता ही था।
1: आज पता चला कि वो इन्वेस्टमेंट था।
0: इन्वेस्टमेंट था
1: जी। संजीव जी, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हम ये सोचते हैं कि अब आत्मनिर्भर हुआ जाए, यानी अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाए, कमाना शुरू किया जाए। तो जब आप उस पड़ाव पर पहुंचे जीवन के, तब किस तरह के संघर्ष थे?
0: मेरा जो पहला लक्ष्य था वो प्रोफेसर बनने का था
1: जी,
0: क्योंकि हिंदी साहित्य से मैं एमए कर रहा था। शहर में आकर रहने लगे थे हम सब लोग। मेरी इच्छा थी प्रोफेसर बनने की, क्योंकि मैं प्रोफेसरों की दुनिया देखा करता था। वो बड़े आजाद ख्याल से रहा करते थे और बहुत ही बुद्धिजीवी किस्म के होते थे, तो मुझे वो आजादी बहुत पसंद आई थी। लेकिन क्या है कि पत्रकारिता में सबसे पहली एंट्री मुझे मिल गई तो फिर मैं पत्रकारिता में चला गया
1: जी। यानी कोई प्लानिंग नहीं थी पत्रकार बनने की, लेकिन उस समय ऐसा लगा कि यही बेहतर विकल्प है।
0: यही बेहतर विकल्प है और शायद दूसरा सबसे बेहतर विकल्प लगा था, क्योंकि लिखना पढ़ना शुरू हो चुका था
1: जी।
0: फिल्मों पर भी हमने छोटी छोटी टिकट टिप्पणियां उन्हीं दिनों शुरू कर ली थी। ये बाद में बहुत उल्लेखनीय इसी जगह पर हो जाती है कि सड़क फिल्म एक आई थी महेश भट्ट
1: की, संजय दत्त
0: पूजा भट्ट, उसका एक गाना था तुम्हें अपना बनाने की कसम।

0: आई है
1: जी।
0: फिल्म बहुत ही मशहूर थी उस जमाने में और ये गाना भी काफी चर्चित हुआ था, लेकिन इस गाने का जो पिक्चराइजेशन था उस पिक्चराइजेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया। उससे प्रभावित होकर मैंने एक छोटी सी टिप्पणी लिखी और वह टिप्पणी फिल्मों पर लिखी हमारी वो पहली टिप्पणी थी
1: जी।
0: कैसे एक नायक बलराम बस्ती के कोठे पर रहने वाली लड़की को अपने साथ लेकर जाता है एक दिन के मुचलके पर और लेकर कहां जाता है तो मंदिर माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में। वहां के लिए मैंने प्रवेश परीक्षा दी और वहां मैं पास कर गया। जबलपुर जाके मैंने परीक्षा दी थी, फिर उसके बाद भोपाल में मुझे हॉस्टल मिल गया और एक साल मैंने वहां कोर्स किया। उसके बाद भोपाल में दैनिक नई दुनिया से जुड़ा समय के लिए
1: जी।
0: और फिर उसके बाद दिल्ली आ गया
1: जी। तो वो दौर कैसा था, आप दिल्ली आए, परिवार कहीं और था या साथ में था परिवार?
0: दिल्ली जब आया तो मैं बिल्कुल अकेला था, उस वक्त शादी नहीं हुई थी हमारी
1: जी।
0: और समझिए कि दिल्ली आकर के उस दौरान नए जीवन की शुरुआत करनी थी, लेकिन उन दिनों पत्रकारिता की दुनिया में नौकरी मिलना बहुत कठिन था। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे पहले मैंने हिन्दुस्तान अखबार में काफी समय तक फ्रीलांस किया, उसके बाद दिल्ली में कुछ नए नए अखबार शुरू हुए वहां मैंने अप्लाई किया, तो फिर वहां से फिर नौकरी का एक सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन वो छोटा सा अखबार था, फिर वो अखबार बंद हो गया, फिर बेरोजगार हो गया
1: जी।
0: फिर उसके बाद नई टेक्नोलॉजी आई, टेलीविजन की दुनिया शुरू हुई, फिर उसके बाद मैं टीवी में चला गया साल 2000 से, के बाद से लगातार मैं टीवी में ही रहा
1: जी। पहले जो है वो शब्दों की दुनिया में थे, उसके बाद आप स्क्रीन की दुनिया से जुड़े, थोड़ा अलग होता है?
0: बिल्कुल अलग होता है, हमें कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ता है क्योंकि उसको सुनाना है हमें
1: जी, वो विजुअल को सपोर्ट करे,
0: विजुअल को सपोर्ट करे, साथ में जो दर्शक देख रहे हैं
1: जी
0: वो कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुत एजुकेटेड ही हो। जो एक लेखन कौशल है, लेखन कला है ना, वो अखबार के मुकाबले टेलीविजन की कुछ ज्यादा कठिन है, वो एक अलग क्राफ्ट है, उसको सीखने की जरूरत पड़ती है।
1: तो लगातार इस तरह की चुनौतियां आती गई, तो कैसे आप फिल्म समीक्षा से जुड़े, क्या ध्यान रखते थे आप कि आपकी समीक्षा में क्या क्या तत्व होने चाहिए, कैसे वो दूसरे समीक्षक से अलग लगे और किस तरह से वो पाठक के या जो फिल्म प्रेमी हैं, सिने प्रेमी हैं, उनके वो नजदीक हो?
0: पुस्तक समीक्षाओं के साथ साथ मैं फिल्मों पर भी टिका टिप्पणियां किया करता था। उस वक्त बहुत सारे फिल्म समीक्षक, दिग्गज फिल्म समीक्षक हुआ करते थे, ब्रजेश्वर मदान, बच्चन श्रीवास्तव, संपत लाल पुरोहित, ऐसे कई सारे हुआ करते थे जिनसे मैं मिलता था और सिनेमा के बारे में जो बातचीत सबसे होती थी उनसे बहुत प्रोत्साहन मिलता था कि तुम फिल्मों पर भी इस तरह की समीक्षाएं लिखा करो जैसे पुस्तक समीक्षाएं लिखते हो
1: जी।
0: हमने वहां से सीखा और शायद मुझे लगता है कि फिल्म समीक्षा में जो हमने थोड़ी गहराई पकड़ने की कोशिश की उसकी वजह यही थी कि इससे पहले हमने रंगमंच की और पुस्तकों की समीक्षाएं की
1: जी।
0: तो एक डेप्थ को ढालने का एक प्रैक्टिस हमें हो गया था पहले से। फिल्म समीक्षा वास्तव में डायरेक्टर के विजन कैसा है, डायरेक्टर ने कहानी के जरिए क्या कहना चाहा है, ये बताना फिल्म समीक्षक का सबसे बड़ा इम्तिहान हो जाता है
1: जी।
0: मुझे लगता है जो भी नए लोग आ रहे हैं मीडिया की फील्ड में, एंटरटेनमेंट को संभालना चाहते हैं, उस पर लिखना चाहते हैं, क्रिटिक बनना चाहते हैं, फिल्म जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले ये देखना होगा कि सिनेमा को लेकर के उनके भीतर कैसी जिज्ञासा है और उसके बाद ही वो फैसला करे कि उनको इस फील्ड में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है।
1: संजीव जी, अब सोशल मीडिया अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है और पत्रकारिता से भी इसे जोड़ दिया गया है। जिसके भी हाथ में मोबाइल है या जिसका अपना सोशल मीडिया पर एक अकाउंट है, वो सोचता है कि हम पत्रकारिता कर रहे हैं, इसमें जिम्मेदारी जो है वो कहां तक जरूरी है, क्या कहेंगे आप इस बारे में?
0: पहले होता था ना नीलम जी कि हम लोग डायरी मेंटेन करते थे
1: जी,
0: और डायरी बहुत सीक्रेट रखते थे। सोशल मीडिया एक तरह से जगजाहिर डायरी हो गई है। यहां भी लेकिन इम्तिहान है कि कौन कैसा लिख रहा है, कौन किस तरह के विचार व्यक्त कर रहा है, उसके भी उसी तरह के फॉलोअर्स बन रहे हैं, उसको भी उसी तरह से प्रसिद्धि मिल रही है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं
1: जी,
0: और सोशल मीडिया के माध्यम से ही बने हैं। ऐसे लोगों ने बहुत सारे लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है वो उन्हीं वजहों से बनाई है कि उन्होंने कैसा लिखा है या कैसा अपने आप को एक्सप्रेस किया है। तो वहां पर लोगों की जिम्मेदारी ये बढ़ जाती है कि सोशल मीडिया पर अपनी भाषा को थोड़ा संयमित रखे। फिल्म समीक्षकों की एक बड़ी भूमिका है, मैं अक्सर कहता हूं कि फिल्म समीक्षा एक एजुकेशनल विधा है
1: जी।
0: एजुकेशनल इसलिए कि फिल्म समीक्षा पढ़ने के बाद ही हम कोई फिल्म देखने का विचार बनाते हैं, तो फिल्म में जो खूबियां है वो समीक्षक अगर नहीं बताएगा तो दर्शकों को मालूम कैसे होगा
1: जी। तो चलते चलते ये सवाल आपसे कि आगे की क्या योजनाएं हैं आपकी, अब आपको

0: राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है तो उसके बाद जिम्मेदारी का एहसास है, ऐसा लगता है कि जो मेहनत की थी बस सफल हो गई, अब थोड़ी थकान महसूस हो रही है?
1: ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। फिल्मों से जुड़ा हुआ एक प्लेटफॉर्म मैंने भी शुरू किया था और वह प्लेटफॉर्म था पिक्चर प्लस। पिक्चर प्लस नाम से हमने एक फिल्म पत्रिका शुरू की थी और यह पत्रिका कुछ वर्ष चली और यह मासिक पत्रिका थी। हमारी कोशिश थी कि हिंदी सिनेमा से जुड़े हुए देशभर, हिंदी सिनेमा क्या बल्कि भारतीय सिनेमा से जुड़े हुए देशभर में जितने भी प्रमुख लेखक हैं उनका एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां वो अपनी बातें खुलकर लिख सकें।
0: जी।
1: तो बहुत दिग्गज लेखकों ने उसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अरविंद कुमार, शरद दत्त, अजय बरपात्र, मनोहन चढ़ा, प्रभात प्रहलाद अग्रवाल, जमी मल्ल पारा के विनोद अनुपम, ऐसे ऐसे दिग्गज हिंदी के या फिर अंग्रेजी के भी लोगों ने लिखा और पिक्चर प्लस नाम से हमने यूट्यूब भी चलाया और सिनेमा के प्रति जो एक दीवानगी है उसके नजीर है, इसलिए शास्त्री नाम से सिनेमा लेखकों पर एक सिनेमा मैंने शुरू की है और फिल्म की एक वेबसाइट भी चलाई। तो आगे का जो प्लान बता रहे हैं ना, ये जो मेरा अधूरा रह गया, ये जो मेरी अधूरी कहानी रह गई फिल्म पत्रकारिता की, कि हमारा एक अपना प्लेटफॉर्म हो फिल्म का, फिल्म न्यूज रिव्यूज इंटरव्यूज और जो फिल्म पत्रकारिता के लिए एक मुकम्मल प्लेटफॉर्म हो, जो मैं आमतौर पर बाजार में बिल्कुल सन्नाटा देखता हूँ, किसी के भी पास नहीं है जो फिल्मों पर एक हिंदी में एक मुकम्मल डिजिटल प्लेटफॉर्म हो। तो हमारी ये ख्वाहिश है जो बीच बीच में मैंने रुक रुक कर किया उसको अब इसके आगे मुकम्मल तौर पर करना चाहता हूँ। इसमें हमें कोई खास सहयोगी मिले तो या फिर मेरे पास संसाधन वैसा हो तो मैं उसको प्रोफेशनली एस्टैब्लिश करके दिखा दूंगा।
0: जी,
1: ये मेरा प्लान है, ये मेरी ख्वाहिश है।
0: जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हम आपको देते हैं कि आपका ये अगला पड़ाव भी आप जल्दी इस तक पहुंचे, इसे अचीव करें और उसके बाद अपने लिए फिर एक नया सपना संजोए और आपकी जो अलग अलग उपलब्धियां होंगी उसमें हम इस तरह से शामिल होंगे संजीव जी कि फिर आपको हम कष्ट देंगे, अपने स्टूडियो में बुलाएंगे और आपकी किसी नई उपलब्धि पर हम फिर से आपसे बात करेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, आज आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी और तमाम श्रोताओं को भी मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने बहुत ही धैर्य के साथ सुना। बस ये पुरस्कार मुझे एक गेटवे की तरह लाइफ में आया है।
0: जी,
1: देखते हैं हाईवे पर कब जाते हैं।
0: जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स के साथ, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता विवेक कुमार तोमर के साथ मैं नीलम मलकानिया हमारी अतिथि कार्यक्रम से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।

9:35 पर सुबह का ही प्रोग्राम पेश किया जाएगा और 9:45 पर प्रोग्राम आप सुनेंगे आज सवेरे। पर खबरें नशे की जाएंगी और सुबह 10 बजे आप सुनेंगे अखबार जर्रे पर मबनी शम फरोजा।

दिन में 10:30 बजे रूबरू प्रोग्राम के तहत मारूफ कलम निगार मुसन्निफ जनाब सैयद उबैदुर रहमान के साथ की गई एक बातचीत आप समाप्त करेंगे। 11 बजे मेरी पसंद प्रोग्राम के तहत आप सुनेंगे चंद फिल्मी नामे।

दिन में 11:30 पर आगा हशर कश्मीरी के ड्रामे यहूदी की लड़की का पहला हिस्सा आप सुनेंगे। 12 बजे दिन में खबरें नशी की जाएंगी और 12:10 पर फिल्मी दुकानों का प्रोग्राम पेश किया जाएगा मिले सुर मेरा तुम्हारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम जारी रहेगा 1 बजे तक। दौरान प्रोग्राम 12:30 तारीख सास प्रोग्राम में आज का मौजू है राबिया बसरी। दिन में 1 बजे आलमी खबरें नशी की जाएंगी और 1:15 पर उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सवाल यह था एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशर वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: सुबह का है प्रोग्राम में आप समाप्त कर रहे थे शब्द ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है पेश खिदमत है प्रोग्राम आज सुबह
1: और अब पलटते हैं इतिहास के वो पन्ने जिन पर आज की तारीख दर्ज है। मैक्सिको का पहला संघीय संविधान आज ही के दिन 1824 को लागू हुआ था। इस ऐतिहासिक दस्तावेज ने देश को यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट्स के रूप में एक संघीय गणराज्य का आधिकारिक स्वरूप दिया और 1977 में आज ही के दिन तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने महासभा के 32वें सत्र को हिंदी में संबोधित किया था। ये पहली बार था जब किसी भारतीय नेता ने वैश्विक मंच पर हिंदी में अपनी बात रखी थी। अब हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम दौर की अभिनेत्री और नृत्यांगना संध्या शांताराम के बारे में। उनका असली नाम वैसे तो विजया देशमुख था। वे प्रसिद्ध फिल्मकार वी शांताराम की पत्नी थी और उनके निर्देशन में बनी कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय तथा नृत्य से अपनी अलग पहचान बनाई। संध्या को खासतौर पर झनक झनक पायल बाजे, दो आंखें बारह हाथ, नवरंग, जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली और मराठी फिल्म पिंजरा के लिए याद किया जाता है। फिल्म पिंजरा में उनके अभिनय और नृत्य को खूब सराहा गया। वहीं नवरंग का लोकप्रिय गीत अरे जा रे जा नरहरि नटखट उनके नृत्य की पहचान बन गया था। सारा अब इस गीत के बारे में बात हो ही रही है तो आइए श्रोताओं को सुनाते हैं।
2: अरे

कंगना शांताराम की सबसे चर्चित फिल्मों में झनक झनक पायल बाजे का विशेष स्थान मिलता है। इस फिल्म में उन्होंने शास्त्रीय नृत्य पर आधारित भूमिका निभाई और फिल्म को राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी सफलता मिली। इसके अलावा उन्हें कई मराठी फिल्मों के लिए भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला था। अब आगे बढ़ते हैं। बंगाली साहित्य संगीत की दुनिया में अपनी सुरीली और भावपूर्ण आवाज से अलग पहचान बनाने वाली संध्या मुखर्जी, जिन्हें प्यार से गीताश्री भी कहा जाता था, का जन्म आज ही के दिन 1931 को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने बंगाली के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी पार्श्व गायन किया। अपने लंबे करियर में उन्होंने

0: श्रोताओं, इसी के साथ आज सवेरे में आज की हमारी मुलाकात यहीं पूरी होती है। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग लिसनर्स, हैव अ ग्रेट संडे। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सुबह के 9:50 हुए हैं। अब खबरें नशे की जाएंगी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप मुदम्मार से खबरें सुनिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 2026-27 की मुद्दत के लिए मुख्तलिफ महकमों से मुतालिक पार्लिमानी कमेटियों की असर नौ तश्कील की है। मरकजी वजारत तालीम ने क्लासिकी जबानों आसामी, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के मुतालियात के लिए 5 नए महारत के मराकज के क्याम की मंजूरी दी है। भारत ने पाकिस्तान के एलची को तलब करके पाकिस्तान से मुसलसल होने वाली गैर कानूनी सरहद पार दरअंदाजी पर सख्त एहतजाज दर्ज कराया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन अगले साल 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में मुनक़िद होगा। इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ मच्छर को इसराइल, भारत और यूरोप पूरी दुनिया का हीरो करार दिया। उन्होंने कैप्टन स्मिथ मच्छर और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इसराइल के यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया। और एशियन गेम्स 2026 आज जापान के नगोया में खिताम पजीर हो रहे हैं। ट्रैप शूटर नीरू ढांडा इख्तामी तकरीब में भारत की परचम बरदार होंगी। अब खबरें तफसील से। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मुख्तलिफ वजारतों से मुतालिक कई पार्लिमानी कमेटियों की असर नौ तश्कील की है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट भर्तुरी हरी महताब को खजाना की कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है, जिसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 अरकान शामिल हैं। जनाब बिरला ने कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर को उमूर खारजा की कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया है। इस कमेटी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 अरकान शामिल हैं। रेलवे की कमेटी की सरबराही बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट सुधीर गुप्ता करेंगे। जनाब बिरला ने लोकसभा की रुकन डॉ काकुली घोष दस्तीदार को केमिकल्स और खादों से मुतालिक कमेटी का चेयरपर्सन मुकर्रर किया है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट चरणजीत सिंह चन्नी ज़िराअत, मवेशी परवरी और खुराक की डब्बाबंदी की कमेटी के चेयरमैन होंगे। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट राधा मोहन सिंह दिफा से मुतालिक कमेटी के चेयरमैन होंगे। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट राजीव प्रताप रूडी को आबी वसायल से मुतालिक कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है, जबकि देही तरक्यात और पंचायती राज से मुतालिक कमेटी की सरबराही कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट सप्तागिरी उलाका करेंगे। इसी तरह बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे को मवासलात और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर

0: किया गया है। इन कमेटियों की मुद्दतकार पिछले महीने की 26 तारीख से नाफिजुल अमल मानी जाएगी। तालीम की वजारत ने क्लासिकी जबानों के मुतालात के लिए 5 महारत के मराकज के क्याम की मंजूरी दी है। आला तालीम के महकमे ने क्लासिकी आसामी, क्लासिकी बंगाली, क्लासिकी मराठी, क्लासिकी पाली और क्लासिकी प्राकृत के मुतालात के लिए 5 महारत के मराकज के क्याम की मंजूरी दी है। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन अगले साल 7 से 9 जनवरी तक मगरबी बंगाल में कोलकाता में मुनाकिद किया जाएगा। कन्वेंशन वजारत खारजा और मगरबी बंगाल सरकार के इश्तराक से मुनाकिद किया जाएगा। इसका इफ्तिताह वजीर आजम मोदी करेंगे, जबकि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इख्तिताम इजलास की सदारत करेंगी और प्रवासी भारतीय सम्मान एजाजा तकसीम करेंगी। वजारत खारजा के मुताबिक प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी को खिराज अकीदत के तौर पर मनाया जाता है, जो 9 जनवरी 1915 को जनूबी अफ्रीका से भारत वापस आए थे। अपग्रेड किए गए आईटीआईज के जरिए प्रधानमंत्री हुनरमंदी और रोजगार के मौके फराहम करने वाली स्कीम पीएम सेतु को आज एक साल मुकम्मल हो गया है। हुनरमंदी के फरोग और सनअतकारी की वजारत की स्कीम पीएम सेतु का आगाज पिछले वर्ष 4 अक्टूबर को किया गया था। नीति आयोग के रुकन राजीव गाबा ने तेजी से तब्दील होते हुए जोग्राफियाई, तकनीकी और इक्तसादी माहौल से हम आहंगी करते हुए एक इंजबाती फ्रेमवर्क तश्कील देने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पॉलिसी साजों के सामने इंजबात और तरक्की के दरमियान किसी एक का इंतखाब करना ही एक चैलेंज नहीं है, बल्कि ऐसे जाब्तों को तय करना है जो इख्तरा मुसाबकत और सरमाकारी की हिमायत करते हुए खतरा से निपटने की सलाहियत के हामिल हों। जनाब गावा कल नई दिल्ली में 5वें कौटिल्या इक्तसादी कॉन्क्लेव के मुकम्मल इजलास से खिताब कर रहे थे। इसका वजू था तेज रफ्तार तब्दीलियों के दौर में जाब्ता जाती निगरानी। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। वजीर आजम मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जनसेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अनथक अजम का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के जरिए हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अनथक काम कर रही है। हुकूमत ने हवाई अड्डों पर आलमी मयार की सहूलतें फराहम करके शहरी हवाबाजी के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया है। वजारत खारजा ने पाकिस्तान हाई कमीशन के नाजिमुल उमूर को तलब किया और पाकिस्तान की जानिब से भारतीय सरहद में गैर कानूनी दरअंदाजी की मुसलसल इआनत करने के खिलाफ पाकिस्तान से सख्त एहतजाज दर्ज किया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में बैन अल-अक़वामी सरहद पर जुमे के रोज पेश आने वाले के वाकये के बारे में लगाए गए बेबुनियाद इल्जाम को भी यकसर मुस्तरद किया। वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी फरीक को बताया गया कि 3 अफराद भारतीय इलाके में दाखिल हुए और बीएसएफ की जानिब से कई बार पाकिस्तान वापस जाने की वार्निंग दिए जाने के बावजूद वो सरहदी बाढ़ की तरफ बढ़ते रहे। इन अफराद की जानिब से फौरी खतरा पैदा होने की सूरत में बीएसएफ को कार्रवाई करनी पड़ी। भारत के मुताबिक यह वाकया पाकिस्तान की जानिब से सरगर्म मुसल्ला मुनशियात के गिरोहों की जानिब से बार बार सरहद पार नकलो हरकत करने की कोशिश को जाहिर करता है। पाकिस्तान पर जोर दिया गया है कि वो सरहद पार दरअंदाजी, मुनशियात के स्मगलिंग की सरगर्मियों और पाकिस्तान की सरहदी हिफाजती फोर्सेज की मिली भगत की तहकीकात करे और इसे रोकने के मुनासिब इकदाम करे। इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ मच्छर और वजीर आजम मोदी को इसराइल के आइंदा योम आजादी की तकरीबात में तकरीबाती शमा रोशन करने के लिए मदऊ किया है। कैप्टन मच्छर से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान जनाब नेतन्याहू ने फजाई हमले को नाकाम बनाने में उनकी दिलेरी को सराहते हुए उन्हें भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का हीरो करार दिया। उन्होंने कैप्टन मच्छर की जल्द और मुकम्मल सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाएं की और उनके अहले खाना के लिए भी नए ख्वाहिशात इजहार किया। जनाब नेतन्याहू ने कहा कि तकरीबाती शमा रोशन करने का एजाज रिवायती तौर पर इसराइली शहरियों के लिए मखसूस होता है, इसलिए कैप्टन मच्छर को यह दावतनामा उनकी बहादुरी और खिदमात का एक गैरमामूली और अहम एतराफ है। कैप्टन मच्छर इस वक्त अबूजबी में जेर इलाज हैं और सेहतियाबी के मरहले से गुजर रहे हैं। उन्होंने कॉकपिट में होने वाले हमले के दौरान गैरमामूली दिलेरी और हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए 174 मुसाफिरों की जानें बचाई। भारतीय महकमे मौसमियात ने केरला, माहे तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज इक्का दुक्का मुकामात पर शदीद बारिश पेशगोई की है। महकमे के मुताबिक मराठवाड़ा, विदर्भ के बकिया हिस्सों, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और शिमालय अंदरूनी कर्नाटक के कुछ हिस्सों में जुनो मगरी मानसून की शिद्दत में कमी आने के बायस मौसमी हालात साजगार रहेंगे। जापान में एशियन गेम्स 2026 आज इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। इस तरह दो हफ्ते से ज्यादा अरसे तक जारी खेलकूद का यह शानदार मुकाबला खत्म हो जाएगा। एशियाई खेलों की इख्तितामी तकरीब जापान के नगोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में मुनद होगी। इसी मकाम पर इफ्तिताही तकरीब मुनद की गई थी। इख्तितामी तकरीब भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगी। इस साल एशियाई खेलों में भारत ने कुल 85 तमगे जीतकर शानदार कारकर्दगी का मुजहरा किया और वह तमगों की फहरिस्त में चौथे मकाम पर रहा। भारत ने सोने के 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगे जीते हैं। इख्तितामी तकरीब के लिए भारत की खवातीन परचमबरदार सरकर्दा निशानेबाज नीरू रांडा होंगी। वो नगोया में फख्र के साथ तिरंगा थामेंगी। मर्दों की क्रिकेट में भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3-1 रोजा बैन अवी मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली है। भारत ने सीरीज के पहले दो मैचों में जीत हासिल की, जबकि कल रात न्यू चंडीगढ़ के मुल्लनपुर में तीसरे और आखिरी एक रोजा बैन अवी मैच में उसे वेस्टइंडीज के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 2026-27 की मुद्दत के लिए मुख्तलिफ महकमों से मुतालिक पार्लिमानी कमेटियों की असर नौ तश्कील की है। मरकजी वजारत तालीम ने क्लासिकी जबानों आसामी, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के मुतालियात के लिए 5 नए महारत के मराकज के क्याम की मंजूरी दी है। भारत ने पाकिस्तान के एलची को तलब करके पाकिस्तान से मुसलसल होने वाली गैर कानूनी सरहद पर दरअंदाजी में आनत पर सख्त एहतजाज दर्ज कराया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन अगले साल 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में मुनद होगा। इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ मच्छर को इसराइल, भारत और पूरी दुनिया का हीरो करार दिया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल एप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडेज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश खिदमत अकवाल जर्रे पर मबनी शम फरोजा।
2: मुनाफकत नफक से माखूज है जिसके लुगवी माना सुरंग के हैं। इसकी एक वजह यह बयान की जाती है कि लोमड़ी धोखा देने के लिए अपने बिल के दो मुंह रखती है। नीज इस्तिलाह शरा में मुनाफकत कहते हैं बजाहिर ईमान वाला बनना और दिल से ईमान वालों के खिलाफ कोशिशें करना, यानी जाहिर व बातिन में तजाद होना। मुनाफरत कहते हैं बजाहिर एक दूसरे से खुश दिली, खुश अखलाकी और गर्म जोशी से मिलना, लेकिन दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत पालना, कीना बुग्ज रखना, एक दूसरे का बुरा चाहना। मुनाफकत हो या मुनाफरत, दोनों ही इंसानी समाज और मुआशरे के लिए मानिंदे जहर हैं। दुनिया के किसी भी मुआशरे और समाज के लोग इन दोनों बीमारियों के साथ तरक्की नहीं कर सकते। हकीकत यह है कि आज मुनाफकत और मुनाफरत दोनों ही हमारे समाज की रगों में खून बनकर दौड़ रही हैं। हम में से बहुत से लोग मुनाफिक हैं, निफाक उनके दिलो दिमाग में बसा हुआ है, मुनाफकत और मुनाफरत में डूबे हुए हैं और उन्हें इस बात का अफसोस तो कुजा एहसास तक नहीं। आज हमारे मुआशरे में ये बात आम हो चुकी है कि जबान पर कुछ होता है और दिल में कुछ और। लोग एक दूसरे की कामयाबियों और फरावानियों से खुश तो क्या होते, एक दूसरे के तईं दिलों में नफरतें और अदावतें बिठाए हुए हैं। मुनाफकत और मुनाफरत को हर दीन व मजहब, कबीला व कौम और मुआशरे व समाज ने न सिर्फ ये के मजमूम समझा है बल्कि इन दोनों बीमारियों को एक सेहतमंद मुआशरे की तरक्की में बड़ी रुकावट भी करार दिया है। मुनाफकत और मुनाफरत बजाते खुद नफसियाती बीमारियां तो हैं ही, मजीद ये के इनके नतीजे में बहुत सी दीगर मुआशरती और समाजी बुराइयां भी जन्म लेती हैं। मसलन हसद, कीना बुज, झूठ, धोखा, गीबत, चुगलखोरी, खयानत वगैरह। اسی لیے مذہب

0: हुसैन अदल प्रोग्राम में आज आप महसूस हो रहे थे बेनाज मसानी और देवाशीष चक्रवर्ती के गए चंद गैर फिल्मी गजलों से। कलाम था मिर्जा गालिब, मोमिन खां मोमिन, जानिसार अख्तर और निदा फाजली का। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव से 1071 के लोकर्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रीडिश पर हमारी नशात जारी है। रूबरू इस प्रोग्राम के तहत सुनिए मारूफ कॉलम निगार और मुसन्निफ जनाब सैयद उबैदुर रहमान के साथ की गई एक बातचीत। आपसे गुफ्तगु की मोहम्मद मेहताब आलम ने।
1: उर्दू सर्विस के प्रोग्राम रूबरू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मेहताब आलम और आज हमारे मेहमान हैं सैयद उबैदुर रहमान, जिनसे हम बात करेंगे हिंदुस्तान की जंगे आजादी में मुसलमानों के किरदार के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त हमारा मुल्क अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में ये मुनासिब मालूम होता है कि हम उन गिराकद्र हस्तियों को याद करें जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए अपने जान तक की परवाह नहीं की। हमारी खुशकिस्मती कि इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ उबैदुर रहमान साहब हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। उबैद साहब एक कॉलम निगार हैं और मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ भी। उनकी ताजा तरीन तस्लीम का नाम है बायोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स। इस किताब में 100 से ज्यादा मुस्लिम मुजाहिदीन आजादी का सर्वानी खाका पेश किया गया है। उबैद साहब आपका खैर मकदम।
2: बहुत शुक्रिया।
1: सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपको इस किताब के लिखने का और ख्याल कैसे आया और कब आया?
2: ये एक प्रोसेस है, ये मेरी पहली किताब नहीं है। इस मौजू पर मेरी ये चौथी तसनीफ है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहली किताब मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स कंट्रीब्यूशंस ऑफ इंडियन मुस्लिम्स इन द फ्रीडम मूवमेंट, तकरीबन 4 साल पहले उसको रिलीज किया गया। उसके बाद तकरीबन 1.5 साल पहले उलमाज रोल इन इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट विथ फोकस ऑन रेशमी रूमाल तहरीक, और अब पिछले साल अक्टूबर में ये किताब बायोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स पब्लिश हुई। पिछले 4 महीने में इसका तीसरा एडिशन शाया हो चुका है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। चलिए, मुसलमानों ने जो काम किया है, मुस्लिम उलमा ने जो काम किया आजादी के लिए, वो उसके बारे में बात की जाती है तो चंद एक हस्तियां हैं जिनके बारे में बात की जाती है। अबुल कलाम आजाद हो गए, आसिफ अली हो गए, चंद और लोग हो गए, उनके बारे में बात की जाती है। लेकिन जो ऐसे लोग जिन्होंने बहुत कुर्बानियां दी, अपनी जानों पर खेल गए और एक तवील अरसे तक इनकार्सरेशन, जेल और कैद का सामना करना पड़ा, उनके बारे में लोग बात नहीं करते और भूल जाते हैं। तो जब पहली किताब जो थी वो बाय डिफॉल्ट थी, हमारे एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने वो अमेरिका में रहते हैं यूरोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा कि जरूरत बहुत है, कौन लिखे इस काम को, कोई सामने नहीं आता। तो उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा जबरदस्ती कि यार आप लिखिए और कम से कम इस चीज को शुरू कीजिए। तो उस वक्त हमने एक बहुत ही तकरीबन 200 सफात की किताब मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स कंट्रीब्यूशंस ऑफ इंडियन मुस्लिम्स इन द फ्रीडम मूवमेंट, और उसका उर्दू में मुस्लिम मुजाहिदीन आजादी और तहरीक आजादी में उनकी खिदमत, वो किताब शाया की गई, जिसका पटना में हमने लॉन्च किया। किताब को बहुत मकबूलियत मिली, लोगों ने बहुत सराहा, लेकिन लोगों ने कहा कि इतना काफी है। तो उस वक्त ये प्रोसेस शुरू हुई कि हम इस चीज को आगे बढ़ाएं और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी किताबें सामने आई।
1: जी, तो किताब में जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि उलमा के रोल, और आपने एक अलग से किताब भी लिखी रेशमी रूमाल तहरीक को लेकर के भी, तो इस किताब में भी जंगे आजादी में जो उलमा का किरदार रहा है उसका खास तौर पर जिक्र है। कई ऐसे लोगों का जिनका हम आमतौर पर जिक्र करते हैं, आमतौर पर उनके बारे में बातें होती हैं, मौलाना आजाद हो गए और मौलाना मोहम्मद अली जौहर और दूसरे लोग हैं, उनके बारे में बातें भी होती हैं, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे उलमा

0: जिनके बारे में जिक्र नहीं होता है, जिसका आपने इस किताब में जिक्र किया है। तो एक तो पूरे तहरीक को लेकर के 1857 से लेकर के जब हमें आजादी मिली 1947 तक, थोड़ा उसके बारे में बताएं, और उलमा का जो किरदार रहा है, चाहे वो रेशमी रुमाल तहरीक के हवाले से हो या फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया कयाम के हवाले से हो या फिर जो ये अलग अलग जो तहरीकें रही हैं और जो हमारा नेशनल फ्रीडम मूवमेंट रहा है उसमें उलमा का जो किरदार रहा है उसके बारे में थोड़ा सा अगर जिक्र करें हमारे समाइन को बताएं। तो
1: ये एक ऐसा मौजू है जिस पर एक अलग से घंटे की गुफ्तगू होनी चाहिए, क्योंकि आप देखें कि चाहे वो रेशमी रुमाल तहरीक रही हो, जामिया मिल्लिया की खुद जैसे आपने तस्करा किया तहरीक रही हो, इसके अलावा तकरीबन चार ऐसी तहरीकात हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते। मेरी किताब उलमाज रोल इन इंडिया फ्रीडम मूवमेंट में हमने एक तो रेशमी रुमाल तहरीक का तस्करा किया, फ्राइजी मूवमेंट जो बंगाल में एक प्रेजेंट तहरीक थी और 19 सेंचुरी के मिड और 19 सेंचुरी के आखिर तक तकरीबन वो तहरीक जारी रही, उसमें अंग्रेजों से बहुत जो गरीब मुसलमान थे, मिडिल क्लास मुसलमान थे, मिडिल क्लास हिंदू पीजेंट्स थे, उन सब के राइट्स के लिए स्ट्रगल किया, काफी लोग शहीद हुए उनमें से। उसमें एक दुदू मिया थे जो उसके उस तहरीक के बानी थे फ्राइजी मूवमेंट के, और उन्होंने यानी वो और उनके अब्बा दोनों जो थे दोनों काफी मुद्दत तक जेल में रहे, तकरीबन लाखों लोगों को उन्होंने फ्राइजी मूवमेंट के उसमें शामिल किया, उनकी लाठी बरदार एक फौज थी, एक किला था जिस पर अंग्रेजों ने हमला किया, अंग्रेज फौज उससे हारी भी और फिर उसके बाद एक बड़ी फौज जो तोपों वगैरह से मुसल्ला थी उसको लेकर आया गया, लेकिन हमने से शायद अक्सर लोगों ने इस चीज के बारे में नहीं सुना। रेशमी रुमाल तहरीक जिसको शेख महमूद हसन जिनके नाम पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया का एक बड़ा गेट महमूद हसन गेट के नाम से मशहूर है वो उन्होंने शुरू की। ये यानी रेशमी रुमाल तहरीक के बारे में हम लोग सुनते हैं कि क्या थी, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड था और उसमें जिस लेवल के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उसके बारे में हम नहीं जानते। रेशमी रुमाल तहरीक में मौलाना उबैदुल्ला सिंधी थे, एक महमूद मियां अंसारी थे और फिर तकरीबन 40-50 और लोग थे जो मुल्क से बाहर गए, अफगानिस्तान गए, हिजाज गए, उन्होंने वहां मुआहदे किए, वहां उन्होंने मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव यानी जैसे शेखुलिन खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हुई, हिजाज के गवर्नर से मुलाकात हुई, फिर उनके उन्होंने लेटर्स लिखवाए जो हिंदुस्तान आए और रेशमी और फिर उसके बाद मौलाना उबैदुल्ला सिंधी जो काबुल गए थे वहां उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की उनके साथ मिलकर, महाराजा महेंद्र प्रताप के साथ मिलकर जिनका हम लोग बहुत नाम सुनते हैं अलीगढ़ के उसमें कॉन्टेक्स्ट में, जिनके बच्चों ने अलीगढ़ को जमीन दी बाद में और उस पर एक तनाजा भी चला जो बाद में रिजॉल्व हो गया। तो उबैदुल्ला सिंधी खुद उस जो गवर्नमेंट थी प्रोविजनल गवर्नमेंट उसके होम मिनिस्टर थे, फिर मौलाना भोपाली जो थे वो उसके प्राइम मिनिस्टर थे और महेंद्र प्रताप सिंह जो थे उसके प्रेसिडेंट थे, लेकिन हमें और फिर वो दूसरा वो एक पूरी ऐसी प्लानिंग थी जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ जिद्दोजहद को जो अफगानिस्तान के रास्ते से हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ अटैक करना है, फिर टर्किश और रशियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर दूसरी तरफ से हिंदुस्तान पर हमला करना, तो ये सारी चीजें उनकी पूरी यानी पूरी प्लानिंग हो गई थी। अंग्रेजों ने उसको अंग्रेज दे गॉट विंड ऑफ इट और फिर उन्होंने तकरीबन हिंदुस्तान में 250 उलमा को कैद किया जिनको ताजीबात का निशाना बनाया गया और उनको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ा। उसमें बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो जिंदगी भर हिंदुस्तान आ ही नहीं पाए, जैसे मौलाना अंसारी की बात मैं कर रहा था, मौलाना अंसारी हिंदुस्तान आ ही नहीं पाए, उनके जो बच्चे थे हिंदुस्तान में वो हिंदुस्तान में रह गए, उनको उन्होंने फिर अफगानिस्तान में दूसरी शादी की और फिर वहीं उनका इंतकाल हुआ। फिर अगर हम देखें कि 1857 में 1857 की जो जंग थी उसकी इब्तदाई जो उलमा ने की थी उसमें मौलाना कासिम नानोती का नाम आता है, मौलाना बरकत का नाम आता है, फिर मौलाना मौलवी अहमदुल्ला शाह का नाम आता है। अहमदुल्ला शाह जो थे एक अफगानी शख्सियत थे, ये इनके बारे में कहा जाता है कि कोई नहीं जानता कि वो पैदा कहां हुए थे, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि वो मद्रास में पैदा हुए, फिर ये फैजाबाद आ गए और फैज मौलवी अहमदुल्ला

0: था वो सदरुद्दीन आजमगढ़ का था। बहुत बड़ी यानी दिल्ली की जो यानी मुख्तसर तरीन शख्सियात थी उनमें से उनका शुमार होता था। मुगल शहनशाह या उस जमाने के जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनके बहुत करीबी दोस्त भी थे वो, और बाज लोग कहते हैं कि उनके कलाम में तसीह भी ये किया करते थे। तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, और ये इनकी जमाने में कहते हैं कि 3 लाख रुपए उस मालियत की किताबें उस वक्त यानी उस जमाने के लिहाज से जो करोड़ों में है उनकी जाती लाइब्रेरी की उसमें होती। इनको बहुत जबरदस्त तरीके से अंग्रेजों ने वो किया, टॉर्चर किया, उनकी सारी जायदाद को अपने कब्जे में कर लिया, कोर कर लिया। बाद में किसी तरह बहुत दिनों के बाद उनकी कुछ जायदाद के कुछ हिस्से को उनको वापस किया। बहुत सारे अफराद भी हैं, बहुत सारे हादसात भी हैं जिनके बारे में हम लोग गुफ्तगू नहीं करते। यहाँ पर पुरानी दिल्ली में एक उस सिर्फ उस मोहल्ले से 1400 लोगों को अंग्रेजों ने आजादी के बाद यानी 1857 में जो जंग हुई थी उसके 1 साल के बाद जब अंग्रेज आए वापस 1858 में, तो उन्होंने यानी सबको शूट किया था, 1400 लोगों को सिर्फ एक मोहल्ले से, कुचा चिलान से, अभी भी मोहल्ला है।
1: जी
0: और उसका उसकी हम वो हैसियत नहीं जानते। उसको कहते हैं उस जमाने में कुचा चिलान जो था वो आर्ट एंड कल्चर का दिल्ली में सबसे बड़ा सेंटर था। वहां बड़े लोग कहते हैं कि बहुत उलमा थे वहां पर जिनको सबको ले जाके शहीद किया गया। फिर मौलाना मुफ्ती एक मौलाना कैरान भी थे, उनका हम तस्करा कभी हम यानी एक कॉन्टेक्स्ट में सुनने को आता है कि बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन 1857 में उनका जो रोल था उसके बारे में लोग नावाकिफ हैं। एक्चुअली अंग्रेजों का इसके खिलाफ जो जंग हुई वो दो तरह की थी। एक तो ये कि जंग आदमी आपने उनमें जिस्मानी तौर पर हिस्सा लिया, बहुत अहम था। एक दूसरा था वो नफ्सियाती जंग कर रहे थे जिसमें हिंदुस्तान के मजाहिब को, और हिंदुस्तान में चूंकि उस वक्त इस्लाम पहले एक रूलिंग रीजन था तो इस्लाम को बहसीत मजबूरी उन्होंने बहुत उसको अटैक किया था। तो जो मिशनरी एक्टिविटीज थी उस वक्त उस जमाने में बहुत ही यानी बहुत ज्यादा पावरफुल थी, हजारों की तादाद में आते थे। लोग कहते हैं कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर अंग्रेज जो थे मिशनरीज मुस्लिम उलमा को चैलेंज किया करते थे, और मुस्लिम उलमा के पास उनका जवाब नहीं होता था। तो आगरा में एक बहस हुई थी कारांगी की फैंडर के साथ। फैंडर यानी अपने जमाने का पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं अपनी दुनिया पूरी दुनिया में बड़ा मुबल्लिग था, और कहते थे वो जहां पहुंच जाता था पूरी पूरी आबादियां जो थी वो ईसाई हो जाती थी। तो आगरा में इनकी बहस हुई इन दोनों की। जब वो फैंडर की किताब आई उसकी हक के नाम से था, उसके जवाब में मौलाना कैरानवी ने इजहार हक के नाम से किताब लिखी। तो उसकी किताब, उसका नाम मुझे पूरा जहन में नहीं है, उसके उसके नाम में मीजानुल हक था शायद, या इजहारुल हक, ऐसी इन दोनों किताबें ऐसी ही थी। तो वो जहां खड़ा हो जाता था तो पूरा मजमा खामोश हो जाता था और लोग वापस चले आते थे। वहां खड़े हुए तो उन्होंने वहां पर जो वो हुआ तो पूरा आगरा की एक बड़ी आबादी उलमा और अंग्रेज जो गवर्नमेंट थी, अंग्रेज चाह रहे थे, गवर्नमेंट चाह रही थी कि हार जाए तो पूरा मुसलमान जो उलमा है उनकी बेइज्जती हो जाएगी और वो खड़े नहीं हो पाएंगे। तो उस वक्त उन्होंने फैंडर को बुरी तरह शिकस्त दी और फैंडर यहां से भाग गया हिंदुस्तान छोड़कर।
1: उदय साहब, आपने मशरकी हिंदुस्तान और जो शुमाली हिंदुस्तान है उसके जो जंग आजादी के मुजाहिदीन है उसका जिक्र किया, लेकिन जो जुनूबी हिंदुस्तान के मुजाहिदीन आजादी है उनके बारे में भी ज्यादा जिक्र नहीं होता। आपने किताब में कम से कम 3-4 ऐसे अहबाब का जिक्र किया है, वैकम मजीद, वैकम मौलवी और वैकम अब्दुल खालिद। थोड़ा अगर जनूबी हिंदुस्तान के जो मर्द जो मुजाहिदीन रहे हैं उसके बारे में अगर हमारे सामने इनको बताएं।
0: देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है, और जब भी कहीं गुफ्तगू होती है तो ये सवाल जरूर सामने आता है। लेकिन आप देखें कि सिर्फ मुसलमान मुजाहिदीन आजादी के बारे में नहीं, जो पूरी लीडरशिप थी तहरीक आजादी की वो आप देखें नॉर्थ में कंसंट्रेटेड थी, और कुछ उसमें आप देखें कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन बिलुमूम जो था आप वो उसको कहें तो चाहे गांधी जी हों, सरदार पटेल हों, आप देखें जवाहरलाल नेहरू हों, एक मोहतद तादाद जो बड़ी तादाद थी वो नॉर्थ इंडिया की थी। ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं है,

0: इसमें तकरीबन एक दर्जन के करीब लोग साउथ इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। इसमें एक सफरानी का ताल्लुक है जो हैदराबाद से हैं, जो सुभाष चंद्र की आजाद हिंद फौज में थे और फिर बाद में फॉरेन सर्विस में रहे और बहुत एम्बेसडर रहे वो। फिर इसमें मौलवी अब्दुल रहमान का तस्करा है जो कांग्रेस के बड़े लीडर थे, और उन्होंने बल्कि कांग्रेस में जो केरला की कांग्रेस की जो इकाई थी उसको वो किया, उन्होंने एस्टेब्लिश किया उसको। तो बहुत सारे लोग हैं अब्दुल रहमान के बारे में, मौलवी अब्दुल रहमान के, अब्दुल रहमान उनका जो हम अब जैसे यहाँ पर नॉर्थ में हम अब्दुल रहमान कहते हैं, उनका नाम अब्दुल रहमान है। तो अब्दुल रहमान साहब जो थे उन्होंने यानी तकरीबन कई 6-7 साल जेल में गुजारे। उन्होंने उन्होंने अपने कॉलेज की जो गांधी जी ने कहा क्या नाम उसका कि अंग्रेजों उसकी जो एस्टेब्लिश कॉलेज है उसको छोड़ो, जिसके जवाब में जामिया मिल्लिया एस्टेब्लिश किया गया। तो उन्होंने अब्दुल रहमान जो थे प्रेसिडेंट वहां पर मद्रास के कॉलेज में पढ़ते, तो उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई तालीम छोड़ दी और फुल वक्त जो था वो फ्रीडम मूवमेंट में शामिल हो गए। सफरानी का तस्करा मैंने किया, सफरानी जो खुद बहुत बड़ी शख्सियत थे और वो उन्होंने इंजीनियरिंग की और फिर बाद में आजाद हिंद फौज में चले गए और बहुत करीब थे, यानी जो हमारे सुभाष चंद्र बोस के जो नेताजी के जो करीब तरीन लोगों में थे उनमें से एक सफरानी थे। बहुत ज्यादा लेकिन मैं कहूंगा आपको कि ज्यादा लोग इसलिए क्योंकि बिलमूल शख्सियात जो थी, जो लीडरशिप थी, चाहे मुसलमानों की हो या मेन स्ट्रीम लीडरशिप की हो, वो सारी लीडरशिप का जो थी वो नॉर्थ में मुर्तकिज थी। साउथ में लोग थे लेकिन ना तो वहां पर फ्रीडम मूवमेंट वैसे स्ट्रांग थी जैसे नॉर्थ में, ना ही लीडरशिप वहां पर ज्यादा थी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं सामीन को कि सिर्फ एक किताब इंशाल्लाह इसी मौजू पर, यानी केरला में एक मालाबार म्यूटनी हुई थी
1: मापला
0: 1900 मापला रिवोल्ट 1919-1920 में, जिसमें हजारों लोग शहीद हुए थे। बाज लोग कहते हैं कि 20,000 करीब लोग शहीद हुए थे लेकिन कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं कि उसमें 5-7 हजार के करीब लोग शहीद हुए थे। काफी लोगों को जेल यानी एक लंबी मुद्दत तक जेल में रहना पड़ा था। उस पर इंशाल्लाह मेरी अगली किताब है जो नेक्स्ट 6 मंथ्स में पब्लिश होगी इंशाल्लाह।
1: जी उबैद साहब, हम आखिर में ये जानना है, आपने किताब में जो ख्वातीन मुजाहिदीन आजादी उसका जिक्र मिलता है, कुछ नाम तो ऐसे हैं जिनसे हम वाकिफ हैं, मसलन बेगम अनीस किदवाई और इस तरह के नाम, लेकिन और लोगों का भी आपने जिक्र किया है, तो अगर थोड़ा सा उनके बारे में हमारे सामीन को बताएं कुछ कि उनका जो किरदार था वो क्या किरदार था, वो कैसे मर्द जो मुजाहिदीन आजादी थे उससे मुख्तलिफ था।
0: लेकिन बेगम अनीस कज़वई के बारे में भी शायद ही लोग जानते हो, उनकी एक किताब है आजादी की छाओं में,
1: जी
0: वो किताब उनकी पोती ने उसको तर्जुमा किया, उसकी वजह से लोग वाकिफ हो गए। लेकिन अभी भी बिलमूम बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। अरुणा आसिफ अली को लोग बहुत जानते हैं,
1: जी
0: अरुणा आसिफ अली आसिफ अली साहब की वाइफ थी और दोनों जो था एक यानी उस लेवल का लीडरशिप में कोई कपल हिंदुस्तान की आजादी में अगर आप कहें तो ये सबसे आगे थे। फिर कुलसुम सियानी थी, कुलसुम सियानी ने मैगजीन शुरू किया, मल्टी लैंग्वेज लिंगुअल मैगजीन शुरू किया जो पूरे हिंदुस्तान में महात्मा गांधी की जो अफकार थी उनकी तरवीज के लिए काम करता था। बहुत लंबी मुद्दत तक उसने यानी वो शुरू से आखिर तक इसी में लगे रहे, इसके अलावा उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, ना अपने अपनी तरक्की के लिए, ना अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो दे पाई मुस्तकिल तौर पर। और एक जमाने में जब 40s में जब अंडरग्राउंड चली गई तहरीक आजादी, तो उस वक्त वो उन चंद लोगों में थी जो यानी कैडर के साथ कांटेक्ट में थे और वो लीड कर रही थी। इसी तरह अरुणा आसिफ अली का मामला, अरुणा आसिफ अली ने तो जब कांग्रेस की जो मेन लीडरशिप थी वो अंडरग्राउंड चली गई, उस वक्त ये मुस्तकिल तौर पर ये यानी क्या नाम है लीड कर रही थी और गाइड कर रही थी फ्रीडम मूवमेंट को। जेल में बहुत दिनों तक अरुणा आसिफ अली रही थी और जब आम लोगों को जब यानी सबको आजादी मिल गई, सब लोगों को जेल से रहा कर दिया गया, गवर्नमेंट से एग्रीमेंट हो गया था उस वक्त, तो उस वक्त भी इनको रिहाई नहीं दी गई और उनको बल्कि इनको दूसरे दूसरे जेल में कर दिया गया। लेकिन उस वक्त कैदियों ने रिवोल्ट किया और जो लोग जिन लोगों

0: को अंबाला की जेल में थी और जिन लोगों को आजादी का परवाना मिल गया था उन्होंने कहा था कि जब तक अरुणा आसिफ अली को छोड़ा नहीं जाएगा तब तक हम भी जेल से बाहर नहीं जाएंगे। जब उनको निकाला गया तभी दूसरे लोग बाहर आए। तो आप देखें, मर्द औरतें, मुसलमान, हिंदू, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, हर तरह के लोगों ने, हर जेंडर के लोगों ने, हर कास्ट के लोगों ने, हर एरिया के लोगों ने आजादी के लिए बढ़ चढ़ कर जद्दोजहद की। उसको अगर ऐसा नहीं होता तो शायद आजादी 47 में हम लोगों को नसीब नहीं होती। हमें जो मुजाहिदीन आजादी हैं, जो लीडर्स हैं हमारे, किसी भी कौम के हों, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, किसी भी बैकग्राउंड के हो, उन सब के कुर्बानियों को बहुत कदर की निगाह से देखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस माहौल में कुर्बानियां दी, जिस माहौल में उन्होंने मुसीबतों का सामना किया, कैद का सामना किया, अपने वक्त को वो किया, अपने सारी जो फ्यूचर उसके प्रोस्पेक्ट्स थे उनको कुर्बान किया, अगर उन्होंने ये नहीं किया होता तो हिन्दुस्तान आजाद नहीं होता। किसी न किसी तरह हम अभी भी गुलामी की जंजीरों में बंधे होते, या हमें बहुत और दिनों तक आजादी के परवाने का इंतजार करना पड़ता।
1: शुक्रिया उमेर साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए।
0: बहुत शुक्रिया आपका।
2: रूबरू प्रोग्राम के तहत अभी आप समाप्त कर रहे थे मारूफ कॉलम निगार मुसन्निफ जनाब सैयद उबैदुर रहमान के साथ की गई एक बातचीत। आपसे महवे गुफ्तगु थे जनाब मोहम्मद मेहताब आलम। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशा जारी है मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। मेरी पसंद ये प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। उम्मीद करते हैं छुट्टी का दिन है, आपके मिजाज बहुत अच्छे होंगे और मजीद इसको बेहतर बनाने के लिए, उम्दा बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 50 और 60 की दहाई की मारूफ अदाकारा संध्या शांताराम की फिल्मों के चंदनाक में उनकी बरसी के मौके पर। उन्होंने वी शांताराम की मराठी फिल्म अमर भोपाली से अपने फिल्मी सफर का आगाज किया था। झनक झनक पायल बाजे, दो आंखें बारह हाथ, नवरंग, सेहरा और मराठी फिल्म पिंजरा जैसी शानदार फिल्मों में उन्होंने अपनी अदाकारी के जलवे दिखाए। उनके बारे में कहा जाता है कि दो आंखें बारह हाथ फिल्म उन्होंने खतरनाक शेरों के साथ बिना किसी बॉडी डबल के शूटिंग की थी, जिससे उनकी हिम्मत की मिसाल दी जाती है। और वी शांताराम के साथ वो अज़्दवाजी जिंदगी में मुंसलिक हुई 22 दिसंबर 1956 को, और उसके बाद उन्होंने सिर्फ उन्हीं के साथ फिल्मों में काम किया। 4 अक्टूबर 2025 को 94 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को खैरबाद कहा।

स्त्री फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजों में। मौसीकी तरतीब दी थी सी रामचंद्र ने। और ये है झनक झनक पायल बाजे फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और हेमंत कुमार का गाया।

जी प्रोग्राम के आखिर में सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में ये नगमा। फिल्म है जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली, मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

0: बबीन ने खुद है।
1: क्या हुआ मैं खाती हूँ, हमारी क्या खता?
0: अभी ये आवाज कैसी थी?
1: हमारे कामकाज की थी, और आवाज कैसी थी?
0: क्या आज के दिन कामकाज के लिए इम्तनाए आम न था?
2: तुम्हारा इम्तनाए आम खुदा का कलाम न था?
0: क्या हमारा मुकद्दस रोज हंगामे बादो जाम नहीं?
2: हमारे यहाँ बादो जाम का नेक अंजाम नहीं, न शौके बादा रखते हैं न शौके जाम करते हैं, खुदा का नाम जपते हैं और अपना काम करते हैं।
0: साहेबो नहीं अपने बातें हुकूमत की, ये तो शासन को ही है रोमन हुकूमत की, बस ले जाओ।
1: नहीं ऐसा कभी नहीं होगा।
0: ना होगा अच्छा ना सही, ले जाओ दोनों को चला दो, इस यहूदी के साथ इस लड़की को भी चला दो।
2: अरे नहीं इस पर किसम न जाओ, तुमको याद करो
0: मुस्लिम पर रहम खाना कानून के खिलाफ है, ऐसे सरकशों का मारा जाना बेहतरीन इंसाफ है।
2: एक मासूम की जान को हमा नहीं, अच्छा कुछ परवाह नहीं, अंदेशा नहीं। ओ बेटा चलो मर्दाना वहां चलो,
0: ले चलो जाओ फोन ले जाओ। चलो
3: ओ बेदर्द रोमन सरदार,
1: प्यारी मनुष्य भाग जाओ भाग जाओ, वरना ये जननी तुम्हें भी यहूदी समझकर मार डालेंगे।
3: प्यारी भरोसा करो, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते, होगी नामा हर किस शमशीर से दम की, दम भर में दिखा देगी ये राह अदम की, तलवार नहीं तय के अजल की ये छुरी है, दोजख के जबानों से भी आग इसकी बुरी है।
0: क्यों देर लगा रहे हो, ले जाओ।
3: माफ कर ए रोमन सरदार, माफ कर।
0: किसे?
3: इसे।
0: किसलिए?
3: इसलिए कि तुम्हारे कदमों के आगे गिरा हुआ है, और गिरी हुई दीवार पर चढ़कर कूदना मर्दानगी नहीं, इसलिए हट जाओ इसे न सताओ।
0: ये हिमायत किस लिए? इस कुशल यहूदी के लिए, हमारे दीन के दुश्मन के लिए।
3: यहूदी हो या ईसाई, यूरोप का बाशिंदा हो या एशियाई, बद है या नेक, मगर खुदा के रहमो करम की नजर सब पर है एक।
0: मुझे इनका हिमायती भी मुझे मोटा है, इसे भी मांग लो, देर न लगाओ।
3: बस भक्तो ना मुरादो, खाले नीचे झुका लो।
0: किसके हुक्म से?
3: मेरे हुक्म से।
0: तू कौन है?
3: इधर देखो
0: कोई चल रहा
3: प्रेस दलील नौकर।

0: 파일로 로. 세 사람 빠짝하오. 아자도 에 사람 세카오.
1: 외로운 호가 여기 교수를 했을까?

0: ने भी तब तक न लगाया। इसने फेंक दिया, ये क्या असरार है? क्या मुखालिफ को दिया, क्या साहबिक किंग को दिया? हाय, हमने अपना दिल क्या दुश्मने किंग को दिया?
1: भाइयों, अपनी जलावतनी का करीब अब जमाना है। हुक्म हाकिम से इसी महीने के बाद हमें प्यारा वतन छोड़ जाना है, इसलिए रहना इस अंजुमन में बहम इत्तफाक से, तरके नजीन हार कदम इत्तफाक से। आएगा हमको ठगने जो इस बदन पाक में, उसको खुदा का कहर मिला देगा खाक में।
2: ओह, अगर ये मुझे इस वक्त पहचान जाए तो इस दिल दीवाना की बदौलत मुझे जान जाए।
3: बुझा दो सब कंदीलें, बुझा दो रश्मि के आसार, छुपा दो।
1: कौन है ये निराले वक्त कहानी वाला?
3: शाही आदमी जरूरी काम पर, दरवाजा खोलो शाह हटा के सलाम पर।
1: शाही आदमी, तुम सबके सब जोरदार वादे से जल्दी निकल जाओ, जल्दी अपनी जान बचाओ।
2: क्या ले जाओ?
1: नहीं तो मैं से नाजुक वक्त में न जाना, कोई आफत आ जाए तो मुझे बचाना हूँ।
0: ये खलल पे फायदे से खाली नहीं, आज मैं न्याज की रोटी का भेद लिए बगैर विहार छोड़ देने वाली नहीं। मनुष्य जल कर जाना।
2: कैसी कड़ी निगाहें, कहीं पार तो नहीं गई? शाह से चोर सिपंगर ने बनाया मुझको, किस मुसीबत में मेरे दिल में फंसाया मुझको। बस करता हूँ जो इस जा से कहीं जाने का, दिल कहता है कि तू जा, मैं नहीं जाने का।
1: शाहजादी बादशाहुल खौकत।
2: कौन? देसिया से मैं कहां भागू, किधर चुपके चले जाऊं? जमीन पर चाय कर रहे हैं, समझता हूँ समा जाऊं।
1: ए निशाने वाला जाही, क्या है फरमान शाही?
0: खास कार है
1: जी।
0: कौन से गुले पे खास है?
1: ये गुलाम के कारखाने का कारीगर आदमी का कार है।
0: चूना देख तो, इसकी सूरत प्यारे मार्कस से मिलती है।
2: अफसोस, ये मुझे पहचान जाए तो इस दीवाने की बदौलत मुझे जान जाए।
0: तुम्हारे पास नौ लखा हार है?
1: हाँ जी जनाबा, तैयार है।
0: लाओ मैं देखूँ तो सही कि वो हार मेरे ईसा नफस मार्कस की सुराहीदार गर्दन के सजावार है।
2: हाय, काश ऐसी खबर होती कि बुलावस मार्कस के गले का हार किसी दूसरे की जुल्फों का तार है।
1: हाँ तो शहजादी आलिया, हार लाओ।
0: हाँ लाओ, जल्दी लाओ।
1: नहीं तुम नहीं रहो।
2: हाय, कैसे फंस गए, किस देश की पली पड़े, खुल गई कलम अगर तू चैन के लाले पड़े।
0: चूना, मैं इस जवान यहूदी से भी एक काम बनवाऊंगी, यानी प्यारे मार्कस का एक मोनोग्राम बनवाऊंगी। जरा इधर तो आना भाई।
2: तुम वक्त ही आई,
0: तुम्हें नक्काशी आती है? ओ बागे सुकूत के बूटे, कुछ मुंह से भी फूटे। ये निगाहें शर्मगी, ये आंख ललचाई हुई है, तो शक्ले यार लेकिन कैसी मुरझाई हुई। नजर हसरत सदा और आंख ललचाई हुई, क्या दिल दिलदार की ये भी तमन्नाई हुई?
1: ये भी घबराया हुआ और वो भी घबराई हुई, दोनों पर यकसां ताहिर की घटा छाई हुई। हुजूर, ये रहा वो हार।
0: बेशक ये हाथ पुरबहार है, इसे कल दरबार में लाना, मुंह मांगे दाम ले जाना। कल ये हार अपने नौ बहार मार्कस को पहनाऊंगी और उसके गले का हार बन जाऊंगी। दिल तोड़ के दिल उसका मुसहर बनाऊंगी, ये घर बिगाड़ डालूंगी, वो घर बनाऊंगी।
2: इस तरह की बवफा से बेवफाई धुलेगी, दिले नादान कैसी कजदाई धुलेगी।
0: अजरा
1: आलिया,
0: इस हार पर मेरा और मेरे प्यारे मार्कस का नाम इस कारीगर से खुदवाना।
1: बहुत खूब,
2: शुक्र है, शुक्र है। आज बची जान बड़ी मुश्किल से, मेरी मुश्किल हुई आसान बड़ी ही मुश्किल से।
0: मनुष्य, तुम्हारा प्यार खाकिस्तर है।
2: नहीं, मेरा प्यार नक्श कल हजर है।
0: क्या ये कुछ तिलस्माती गुल खिला हुआ है?
2: नहीं, ये दिल तुमसे मिला हुआ है।
0: फिर तुम रोमनों से क्यों मिलते हो?

0: हूँ तुमको जता दूंगा। तुम्हारा बाग में कल रात को मैं सब बता दूंगा।
1: प्यारी मनुष्या, कसम खाओ और साफ साफ बताओ, तुम नजर आते हो अक्सर मुझको घबराए हुए, फिक्र के बादल हैं तुम पर इस कदर छाए हुए।
0: प्यारी, मैंने भी तुम्हें इसीलिए यहाँ आने की तकलीफ दी है कि खुले लफ्जों में अपनी हकीकत आश्कारा कर दूं। मेरे होठों पे शहद और जहर कातिल का छुपा दिल में पिलावला रूई में हो जिस तरह यूं थी दगा दिल में, हकीकत को न जाहिर आज तक होने दिया मैंने। मेरी जान, माफ करना तुम कह तुमको ठगा मैं।
1: खुदा, क्या तुमने मुझे ठगा, धोखा दिया, मुझे दामी मोहब्बत में फंसाया?
0: हाँ प्यारी, हकीकत यह है मेरा गुमान अलग है, मेरा यकीन अलग है, तेरा दीन अलग और मेरा दीन अलग।
1: तो क्या तुम हमारे हम मजहब नहीं हो?
0: नहीं, मैं तुम्हारे दुश्मनों की डाली हुई बुनियाद हूँ, रोमन खून और रोमन बाप की औलाद हूँ।
1: तुम यहूदी नहीं हो?
0: नहीं।
1: तो तुम यहूदी बनने को किसने कहा?
0: तुम्हारी दिल फरेब सूरत ने।
1: तुम्हें एक यहूदी लड़की से मोहब्बत करने की जरूरत किसने दिलाई?
0: तुम्हारी मोहब्बत
1: नूर मीनार, शरबत में कफे मार, जहरीला सांप और गले का हार, क्यों उलझता अपना दामन गरना फंसती फूल में, मुझको क्या मालूम था कांटा छुपा है फूल में।
0: धोखा नहीं प्यारे राहिल, धोखा तो उस वक्त होता जब मैं तुम्हारे खूबसूरत होने से इनकार कर देता या तुम्हें छोड़कर किसी और को प्यार करता। यहूदी हूँ कि रोमन हूँ, मैं नूरी हूँ कि नारी हूँ, कोई हूँ कुछ भी हूँ, पर तेरी सूरत का पुजारी हूँ।
1: मगर अब तुम इस सूरत की तरफ देखने का कोई हक नहीं रखते।
0: क्यों, आखिर किस वजह से इनकार है, किस लिए जी बेजार है?
1: इस दिल पर मेरा कब्जा है लेकिन इस हाथ पर मेरे बाप का इख्तियार है।
0: मगर तुम्हारा बाप तो मुतासिब यहूदी है, क्यों कर अपनी लड़की का हाथ एक रोमन के हाथ में लेने को तैयार होगा? ऐसी मोहब्बत और ऐसी शादी का कैसे रवादार होगा?
1: फिर मैं क्या कर सकती हूँ?
0: प्यारी राहिल, तुम चाहो तो सब कुछ कर सकती हो। मेरी जान के लिए अपने बाप को छोड़कर मेरे साथ निकल चलो, हम दूसरे शहर में पहुँच कर निकाह पढ़ा लेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। बरीज़ेश की इस तरह ईद हो जाए, तमाम उम्र को राहत नसीब हो जाए।
1: खुदा, ये तो अपने साथ भागने को कहता है।
0: प्यारे राही, किस सोच में पड़ गए? तुम ही हो राज़े दिल अपना, तुम ही हो बस खुशी अपनी, तुम्हारी एक हाँ पर मुनहसिर है जिंदगी अपनी। उम्मीदें जी उठे फूला, उसे मेरी चाक कह दो, मैं सबके प्यारे होठों के लबे नाजुक से हाँ कह।
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जिंदगी में दाग लगाया न जाएगा, मुझसे पिदर का नाम हंसाया न जाएगा, बापा और घर को छोड़कर जाया न जाएगा।
0: अगर तुम्हारा इनकार है तो मेरा भी इस दुनिया में जीना बेकार है। खुशी मेरी, मेरी राहत फकत तेरी नहीं तक थी, समझ लेना कि मेरी जिंदगी भी बस यहीं तक थी, सिवाय मौत के अब गम का चारा कार नहीं, बस ये गुलशन में हस्ती है जब पार नहीं।
1: ठहरो ठहरो प्यारे ठहरो, ये खंजर रोको, मुझे सोचने दो।
0: बस हाँ या नहीं, एक लफ्ज,
1: थोड़ी देर गौर करने के लिए, थोड़ी देर,
0: एक मिनट नहीं।
1: मनुष्या मनुष्या,
0: बस प्यारे राही, कहो कि मुझे मंजूर है।
1: ले चल खूबसूरत जादूगर, ले चल, राहील इस दिल से मजबूर है, तेरी हूँ तेरे साथ हूँ, देती हूँ जबा में अब साईं के मानिंद, जहाँ तू है वहाँ मैं।
0: अब बाप को खबर होने से पहले यहाँ से निकल चलो, जैसे ये जिस्म रूह इसी तरह साथ दो। लो आओ अब चलो, मेरे हाथों में हाथ दो।
2: ठहरो, कहाँ जाते हो, कहाँ भाग कर मुंह छुपाना चाहते हो, निकल चलने की ये हसरत बड़ी मुश्किल से निकलेगी, कहीं जा तोड़ देगी बद्दुआ जो दिल से निकलेगी, तुम्हारी आरजू दुनिया से खाली हाथ जाएगी, जहाँ जाओगे मेरी बद्दुआ भी साथ जाएगी।
1: रहम रहम, अच्छे अब्बा हम गुनाहगारों पर रहम।
2: रहम तो जैसे ना फरमान ना हंजार पर, रहम ऐसे पर करदार पर, रोमन कौम के शरीर कुत्ते

0: खुदा से गण न गया तू जमीन में, क्या बेवफाई जुर्म न थी तेरे दीन में, वो बात की न थी जो गुमानो यकीन में, इस साफ हुए पाला था इस आदमी में, क्या जानता था मैं कि काफर से पैर है, आबे बका मैं समझा था जिसको वो जहर है।
1: बुजुर्ग अजरा, बेशक मैंने कसूर किया और जरूर किया, मगर मेरी दानिश्ता खता न थी, बल्कि सूरत और इस दिल ने मुझे मजबूर किया। बढ़ो आगे, छुरी लो और सीना चाक कर डालो, खता इस दिल की है, इस दिल को फूको खाक कर डालो।
2: नहीं प्यारे अब्बा नहीं, इस जिंदगी की यूं ही किस तरह शाम हो, फेरो छुरी गले पे ये किस्सा तमाम हो, इसकी ना कुछ खता है ना दिल का कसूर है, मैं इसको चाहती हूँ ये मेरा कसूर है।
0: बदबخت लड़की, गैर कौम और गैर मजहब की चाह बुरी होती है।
2: सच है, लेकिन दिल की लगी बुरी होती है।
0: अफसोस, मैंने क्या सोच रखा था और यहाँ क्या रूप आकार है, तकदीर के आगे तकदीर का चलना दुश्वार है, मुझको है ख्याल और इन्हें मद्देनजर और अरमान तबीयत में इधर और उधर और।
2: प्यारे अब्बा, बेशक हम दोनों मोहब्बत करने के मुजरिम हैं, मगर अब तक हमारा जुर्म गुनाहों से पाक साफ है, इसलिए हमसे नफरत करना इंसाफ के खिलाफ है।
1: है पाक गुनाहों से हमारी ये खता भी, गारत हो अगर हमको बदी ने हो छुआ भी, हम चश्मे उल्फत में हैं, मानिंद कमल की जो पानी के अंदर भी है, पानी से जुदा भी।
0: अच्छा अच्छा, तुम मोहब्बत करने के सिवाय और हर तरह बेकसूर हो, चांद की तरह इस जमीन की बुराइयों से दूर हो।
1: हाँ बुजुर्ग अजरा, ऐसा ही है, परवाज की ताकत थी मगर पर नहीं निकले, अखलाक के कानून से बाहर नहीं निकले, ये कल्ब जिगर पाक हैं, ये दीदा उत्तर पाक, अल्लाह है शाहिद के है दिल पाक नजर पाक।
0: बता मनुष्य, राहिल में कौन सी खूबी नजर आई जो तुम इसके कदरदान हो।
1: सूरत, और सूरज से ज्यादा इसकी सीरत।
0: तो क्या तुम इसको चाहोगे?
1: अपनी जान की तरह।
0: इसको अजीज रखोगे?
1: अपनी इज्जत और शान की तरह।
0: इसकी हिफाजत करोगे?
1: अपने दीन और ईमान की तरह।
0: अच्छा अच्छा, तो मैं अपने पिछले अल्फाज वापस लेता हूँ और खुशी से इसका हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूँ। बहो और दो जानों हो।
1: क्या आप मुझसे कोई मजीद इकरार कराना चाहते हैं?
0: हाँ, एक रोमन की बगैर मजहब बदले एक यहूदी से कभी शादी नहीं हो सकती।
1: तो क्या मोहब्बत करने का जुर्माना मुझे मजहब से अदा करना हो?
0: हाँ।
2: प्यारी मार्कस, सोच में क्यों पड़ गए, आखिर हो कोई बात भी? हाँ कहो, मिल जाए ताकि दिल की सूरत हाथ भी।
1: बोल जा, किसको चाहूं किसको छोड़ूं, किस गजब में जान है, एक तरफ ये हूर है और एक तरफ ईमान है।
0: हाँ हाँ, जवाब दो, क्या ख्याल है?
1: मैं राहिल को छोड़ सकता हूँ मगर मजहब छोड़ना महाल है।
0: तो फिर नहीं?
1: कभी नहीं।
0: इनकार?
1: लाचार?
0: दूरी?
1: मजबूरी। सारी दुनिया से ज्यादा ये शकर न मुझको और इससे भी ज्यादा मेरा मजहब मुझको, ऐसी शह सहल से इंसान नहीं दे सकता, जान दे सकता है ईमान नहीं दे सकता।
0: ओ रोमन कुत्ते, तो तू हमारे घर में गुनाहों बदबू फैलाने आया था, रसाई की पैदा घर में मेरे अजीज हमदर्द यार बनकर, मगर ये ठाने हुए तब दिन में बाग उजाड़े बाहर बनकर। अरे दगाओ से दगा, भरोसा किया था जिसने मुदाम तुझ पर, जमीन से नफरी पलक से लानत पड़ेगी हर सुबह शाम तुझ पर।
2: प्यारे मेरे प्यारे, क्या हुआ ये और तुम्हें क्या हो गया? बावफा दिल आज क्यों बेदर्द ऐसा हो गया?
1: और राहिल राहिल, मेरे चारों तरफ तारीकी छा गई। मैं जाता
0: ठहरो, ठहर जाओ और ये सुनकर जाओ, खुदाई अभी कर लेगा बंदा, ये दुख दिया तूने दिल जले को, इसी के हाथों में सौंपता हूँ मैं अपने तेरे मामले को।

जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों के हाथ ऐसे दस्तावेजात लगे हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने नई फौजी पॉलिसी का हुक्म दिया है जो मौसमी सरमा से पहले शहरी मकामात पर मुमकिन हमले किए जाने का अहाता करती है। यमन ने सना और सादा में हौसियों के कंट्रोल वाले इलाकों पर हमले किए जाने की तस्दीक की है। यह कार्रवाई उस दावे के बाद की गई है कि हौसियों ने रियाज में आरामको की तंसीबात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। दोनों तरफ से हमलों के इस वाकये के बाद तनाजे में मजीद शिद्दत पैदा हो गई जहां दोनों फरीक एक दूसरे के खिलाफ फौजी कार्रवाई के दावे कर रहे हैं। यमन की मुसल्ला फौज के मीडिया सेंटर के बयान के मुताबिक फौज हौसियों के जेरे कंट्रोल इलाकों पर हमले कर रही थी। यह बयान हौसी ग्रुप के इस दावे के बाद सामने आया कि उसने सऊदी दारुल हुकूमत में वाके आरामको की तंसीबात को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया है। हौसी के फौज के तर्जुमान ने कहा कि यह हमला सना और उसके जेरे कंट्रोल दिगर इलाकों पर सऊदी अरब के हमलों के बाद किया गया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमेरिका में बड़ी तादाद में भारतीय निजाद अमरीकी शहरी वर्जीनिया के ग्रेवली प्वाइंट पार्क में भारतीय सफारतखाने के जेर एहतमाम मुनदा विकसित भारत यूनिटी रन में जमा हुए। इस तकरीब में दौड़, योग और ध्यान को शामिल किया गया जबकि सेहतमंदी और कम्युनिटी की शिरकत का पैगाम दिया गया। वाशिंगटन के करीब और दरियाए पोटोमैक के नजदीक मुनाकिद होने वाली इस तकरीब में भारतीय तारकिन वतन और दीगर अफराद ने शिरकत की। यह प्रोग्राम सेहतमंदी और इत्तेहाद को फरोग देने वाली एक पहल का हिस्सा था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट का आगाज किया था जिसका मकसद एक कौमी मुहिम के जरिए भारतीय शहरियों को रोजमर्रा जिंदगी में जिस्मानी सरगर्मियों और खेलों को शामिल करने की तरगीब देना है। इंडोनेशिया के सुम्बावा खित्ते में आज सुबह सवेरे 5.7 शिद्दत का जलजला आया। मुल्क के महकमे मौसमियात के मुताबिक जलजला 10 किलोमीटर की गहराई में आया। जलजले से किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन अगले साल 7 से 9 जनवरी तक मगरबी बंगाल में कोलकाता में मुनाकिद किया जाएगा। कन्वेंशन वजारत खारजा और मगरबी बंगाल सरकार के इश्तराक से मुनाकिद किया जाएगा। इसका इफ्तिताह वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे जबकि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इख्तितामी इजलास की सदारत करेंगी और प्रवासी भारतीय सम्मान एजाजात तकसीम करेंगी। वजारत खारजा के मुताबिक प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी को खराज अकीदत के तौर पर मनाया जाता है जो 9 जनवरी 1915 को जनूबी अफ्रीका से भारत वापस आए थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मुख्तलिफ वजारतों से मुतालिक कई पार्लियामानी कमेटियों के अजसरेनों तश्कील की है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट भर्तृहरी महताब को खजाना की कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया जिसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 अरकान शामिल हैं। जनाब बिरला ने कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर को उमर खारजा की कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया है। इस कमेटी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 अरकान शामिल हैं। रैली की कमेटी की सरबराह बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट सुधीर गुप्ता करेंगे। जनाब बिरला ने लोकसभा की रुकन डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को केमिकल्स और खादों से मुतालिक कमेटी का चेयरपर्सन मुकर्रर किया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आज इक्का दुक्का मकामात पर शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे के मुताबिक मराठवाड़ा और विदर्भ के बकिया हिस्सों, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और शुमाली अंदरूनी कर्नाटक के कुछ हिस्सों में जनूबी मगरबी मानसून की शिद्दत कमी आने के बाईस मौसमी हालात साजगार रहेंगे। आईसी नगोया में एशियन गेम्स 2026 आज इख्तिताम पसीर हो रहा है। इस तरह दो हफ्ते से ज्यादा अरसे तक जारी खेलकूद का यह शानदार मुकाबला खत्म हो जाएगा। एशियाई खेलों की अख्तितामी तकरीब जापान के नगोया सिटी मिजोहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में मुनक्किद होगी। इसी मकाम पर इफ्तिताही तकरीब भी मुनक्किद की गई थी। इख्तितामी तकरीब भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगी। इस साल एशियाई खेलों में भारत ने कुल 85 तमगे जीतकर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और वह तमगों की फहरिस्त में चौथे मकाम पर रहा।
मर्दों के क्रिकेट में भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3-1 रोजा बैन

0: मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली है। भारत ने सीरीज के पहले दो मैचों में जीत हासिल की, जबकि कल रात न्यू चंडीगढ़ के मुल्लानपुर में तीसरे और आखिरी एक रोजा बैन अलाकामी मैच में उसे वेस्टइंडीज के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ मच्छर को इसराइल, भारत और पूरी दुनिया का हीरो करार दिया। उन्होंने कैप्टन स्मिथ मच्छर और वजीर आजम नरेन्द्र मोदी को इसराइल के यौम आजादी की तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया। भारत ने पाकिस्तान के एलची को तलब करके पाकिस्तान से मुसलसल होने वाले गैर कानूनी सरहद पार दरअंदाजी में एयरहद पर सख्त एहतजाज दर्ज कराया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन अगले साल 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में मुनक्किद होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशा जारी है मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। मिले सुर मेरा तुम्हारा, इस प्रोग्राम में सुनिए फिल्मी दो गाने। आगाज बॉबी फिल्म के नगमे से, आवाजें शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की। नगमा निगार आनंद बख्शी, मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
2: मुझे कुछ कहना है,
3: मुझे भी कुछ कहना है,
2: मुझे कुछ कहना है,
3: मुझे भी कुछ कहना है।
2: पहले तुम,
3: पहले तुम,
2: पहले तुम,
3: पहले तुम,
2: पहले तुम,
3: तुम,
2: तुम,
3: तुम,
2: तुम,
3: तुम,
2: तुम,
3: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
2: अच्छा मैं कहती हूँ

डायनासोर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम की अगली पेशकश है रफू चक्कर फिल्म का नगमा शैलेंद्र सिंह और कंचन का गाया हुआ। नगमा यार गुलशन बावरा मौसीकी तरतीब दी कल्याण जी आनंद जी ने।

यह है स्वाग फिल्म का नगमा, शैलेंद्र सिंह, मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ। नगमा निगार आनंद बख्शी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कुमार अकबर एंथनी फिल्म का नाफा सुनिए, शैलेंद्र सिंह, किशोर कुमार और महेंद्र कपूर का गाया हुआ। मौसीकी तरतीब दी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

सागर फिल्म का ये दुकान आप सुन रहे थे आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। मेरा सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। अगली पेशकश हम आपके हैं कौन फिल्म का नगमा। शैलेंद्र सिंह, उदित नारायण, लता मंगेशकर, एसपी बालासुब्रमण्यम का गाया हुआ। नगमा निगार रविन्द्र रावल, मौसीकी राम लक्ष्मण की।

0: मेरे सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। सामिन, ये प्रोग्राम अभी जारी है। आइए पहले सुनते हैं तारीख साज प्रोग्राम। मौजू है राबिया बसरी।
1: राबिया बसरी आलम इस्लाम की एक मारूफ सूफी शख्सियत थी। उनका पूरा नाम राबिया बिनत इस्माइल था, मगर वो राबिया बसरी के नाम से मशहूर हुई। वो बसरा इराक में 718 ईस्वी में पैदा हुई और 801 ईस्वी में उनकी वफात हुई। राबिया बसरी एक जाहिदा और आबिदा खातून थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की राह में लगा दी। वो अक्सर दिन में रोजा रखती थी और रात में लंबी लंबी नमाजें अदा करती थी। वो हमातम खुदा की याद में मसरूफ रहती थी, हत्ता के उन्होंने इसी सबब निकाह भी नहीं किया। अगरचे कई हम असर बुजुर्ग शख्सियात मसलन हसन बसरी वगैरह ने भी उन तक शादी का पैगाम भेजा, जिसको उन्होंने रद्द कर दिया। राबिया बसरी इब्तदाई दौर की सूफिया में से एक हैं। उनकी जिंदगी बेशुमार और नाकाबिले फरामोश वाकयात से भरी हुई है। उनकी जिंदगी से जुड़े हुए रूहानी करामात के वाकयात भी बहुत ज्यादा मिलते हैं, जिनमें कुछ खुद साख्ता भी हैं। राबिया बसरी से मुतल्लिक मालूमात ज्यादातर शेख फरीदुद्दीन अत्तार की तरफ से बयान किए जाते हैं और उन्हें मुस्तनद भी माना जाता है। अरबी, फारसी और उर्दू जुबानों में उनके हालात पर मुतअद्दिद किताबें तहरीर की गई हैं। यहाँ उनकी जिंदगी की बस एक झलक पेश की जा रही है। राबिया बसरी के वालिद का नाम शेख इस्माइल था। वो एक मुत्तकी व परहेजगार इंसान थे। वो अपने वालदेन की चौथी बेटी थीं, इसलिए उनका नाम राबिया रखा गया। उनके वालदेन की जिंदगी नहायत ही गुर्बत में गुजरी, फिर भी उन्होंने सब्र और शुक्र के साथ अपनी जिंदगी गुजारी। यही चीज राबिया बसरी के अंदर भी आई और ता जिंदगी वो सब्र और शुक्र की पैकर बनी रही। वालदेन की वफात के बाद बसरा में कहत आने के सबब वो अपने घर वालों से बिछड़ गईं। रिवायात में आता है कि एक बार वो काफिले के साथ सफर कर रही थी कि रास्ते में डाकुओं ने उनके काफिले पर हमला कर दिया, फिर उनको अपनी तहवील में लेकर बाजार में बेच दिया। इस तरह वो एक गुलाम की तरह रहने लगी। राबिया बसरी का मालिक उन पर बड़ा जुल्म करता था, मगर वो अपने मालिक का हर काम नहायत सब्र और शुक्र के साथ करती थी। उसी के साथ वो नमाज और रोजा भी पाबंदी से अदा करती थी। एक शब की बात है, उनका मालिक इत्तफाकन बेदार हुआ तो देखा राबिया बसरी सजदे में है और अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कह रही हैं, ऐ अल्लाह, तू मेरी मजबूरियों से खूब वाकिफ है। घर का काम काज मुझे तेरी तरफ आने से रोकता है। तू मुझे अपनी इबादत के लिए पुकारता है, मगर मैं जब तक तेरी इबादत करने के लिए हाजिर होती हूँ नमाजों का वक्त गुजर जाता है। इसलिए मेरी माजरत कबूल फरमा और मेरे गुनाहों को बख्श दे। अपनी कनीज का ये कलाम और इबादत देखकर उनका मालिक खौफ खुदा से लरज गया और उसने फौरन उनको आजाद कर दिया। राबिया बसरी ने गुलामी से निजात मिलने के बाद कूफा जाकर इल्म दीन हासिल किया। अपनी जहानत के सबब उन्होंने कम वक्त में कुरान और हदीस और फिका में महारत हासिल कर ली और वाज देने लगी। उनका वाज सुनने और इस्तफादा करने के लिए उस जमाने के बड़े बड़े बुजुर्ग हजरात मसलन सुफियान सूरी वगैरह आते थे। राबिया बसरी से दीनी और रूहानी फैज हासिल करने के लिए बराबर लोग उनकी क़यामगाह पर तशरीफ लाते थे। वह अपने इलाके में आम लोगों के लिए रुश्द व हिदायत का जरिया बनी हुई थी। उन्होंने अपने कौल और फेल से लोगों को मुतासिर किया और लोग दीन की राह पर चलने लगे। एक बार सुफियान सूरी राबिया बसरी से मिलने आए और उन्होंने हाथ उठाकर दुनिया की भलाई के लिए दुआ मांगी। इस पर वो ज़ारो क़तार रोने लगी। जब उनसे वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा, हकीकी खुशी और भलाई तो दुनिया से किनारा कशी से हासिल होती है और आप इसी दुनिया में भलाई चाहते हैं। अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में उन्होंने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली और खुद को दुनियावी जिंदगी से पूरी तरह अलग कर लिया।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशात का सिलसिला जारी है। दिन का एक बजा चाहता है, अब आलमी खबरें नशे की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप कलीम अहमद से आलमी खबरें सुनिए। इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ मच्छर को इसराइल, भारत और पूरी दुनिया का हीरो करार दिया। उन्होंने कैप्टन स्मिथ मच्छर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इसराइल के योम आजादी की तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया। भारत ने पाकिस्तान के एलचे को तलब करके पाकिस्तान से मुसलसल होने वाली गैर कानूनी सरहद पार दरअंदाजी में एयानत पर सख्त एहतजाज दर्ज कराया। यमन ने सना और सादा में हौसियों के जेर कंट्रोल इलाकों पर हमलों की तस्दीक की है। हौसियों ने रियाज में अरामको की तनसीबात को निशाना बनाकर मिजाइल और ड्रोन हमले करने का दावा किया है। यूक्रेन के वजीर खारजा आंद्री सिबिहा ने कहा है कि यूक्रेन भारत की जानिब से पेश की गई जंगबंदी से मुतालिक तजवीज पर गौर करने के लिए तैयार है। एशियन गेम्स 2026 खेल आज जापान के नागोया में अख्तिताम पजीर हो रहे हैं। ट्रैप शूटर नीरू ढाढ़ा इख्तितामी तकरीब में भारत की परचमबरदार होंगी। और मर्दों के क्रिकेट में भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3-1 रोजा बैन अलाक्वामी मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली है। खबरें तफसील से। इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इसराइल के आइंदा योम आजादी की तकरीबात में तकरीबाती समारोशन करने के लिए मदऊ किया है। कैप्टन मच्छर से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान जनाब नेतन्याहू ने फजाई हमले को नाकाम बनाने में उनकी बहादुरी को सराहते हुए उन्हें भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का हीरो करार दिया। उन्होंने कैप्टन मच्छर की जल्द और मुकम्मल सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाएं पेश की और उनके अहले खाना के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जनाब नेतन्याहू ने कहा कि तकरीबात समारोशन करने का एजाज रवायती तौर पर इसराइली शहरियों के लिए मखसूस होता है, इसलिए कैप्टन मच्छर को यह दावतनामा उनकी बहादुरी और खिदमात का गैर मामूली और अहम एतराफ है। कैप्टन मच्छर इस वक्त अबूजबी में जेर इलाज हैं और सेहतियाबी के मरहले से गुजर रहे हैं। उन्होंने कॉकपिट में होने वाले हमले के दौरान गैर मामूली दिलेरी और हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए 174 मुसाफिरों की जानें बचाईं। वजारत खारजा ने पाकिस्तान हाई कमीशन के नाजिमुल उमूर को तलब किया और पाकिस्तान की जानिब से भारतीय सरहद में गैर कानूनी दरअंदाजी की मुसलसल एयानत करने के खिलाफ पाकिस्तान से सख्त एहतजाज दर्ज किया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में बैन अलाक्वामी सरहद पर जुमे के रोज पेश आने वाले एक वाकये के बारे में लगाए गए बेबुनियाद इल्जाम को भी अक्सर मुस्तरद किया। वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी फरीक को बताया गया कि 3 अफराद भारतीय इलाके में दाखिल हुए और BSF की जानिब से कई बार पाकिस्तान वापस जाने की वार्निंग दिए जाने के बावजूद वो सरहदी बाड़ की तरफ बढ़ते रहे। इन अफराद की जानिब से फौरी खतरा पैदा होने की सूरत में BSF को कार्रवाई करनी पड़ी। भारत के मुताबिक ये वाकया पाकिस्तान की जानिब से सरगर्म मुसल्लह मुनशियात के गिरोहों की जानिब से बार बार सरहद पार नकलो हरकत करने की कोशिश को जाहिर करता है। पाकिस्तान पर जोर दिया गया है कि वह सरहद पार दरअंदाजी, मुनशियात के स्मगलिंग की सरगर्मियों और पाकिस्तान की सरहदी मुहाफिज फोर्सेज की मिली भगत की तहकीकत करे और उसे रोकने की मुनासिब इकदाम करे। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन अगले साल 7 से 9 जनवरी तक मगरबी बंगाल में कोलकाता में मुनक्किद किया जाएगा। कन्वेंशन वजारत खारजा और मगरबी बंगाल सरकार के इश्तराक से मुनक्किद किया जाएगा। इसका इफ्तिताह वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे, जबकि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इख्तितामी इजलास की सदारत करेंगे और प्रवासी भारतीय सम्मान एजाजात तकसीम करेंगे। वजारत खारजा के मुताबिक प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी को खराज अकीदत के तौर पर मनाया जाता है, जो 9 जनवरी 1915 को जनूबी अफ्रीका से भारत वापस आए थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अजीम इनकलाब पसंद रहनुमा और मुजाहिद आजादी श्यामजी कृष्ण वर्मा के योम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपनी पूरी जिंदगी भारत की आजादी के लिए वक्फ कर दी थी। वजीर आजम ने यह भी कहा कि मुल्क के अवाम उनकी दिलेरी और मादरे वतन के वकार के तहफ्फुज़ के तहत उनके पुख्ता अज़्म को

हमेशा याद रखेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। यमन ने सना और सादा में हौसियों के कंट्रोल वाले इलाकों पर हमले किए जाने की तस्दीक की है। ये कार्रवाई उस दावे के बाद की गई कि हौसियों ने रियाज में अरामको की तंसीबात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। दोनों तरफ से हमलों के इस वाकये के बाद तनाजे में मजीद शिद्दत पैदा हो गई है, जहां दोनों फरीक एक दूसरे के खिलाफ फौजी कार्रवाई के दावे कर रहे हैं। यमन की मुसल्लह अफवाज के मीडिया सेंटर के बयान के मुताबिक फौज हौसियों के जेर कंट्रोल इलाकों पर हमले कर रही थी। यह बयान हौसी ग्रुप के इस दावे के बाद सामने आया कि उसने सऊदी दारुल हुकूमत में वाकये अरामको की तंसीबात को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के जरिए निशाना बनाया है। हौसी के फौज के तर्जुमान ने कहा कि यह हमला सना और उनके जेर कंट्रोल दीगर इलाकों पर सऊदी अरब के हमलों के बाद किया गया। यूक्रेन ने रूस के साथ मुमकिन जंगबंदी के लिए भारत की तजवीज को कीफ को मौसूल होने वाली चार तजावीज में सबसे अहम करार दिया है। यूक्रेन के वजीर खारजा अंद्री सिबिहा ने कहा कि यूक्रेन तवानाई के बुनियादी ढांचे और बुहरे असवद में जंगबंदी पर गौर करने के लिए तैयार है। उनका यह बयान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के एक दिन बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तनाजे के बाहमी तौर पर काबिल कबूल हल तक पहुंचने के लिए तामीरी नजरियात पेश किए हैं। वजीर खारजा सिबिहा ने कहा कि यूक्रेन को भारत, तुर्की, मिस्र और अमरीका की जानिब से जंगबंदी की तजावीज मौसूल हुई है। उन्होंने कहा कि कीफ जंगबंदी के मुख्तलिफ तरीकों पर गौर करने के लिए तैयार है। अमेरिका में बड़ी तादाद में भारतीय निजाद अमेरिकी शहरी वर्जीनिया के ग्रेवली पॉइंट पार्क में भारतीय सिफारतखाने के जरिए एहतमाम मुनक़िदा विकसित भारत यूनिटी रन में जमा हुए। इस तकरीब में दौड़, योग और ध्यान को शामिल किया गया, जबकि सेहतमंदी और कम्युनिटी की शिरकत का पैगाम दिया गया। वाशिंगटन के करीब और दरियाए पोटोमैक के नजदीक मुनक़िद होने वाली इस तकरीब में भारतीय तारिकीन वतन और दीगर अफराद ने शिरकत की। यह प्रोग्राम सेहतमंदी और इत्तेहाद को फरोग देने वाली एक पहल का हिस्सा था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट का आगाज किया था, जिसका मकसद एक कौमी मुहिम के जरिए भारतीय शहरियों को रोजमर्रा जिंदगी में जिस्मानी सरगर्मियों और खेलों को शामिल करने की तरगीब देना है। इंडोनेशिया के सोमबावा खित्ते में आज सुबह सवेरे 5.7 शिद्दत का जलजला आया। मुल्क के महकमे मौसमियात के मुताबिक जलजला 10 किलोमीटर की गहराई में आया। जलजले से किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। जापान में जारी एशियाई खेल आज इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। इस तरह दो हफ्ते से ज्यादा अरसे से जारी खेल मुकाबलों का सिलसिला खत्म हो जाएगा। भारत ने 20वें एशियाई खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। भारत मजमू तौर पर 85 तमगे जीतकर चौथे मुकाम पर रहा। इनमें सोने के 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगे शामिल हैं। इन खेलों की इख्तितामी तकरीब जापान के नागोया शहर में पानो मिजो स्टेडियम में होगी। ये तकरीब अब से कुछ देर बाद भारतीय वक्त के मुताबिक 2:30 बजे शुरू होगी। भारत के सरकर्दा निशानेबाज नीरू ढांडा इख्तितामी तकरीब में भारतीय दस्ते के परचमबरदार होंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में खवातीन के 53 किलोग्राम के फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने पर अंतिम पंघाल को मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी ने चांदी का तमगा हासिल करने पर भारतीय खवातीन की गोल्फ टीम को भी मुबारकबाद पेश की है, जो आदित्य अशोक, प्रवंसी सार्थ उर्स और दीक्षा डागर पर मुश्तमिल है। मर्दों के क्रिकेट में भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 एकरोजा बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली है। भारत ने सीरीज के पहले दो मैचों में जीत हासिल की, जबकि कल रात न्यू चंडीगढ़ के मुलानपुर में तीसरे और आखिरी एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच में उससे वेस्टइंडीज के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। खास खबरें एक बार फिर। इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ मच्छर को इसराइल, भारत और पूरी दुनिया का हीरो करार दिया। उन्होंने कैप्टन स्मिथ मच्छर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इसराइल के योम आजादी के तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया। भारत ने पाकिस्तान के एलचे को तलब करके पाकिस्तान से मुसलसल होने वाली गैर कानूनी सरहद पार दरअंदाजी में एयानत पर सख्त एहतजाज दर्ज कराया। यमन ने सना और सादा में हौसियों के जेर कंट्रोल

0: इलाकों पर हमलों की तस्दीक की है। यूक्रेन के वजीर खारजा अंद्री सिबिहा ने कहा कि यूक्रेन भारत की जानिब से पेश की गई जंगबंदी से मुतालिक तजवीज पर गौर करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही आलमी खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मेरा मेज 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। इसराइल के वजीर आजम बिन यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट इस्मत मच्छर को इसराइल, भारत और यूरोपीय दुनिया का हीरो करार दिया। उन्होंने कैप्टन इस्मत मच्छर और वजीर आजम नरेन्द्र मोदी को इसराइल के यौम आजादी की तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया। भारत ने पाकिस्तान के एलची को तलब करके पाकिस्तान से मुसलसल होने वाली गैरकानूनी सरहद पार दरअंदाजी में एयानत पर सख्त एहतजाज दर्ज कराया। यमन ने सना और सदा में होसियों के जेर कंट्रोल इलाकों पर हमलों की तस्दीक की है। होसियों ने रियाज के आरामकों की तनसीबात को निशाना बनाकर मिजाइल और ड्रोन हमले करने का दावा किया है। यूक्रेन के वजीर खारजा आंद्रेई साइबिया ने कहा है कि यूक्रेन में भारत की जानिब से पेश की गई जंगबंदी से मुतालिक तजवीज पर गौर करने के लिए तैयार

जीत ली है। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक दिन के 1:15 हुआ चाहते हैं। हमारी पहली मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। दिन में 3 आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे दूसरी मजलिस की नशरियात के साथ। उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।

साथियों, जगजीत सिंह की आवाज और कैफी आजमी के शब्दों ने इस गीत को ऐसी भावनात्मक गहराई दी कि ये फिल्म से बाहर निकलकर स्वतंत्र रूप से भी लोगों के दिलों में बस गया। तो आइए आनंद लेते हैं इस गीत का।

तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। जी हाँ, हमें पता है आप सभी आज ये कार्यक्रम सुनकर जो मुस्कुरा रहे हैं, जो मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आई है, खिलखिला रही है, वो हम जानते हैं, क्योंकि कार्यक्रम का नाम है एक ही फिल्म से और आज की फिल्म है अर्थ। अर्थ की एक बड़ी विशेषता इसका संगीत भी है। फिल्म के संगीत से जुड़ा नाम है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह। फिल्म में उनकी गजल नुमा शैली ने कहानी के भावनात्मक संसार को और गहरा किया है, जैसे कि झुकी झुकी सी नजर, कोई ये कैसे बताए। अभी आपने जो गीत सुना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो और तू नहीं तो जिंदगी में, जैसे गीत आज भी इस फिल्म की पहचान माने जाते हैं। खास बात ये है कि इन गीतों में केवल प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं है, इनमें अकेलापन है, सवाल है, अधूरेपन की कसक है और मन के भीतर चल रही बातचीत है। यही वजह है कि अर्थ का संगीत कहानी से अलग होकर भी कहानी का हिस्सा महसूस होता है।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो ये फटा है।
2: सुन, कदे फटे या पुराने नोट को
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा।
2: हाँ,
1: जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: साथियों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल और इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है एक ही फिल्म से, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं फिल्म अर्थ की, जो रिलीज हुई थी 1982 में और आज है आपकी दोस्त तृप्ति चौरी आपके साथ। तो बात कर रहे थे हम फिल्म की कहानी के बारे में, फिल्म के किरदारों के बारे में। तो आइए अब बात करते हैं फिल्म के तीन केंद्रीय किरदारों की। पूजा जिसका किरदार निभाया शमाना आजमी ने, इंदर की भूमिका में थे कुलभूषण खरबंदा और कविता की भूमिका निभाई स्मिता पाटिल ने। तीनों पात्रों की अपनी अपनी कमजोरियां हैं, अपनी अपनी इच्छाएं हैं और अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। फिल्म इन पात्रों को केवल सही और गलत के खांचे में नहीं रखती, यही इसकी कहानी को अधिक मानवीय और बनाता है। शबाना आजमी के लिए अर्थ उनके करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक बनी। फिल्म में पूजा के भावनात्मक सफर को उन्होंने बहुत संयम के साथ निभाया। उनके अभिनय की खासियत है कि कई बार बिना बोले भी वो बहुत कुछ कह दिया जाता है। एक नजर, एक ठहराव, एक चुप्पी और दर्शक समझ जाता है कि किरदार के भीतर क्या चल रहा है। अर्थ के लिए शबाना आजमी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान मिला। आधिकारिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रिकॉर्ड में अर्थ के लिए उनकी जीत दर्ज है और दिलचस्प बात यह है कि यह उनके लगातार तीन राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रृंखला का पहला पड़ाव था। इसके बाद खंडर और पार के लिए भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान मिला। दूसरी ओर स्मिता पाटिल का किरदार कविता का था। कविता एक अभिनेत्री है, लेकिन उसके चमकदार पेशेवर जीवन के पीछे उसका अपना अकेला

अपन और असुरक्षा है, यही इस फिल्म की खूबसूरती है। फिल्म हमें ये समझने का अवसर देती है कि सामने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी मजबूत दिखाई दे, उसके भीतर भी अपनी लड़ाइयाँ हो सकती है। स्मिता पाटिल ने कविता के भीतर की बेचैनी और असुरक्षा को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। और फिर आते हैं राज, जिसने निभाया राज किरण ने। राज किरण का किरदार कहानी में एक अलग भाव लाता है। वो पूजा के जीवन में उस समय दिखाई देता है जब उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसे केवल सहारा ही ना दे, बल्कि उसे ये याद भी दिलाए कि तुम अपनी जिंदगी खुद भी बना सकती हो। लेकिन अर्थ का सबसे महत्वपूर्ण फैसला यही है कि पूजा को अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुनना है। एक तरफ प्रेम, दूसरी तरफ विवाह, एक तरफ अकेलापन, दूसरी तरफ आत्मनिर्भरता, और इनके बीच खड़ी एक स्त्री जो आखिरकार खुद से पूछती है, मेरी जिंदगी का अर्थ क्या है।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ, 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ली?
1: ना, पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और?
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया,
1: जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

साथियों, इतने मधुर से गीत और संगीत दिए हैं हमारी आज की फिल्म अर्थ ने कि एक भी गीत छोड़ने का मन नहीं कर रहा और एक भी गीत आप सुने तो उसमें डूबे बिना आप रह नहीं सकते। और अर्थ फिल्म ही ऐसी है। अर्थ का मतलब है जीवन का मतलब, अपने होने की वजह, अपनी पसंद, अपना आत्मसम्मान और शायद सबसे महत्वपूर्ण है अपने फैसले खुद लेने की क्षमता। और देखिए ना, हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर भी आपने अपने संदेशों के साथ कुछ ऐसे ही संदेश भेजे हैं और हम जल्दी से नाम पढ़ देते हैं। राजकुमार डूडी, हीरामणि वर्मा, हरजिंदर शिंदा, कमलकांत गुप्ता, पूनम गंगनेजा, सुधाकर जाधव, डोमेंद्र नेताम और सुदर्शन शाह। इसी के साथ हमारे पास आए हैं जुमेल, इशाक मोहम्मद, सदानंद मांडूरकर, स्वर्ण सिंह, पीएस नावकर, संजय ढींगिया, सुदर्शन मुखी, राधेश्याम देवांगन और धर्मेंद्र छिपा, दिग्दर्शन गौड़, भूषण खेरा। कुछ श्रोताओं ने हमारे दोबारा मैसेज भेजे हैं जिसके कारण हम अन्य साथियों के संदेश नहीं ले पा रहे हैं। कमलकांत गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरजिंदर छिंदा, तो ये सभी साथी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। आइए चलते चलते सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

इस मीटिंग का पुनर्गठन किया था नए चेयरपर्सन नियुक्त किए ने। भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन के चार स्टेट अफेयर्स में तलब करके पाकिस्तान को गैर कानूनी घुसपैठ की सख्त विरोध जताया है। आईटीआई इस आधुनिक उद्योग की जरूरत अनुसार तैयार करनी शुरू की गई पीएम सेतु योजना ने अज एक साल पूरा कर लिया है। 2026 खेडां खत्म हो रही ने। भारत को 85 कम बजट के चौथे स्थान पर रहा है। इसके खबरों का बुलेटिन खत्म होगा।

0: महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के कुछ और हिस्सों, नीज शुमाली कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों से जुनूब मगरबी मानसून के मजीद पीछे हटने का इम्कान है। यमन की फोर्सेज ने दावा किया है कि यमन में अहम महाजों पर हौसी लड़ाकों को काफी नुकसान पहुंचा है। उधर सऊदी अरब ने हौसियों के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि सऊदी शहर रियाज को मिसाइल और ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। मीडिया इतलात के मुताबिक यमन की बैन अलाकवामी सतह पर तस्लीम शुदा सरकार की मुसल्ह अफवाज ने दो महाजों पर हौसी कुनक के खिलाफ 97 कार्रवाइयां अंजाम दी हैं। इतलात में कहा गया है कि इस कार्रवाई में 260 हौसी लड़ाकों को हलाक किया गया है और 44 फौजी मोटर गाड़ियां और ट्रांसपोर्ट नीज सप्लाई साजो सामान तहस नहस हो गया। मालूम हुआ है कि फोर्सेज ने सना और सादा में हौसी ठिकानों को निशाना बनाया। टकराव वाले अहम महाजों पर लड़ाई में तेजी आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में ख्वातीन के 53 किलोग्राम के फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने पर अंतिम पंघाल को मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी ने चांदी का तमगा हासिल करने पर भारतीय ख्वातीन की गोल्फ टीम को भी मुबारकबाद पेश की है, जो आदिति अशोक, परवी सार्थूर्स और दीक्षा डागर पर मुश्तमिल है। जापान में जारी एशियाई खेल आज इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। इस तरह दो हफ्ते से ज्यादा अरसे से जारी खेल मुकाबलों का सिलसिला खत्म हो जाएगा। भारत ने 20वें एशियाई खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। भारत मजमूई तौर पर 85 तमगे जीतकर चौथे मुकाम पर रहा। इनमें सोने के 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगे शामिल हैं। इन खेलों की इख्तितामी तकरीब जापान के नागोया शहर में पलोमो मिजू स्टेडियम में होगी। ये तकरीब अब से कुछ देर बाद भारतीय वक्त के मुताबिक 2:30 बजे शुरू होगी। भारत के सरकर्दा निशानेबाज नीरू ढांडा इख्तितामी तकरीब में भारतीय दस्ते की परचमबरदार होंगी। भारतीय मुक्केबाजों का दस्ता एशियाई खेलों में अपनी शानदार मुहिम के बाद नई दिल्ली वापस आ गया है। अपनी आमद के बाद नामानिगारों से बात करते हुए मुक्केबाज लोरीना बोरगोहेन ने, जिन्होंने अपनी सालगिरह के दिन खवातीन के 75 किलोग्राम के जुमरे में सोने का तमगा जीता था, इस बात को उजागर किया कि उनकी इस जीत ने इस संघ मील को और भी खास बना दिया। उन्होंने कहा कि एशियाई खेलों में दूसरी बार मुकाबला करने से उन्हें अपने खेल को बेहतर बनाते हुए सोने का तमगा जीतने का मौका मिला, जबकि सबका खेलों में उन्होंने चांदी का तमगा हासिल किया था।
1: हर एथलीट का सपना रहता है कि बड़े कंपटीशन में जाए, वहाँ गोल्ड मेडल लाए। एशियन गेम्स इतना बड़ा कंपटीशन है और ऊपर से मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था क्योंकि मेरा बर्थडे था, और इसीलिए भी स्पेशल है कि मेरा सेकंड एशियन गेम्स है और लास्ट टाइम मेरा सिल्वर था, तो मेरा माइंड में पूरा था कि मुझे इस बार कलर चेंज करना था, तो इस बार से लिए बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल।
0: भारतीय फिजाइया ने आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दूसरी सेखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन का एहतमाम किया। इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, ग्वालियर, बेंगलुरु, गुवाहाटी और जोधपुर शामिल हैं। भारतीय फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय फिजाइया की जनूबी फिजाई कमान की जानिब से आज तिरुवनंतपुरम में वाके लूलू मॉल में सेखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन SIM 2026 का एहतमाम किया गया। यह तंदुरुस्ती और लोगों से राबते के सिलसिले में भारतीय फिजाइया की एक अहम पहल है। यह प्रोग्राम भारतीय फिजाइया के वाहिद परमवीर चक्र याफ्ता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की अजम कुर्बानी और बहादुरी को याद करने और हुब्बुल वतनी, नज्म व जब्त, जिस्मानी तंदुरुस्ती, सेहतमंद तर्ज जिंदगी और मुल्क के तई खिदमत के जज्बे को फरोग देने के लिए मुनक्किद किया गया। खास खबरें एक बार फिर। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि मुल्क के इदारों, एमएसएमईज और स्टार्टअप्स की कुव्वत पर विकसित भारत का सफर आगे बढ़ेगा। मगरबी बंगाल में नंदीग्राम और रेजी नगर असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव की इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। सनअती तरबियती इदारों की कायापलट के लिए शुरू की गई पीएम सेतु स्कीम को एक साल मुकम्मल हो गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं तेज बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई की है। यमन के हुकाम ने सना और सादा में हौसियों के कब्जे वाले इलाकों पर हमलों की तस्दीक की है और 2026 के एशियाई खेल आज जापान के नागोया में इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। भारत सोने के 21 तमगों समेत मजमूई तौर पर 85 तमगे जीतकर चौथे मुकाम पर रहा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the Midday News.

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा नवाचार की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 58वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों के दौर में भी प्रवेश कर रहा है।
1: So the significance of this great journey becomes even more apparent when we look at India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy and I am sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
0: श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कंपनी सुशासन को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय रहा है और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए गए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। पीएम सेतु योजना का आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना के अंतर्गत उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावना मजबूत हुई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की यह योजना पिछले वर्ष आज ही के दिन शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य शासन में उद्योग की भागीदारी मजबूत करना, प्रशिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाना और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस योजना का उद्देश्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई को आधुनिक और उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है। योजना के तहत आईटीआई में प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल देने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम सेतु योजना के लिए कुल 60,000 करोड़ रूपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार 30,000 करोड़, राज्य सरकार 20,000 करोड़ और उद्योग जगत 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देगा। देश में सरकारी और निजी आईटीआई की संख्या 2014 में 9,000 से अधिक थी, जो 2026 में बढ़कर 13,000 से ज्यादा हो गई है। पीएम सेतु योजना के तहत अब तक 850 आईटीआई को चुना गया है। इनमें 172 हब आईटीआई और 678 स्पोक आईटीआई शामिल है। योजना के तहत 200 आईटीआई क्लस्टर में इसे देश भर में लागू करने की मंजूरी दी गई है। 14 आईटीआई क्लस्टर के लिए 3,446 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश योजना को मंजूरी मिल चुकी है। आनंद और ऋषु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इसी भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज की विशेष श्रृंखला में असम में गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण की जानकारी दी जा रही है। इस हवाई अड्डे के कारण अब पूर्वोत्तर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार बन गया है।
3: असम का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक क्षेत्रीय ट्रांजिट केंद्र से विकसित होकर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित हो गया है, जो पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को नई गति दे रहा है। प्रकृति से प्रेरित नए एकीकृत टर्मिनल 2 पर केंद्रित इस विशाल विस्तार परियोजना को

0: केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को इस अत्याधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया था और 22 फरवरी 2026 को इसका वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ। नई सुविधा के साथ हवाई अड्डे की वार्षिक यात्री क्षमता बढ़कर 1,30,00,000 से अधिक हो गई है। टर्मिनल के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस प्रकार का बुनियादी ढांचा और अन्य विकास परियोजनाएं युवाओं के लिए एक नए अवसर सृजित करती है।
1: इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का बहुत बड़ा संदेश, भारत की विकास यात्रा की पहचान बढ़ रहा है। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलता, निवेशकों को कनेक्टिविटी का भरोसा मिलता, लोकल प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने का रास्ता खुलता और सबसे बड़ा भरोसा उस युवा को मिलता है जिसके लिए नए अवसर पैदा होते हैं। और इसलिए आज हम असम को असीम संभावनाओं की इस उड़ान पर आगे बढ़ते देख रहे हैं।
0: दक्षिण पूर्व एशिया के रणनीतिक संपर्क बिंदु पर स्थित यह उन्नत हवाई अड्डा बैंकॉक, पारो और सिंगापुर जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सुगम हवाई संपर्क प्रदान कर रहा है, जिससे असम भारत के पूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में अपनी भूमिका को और सशक्त बना रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भेजी जा रही हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमरीका के हिंद प्रशांत कमान के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमरीका के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने आज राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क में दो नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों को छोड़ा। श्री यादव ने कहा कि यह उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों की एक दशक की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पक्षियों को जंगल में छोड़ने से इनके संरक्षण में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कल से गुजरात में 2 दिन का चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इसमें देश में राजमार्ग के विकास और परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। शिविर में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी तथा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी पर चुप्पी साधने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में कहा कि पूरा राष्ट्र कैप्टन स्मिथ के असाधारण साहस से गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि कैप्टन स्मिथ ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। डॉ त्रिवेदी ने कहा कि जहां कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की भारत और विश्व में प्रशंसा हो रही है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व इस उपलब्धि पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपना वोट बैंक खोने के डर से मौन है। दिल्ली पुलिस ने 3 महिला पत्रकारों के पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। ये घटनाएं कल नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान हुई। ये पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: ये आकाशवाणी है। यमन की सेना ने देश के कुछ प्रमुख मोर्चों पर हूती लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस बीच सऊदी अरब ने हूतियों के रियाद में मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा खारिज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की है।
4: हूती विद्रोहियों के बियाहत पर हमले के दावे को सऊदी अरब ने खारिज कर दिया है। सऊदी पक्ष ने कहा है कि यमन में मिली हार के चलते हूती एक

0: इजरायली विक्ट्री का दावा कर रहे हैं। इससे पहले हूतियों ने दावा किया था कि उन्होंने रियाद के पास अरामको की एक फैसिलिटी को निशाना बनाया और उनके मिसाइल और ड्रोन हमले टारगेट पर भी लगे। वहीं यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ने कहा है कि उसकी आर्म फोर्सेस ने तैज और तूर अलबहा में हूती ठिकानों के खिलाफ 97 ऑपरेशन किए। इन ऑपरेशन में 260 हूती लड़ाकों को न्यूट्रलाइज करने और 44 मिलिट्री व्हीकल्स और सप्लाई एसेट्स को नष्ट करने का दावा किया गया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता ने कहा कि ताइज में हुए नुकसान के बीच हूती समूह अपनी जीत दिखाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह हूतियों की अपने नुकसान से ध्यान भटकाने की कोशिश है। अमरीकी तटरक्षक बल ने पुष्टि की है कि बरमूडा से बोस्टन जा रहे लापता चिकित्सा विमान का मलबा नेटकट तट के पास मिल गया है। इस विमान में कनाडा के 4 और बरमूडा के 2 नागरिक सवार थे जिनकी तलाश की जा रही थी। कनाडा के परिवहन मंत्री स्टीवन मैकिनॉन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। जापान के नागोया में एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। समापन समारोह कुछ ही देर में 2:30 बजे शुरू होगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि महिला निशानेबाज नीरू ढांडा भारत की ध्वजवाहक होंगी।
2: शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस सहित कुल 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी में भारतीय महिला और पुरुष टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई भी कर लिया है। कुश्ती में अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत की मुक्केबाजी टीम ने 3 स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रच दिया। गोल्फ में प्रणवी ओर्स एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर बनी। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत पदक हासिल किया। तीरंदाजी में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहली बार स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। जबकि कुमकुम मोहन व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बनी। तीरंदाजी में भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक जीते। समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाकर आजादी की भावना जगाई। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ क्षेत्रों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। वायुसेना ने आज कई शहरों में सैकड़ों भारतीय वायुसेना मैराथन आयोजित की। इनमें दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, ग्वालियर, बेंगलुरु, गुवाहाटी और जोधपुर शामिल हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने नई दिल्ली में दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर वाइस मार्शल शेखर यादव ने संवाददाताओं से कहा कि मैराथन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की स्मृति में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असाधारण साहस का प्रदर्शन किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का 1 वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मिनिमम वेव 366.3 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज़।

आठ से दस किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है दोपहर के 2:30 और ये हुए पूरे 18 सेकंड। स्वागत है आप सभी का, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए कार्यक्रम एक ही कलाकार। और आज इस सफर में आपके साथ मैं हूँ आपकी रेडियो हम सफर सोनाली। कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की, और पूछना है आपको कि हमारे आज के कलाकार कौन है। चलिए एक छोटी सी हिंट आपको जरूर देती हूँ। वो उनके दिल में शौक था और दिमाग में था अभिनय का जुनून, ठीक है। चेहरा भी हीरो बनने लायक था, इसलिए सोचा कि अभिनय की बाकायदा ट्रेनिंग लेकर वो पहले पर्दे पे उतरा जाए। लेकिन किस्मत ने पहले ब्रेक दिया गाने के क्षेत्र में और उनके पहले ही गीत ने तहलका मचा दिया। अरे, मैंने आपको बहुत ज्यादा हिंट नहीं दे दी क्या? चलिए कोई बात नहीं, फिर भी अब आप इस गाने को सुनिए और मुझे बताइए हमारे आज के कलाकार कौन है।

जी हाँ जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझी। आज की हमारे कलाकार हैं हमारी बर्थडे बॉय शैलेंद्र सिंह, और हम आपसे कोई भी पहेली पूछें और आप उसको हल ना कर लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप सभी ने हल कर ली है, लेकिन आपकी सारी बातों को हम शुमार करेंगे हमारे कार्यक्रम में। उसके पहले जरा सी बातें हमारे आज के कलाकार के बारे में, क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, दिल में उतर जाती हैं, और कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिनके साथ हमारी अपनी कोई पुरानी याद जुड़ जाती है। किसी को इनमें अपनी

पहली मोहब्बत की झिझक सुनाई देती है, किसी को दोस्ती की शरारत, किसी को जवानी के उन दिनों की खुशबू जब प्रेम का इजहार भी थोड़ा मासूम हुआ करता था। ऐसी ही एक आवाज थी शैलेंद्र सिंह की, है ना। और आज 4 अक्टूबर है और यह दिन हिंदी सिनेमा के उस गायक का जन्मदिन है जिसने बहुत कम समय में अपनी ऐसी पहचान बनाई कि उनकी आवाज एक दौर की पहचान बन गई। शैलेंद्र सिंह का जन्म आज के ही दिन 4 अक्टूबर 1952 को मुंबई में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उन्होंने हिल ग्रीन्ज हाई स्कूल से पढ़ाई की और सेंट जेवियर्स कॉलेज से स्नातक किया, लेकिन उनके मन में अभिनेता बनने का जो सपना था ना, वो इसी सपने को लेकर उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से बकायदा ट्रेनिंग ली। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे लिए जिंदगी वह रास्ता चुन लेती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। शैलेंद्र सिंह आए तो अभिनेता बनने थे और बन गए एक ऐसी आवाज जिसे हिंदी सिनेमा लंबे समय तक भूल नहीं पाया। हाँ, है ना। हमने अभी सुना बॉबी का गाना और बॉबी ने ही हमें दिया शैलेंद्र सिंह। फिर ऐसा हुआ कि शैलेंद्र सिंह ने एक साक्षात्कार में बताया था कि राज कपूर ने उनकी आवाज सुनी और उसमें कुछ ऐसा महसूस किया जो उन्हें पसंद आया, और उस समय के कई बड़े नामों पर विचार हो रहा था लेकिन राज कपूर ने एक नई युवा और बिल्कुल ताजा आवाज चाहते थे और वो आवाज थी बॉबी। साल 1973, बस बन गए ऋषि कपूर की आवाज कौन, हमारे आज के बर्थडे बॉय शैलेंद्र सिंह। और अभी हमने ये गाना सुना और इसके बाद में जो दूसरा गाना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है फिल्म अखियों के झरोखों से। अब इस फिल्म का नाम आते ही हमारे सामने आते हैं सचिन, और सचिन की आवाज कौन, शैलेंद्र सिंह। तो आइए सबसे पहले इस गाने को सुनते हैं, फिर हमारी दोस्तों की मेल्स का हम शुमार करेंगे कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है।

जी हाँ, सपनों में आवाज क्या, हमारी आकाशवाणी से भी आवाज दे रहे हैं शैलेंद्र सिंह अपने खूबसूरत अंदाज में, अपने खूबसूरत आवाज में। देखिए हमारे साथ आप सब जुड़े हैं, तो कौन है हमारे साथ जुड़े हैं? दिल्ली बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, डब्बू सम्राट, चैतन्य मस्कीन। चंडीगढ़ से है राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, और इन्हें अच्छा लग रहा है कार्यक्रम, थैंक यू। ये है निसार अली जी, और ये नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, और ये धनौरी तिलीवाला उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं। फिर हमारे साथ हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्णजीत सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। ये हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, निलोफर फातिमा। और फिर इसके बाद में हमारे साथ हैं संजय ढींगिया जी, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, बागपत उत्तर प्रदेश से, और धन्यवाद जुड़ने के लिए। हमारे साथ हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा, और हमारे साथ हैं ये हैं ग्राम गांव कुम्हार डाडा सहरानपुर सेब सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, और इसके साथ ही हमारे साथ है राजकुमार डूडी जी गांव फरासी जिला हिसार से, इनके साथ हैं प्रमोद कुमार डूडी, और इन्हें शैलेंद्र सिंह के बारे में जानकारियां अच्छी लग रही हैं, गीत अच्छे हैं, शुक्रिया। फिर है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, और हमारे साथ हैं डब्बू सम्राट पंचकुल्ला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव रिधान खुराना, और तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन जी ये, और इन्हें भी पसंद आ रहा है, धन्यवाद। हमारे साथ हैं मीरठ कैंट से दिग्दर्शन गौड़ और कविता गौड़, शैलेंद्र सिंह जी पर कार्यक्रम जो केंद्रित है इन्हें अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। फिर हमारे साथ हैं वड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, धन्यवाद। धर्मेंद्र छिपा जी शुक्रिया, आपका मेल हमारे प्रोग्राम में शामिल हुआ और चिर परिचित अंदाज है आपका, उसके लिए धन्यवाद। आपके साथ हैं कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार, भोपालगढ़ राजस्थान से। फिर है हमारे साथ में गुरमीत सिंह जी साउथ एक्सटेंशन, और ये भी लिख रहे हैं शैलेंद्र जी आज के प्रोग्राम के हमारे कलाकार हैं। सुदर्शन मुखी जी धन्यवाद, साथ हैं अनिता मुखी, सिमरन मुखी, और इन्होंने भी सही पहचाना है। तो बस आप सभी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब हम आपको एक ऐसा गाना सुनाते हैं, फिल्म है जमाने को दिखाना है, और ये है हमारे आज के कलाकार, हमारे बर्थडे बॉय शैलेंद्र सिंह।

जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है गायक शैलेंद्र सिंह की। तो बॉबी फिल्म से तो वो सुपर हिट हो गए थे और फिर उन्हें गाने के इतने प्रस्ताव मिले कि उन्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं रही। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा फिल्म खेल खेल में, फिर होगा तुमसे प्यारा कौन, जमाने को दिखाना है, फिल्म रफू चक्कर, फिर अखियों की जरूरत सी, मतलब अगर फेरिस्ट बहुत लंबी है और उनके गानों का जो ग्राफ है, सक्सेस का जो ग्राफ है वो बहुत ऊंचा है। लेकिन शैलेंद्र को अपना अभिनय का जो उनके अंदर एक छटपटाहट थी ना, जो अभिनय करना चाहते थे, एक्टर बनना चाहते थे, वो कहीं अभी भी दबी हुई थी। एक दिन उन्हें आरके स्टूडियो में राजेंद्र कुमार जी मिल गए। हाँ, वो जानते थे कि शैलेंद्र पूना फिल्म इंस्टीट्यूट के पास आउट हैं और इसीलिए उन्होंने क्या किया, राजेंद्र कुमार जी ने उन्हें राज कपूर से मिलवाया, क्योंकि राज कपूर और राजेंद्र कुमार की जो बड़े भाई हैं, राजेंद्र कुमार के जो बड़े भाई हैं, वो राज कपूर और राजेंद्र कुमार को लेकर के एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था दो जासूस, और उस फिल्म में ना उन्हें एक नए चेहरे की जरूरत थी। राजेंद्र कुमार ने वो फिल्म शैलेंद्र को दिलवा दी। फिल्म तो खास नहीं चली, लेकिन शैलेंद्र को जहरीली जनता, हवलदार, नौकर और एग्रीमेंट सहित कुछ फिल्मों में काम करने का मौका मिला। और ये इत्तेफाक रहा कि जनता, हवलदार को छोड़ शैलेंद्र की कोई भी फिल्म हिट नहीं हो सकी। इस बीच उनके पास गीत गाने के प्रस्ताव बढ़ते चले जा रहे थे, इसलिए फिर उन्होंने बहुत स्मार्ट मूव लिया और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना पूरा ध्यान सिंगिंग पर लगाया, और इसीलिए उनका जो अभिनय का जो पैशन था वो थोड़ा कमजोर पड़ता चला गया। तो बस ये तो है हमारे सरल मिजाज शैलेंद्र सिंह, आज के हमारे बर्थडे बॉय। तो हम आपको उनका एक और गाना सुनाते हैं और आप बस इसको सुनिए और अपने इस प्यारे से गायक को याद कीजिए।

हमारे साथ जुड़े हैं बहुत से दोस्त, उसमें हैं चनेश्वर गोट कराची से अमर रमेश कुमार खत्री, टेलर मास्टर कृष्ण लाल खत्री, मोहम्मद अमीन, जफर सादिक शेख, शंकर गुल शर्मा, और आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है इसके लिए धन्यवाद। फिर हमारे साथ जुड़े हैं सहदेव दामोदर जी, शशिकला दामोदर, सुमित कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल, आप बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारे साथ हमारे और भी दोस्त जुड़े हैं जिसमें हम आपको बता देते हैं, ये हैं नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन, पता है पलारी छत्तीसगढ़, धन्यवाद। फिर हमारे साथ हमारे बहुत से और दोस्त जुड़े हैं, ये हैं सोनी सिंह गिल जी, आपका मैं मेल शुमार कर चुकी हूँ। और हमारे साथ दूसरे हैं सुदर्शन मुखी जी का भी मेल शुमार हो चुका है। फिर राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, नेहा राजू, जगदीश देवांगन, शुक्रिया जुड़े रहने के लिए। गुरमीत सिंह है, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं पीएस नाहवकर, निर्मलता नाहवकर, निर्मला नाहवकर, विशाल नाहवकर, मलकापुर महाराष्ट्र से हैं नारायण इंगले, सोपान तारे, आशीष पन्हेकर। देखिये दोस्तों, हम बात कर रहे हैं किन की, जी हाँ, हमारे आज के बर्थडे बॉय है हमारे शैलेंद्र सिंह जी। अब इसके बीच में क्या हुआ कि वो बहुत ही सरल और सहज से इंसान है हमारे आज के बर्थडे बॉय। अब मैं इनके गाने, आपने हर तरह के गाने सुने, अब मैं आपके लिए एक ऐसा गाना लेकर आई हूँ जो 1985 का है। हाँ, अब 1985 में रिलीज हुई थी फिल्म सागर, ऋषि कपूर, डिंपल कपाड़िया और कमल हासन। इस फिल्म का एक गाना आपके लिए लेकर आई हूँ जो मैं चाहूंगी आप सुने, और इसमें आप आशा भोसले के साथ शैलेंद्र जी की आवाज की रेंज भी देखें और उसमें उनका एक अलग ही वेरिएशन भी देखें।

ये है फिल्म सागर में आशा भोसले के साथ शैलेंद्र सिंह। देखिए इनके गाने बहुत सारे हैं और मैं चाहती हूँ हम बहुत सारे गाने इनके शुमार करें, तो बस आप घड़ी इशारा तो नहीं कर रही लेकिन एक गाने का मौका जरूर बन पड़ा है, तो गाना आपको जरूर सुनाऊंगी। और देखिए इतना बता दूं कि इन्हें बॉबी फिल्म के लिए फिल्म फेयर नामांकन हुआ था, मैं शायर तो नहीं गाने के लिए, और कहते भी हैं कि अलमारियों में ही रखे जाते हैं आपके अवार्ड्स लेकिन गाने हमेशा यादों में बसते हैं। और अगर हम एक ऐसे कलाकार के बारे में आज बात करने गए हैं जो अभिनेता बनना का सपना लेकर FTI गया था, बॉबी ने उसे रात रात पहचान दे दी और मैं शायर तो नहीं उसे एक पीढ़ी की आवाज बनाकर छोड़ गया लेकिन हमने तुमको देखा ने उसे पहचान को और मजबूत बनाया। गायक शैलेंद्र सिंह की आवाज की सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी कि उसमें कोई बनावट नहीं है। मोहब्बत को बहुत ऊंची आवाज में कहने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी धीमी से कहा हुआ एक गीत भी बरसों तक सुनाई देता है। और हमारे आज के कलाकार भी शैलेंद्र सिंह भी कुछ इसी तरह के कलाकार हैं।

दोस्तों आज हमने बात की शायर हमारे, जी हाँ मैं शायर तो नहीं गीत के, खूबसूरत नायक जिस बहुत सी फिल्मों में नायक का भी काम किया और खूब सारे, और गायकी उनकी इतनी जबरदस्त रही कि हमारे आज के जो बर्थडे बॉय हैं शैलेंद्र सिंह, आज हमने उनकी बहुत सी फिल्मों के कुछ कुछ गाने ही सुने। बहुत सारे गाने हैं, कभी और मौका लगा तो जरूर आपको सुनाएंगे, लेकिन अब घड़ी हमें इशारा नहीं देती कि, और इजाजत नहीं देती कि हम इसको और आगे बढ़ाएं। तो आज के इस कार्यक्रम से मुझे यानी आपके रेडियो हम सफर सोनाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

1000 किलोहर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

10:30 पर आप सुनेंगे ड्रामा आगा हशर काश्मीरी का लिखा यहूदी की लड़की। चार बजे प्रोग्राम होगा फिल्मी मौसीकी का, जिसमें आप फिल्मी नगमों का लुत्फ ले सकेंगे। ये प्रोग्राम 4:50 तक जारी रहेगा और 4:50 पर आप खबरें समाप्त करेंगे। 5 बजे हमारी तीसरी मजलिस की नशियात इख्तिताम को पहुंचेंगी।

रेडियो वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।

ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि मुल्क के इदारों, एमएसएमईज और स्टार्टअप्स की कुव्वत पर विकसित भारत का सफर आगे बढ़ेगा। इसराइल के वजीर आजम बेन्यामिन नितिन्याहू ने भारतीय पायलट स्मित मछार को इसराइल, भारत और पूरी दुनिया का हीरो करार दिया है। उन्होंने कैप्टन स्मित मछार और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इसराइल के यौम आजादी की तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया। यमन के हुक्काम ने सना और

पूर्णिमा फिल्म में आपने मुकेश और लता मंगेशकर को सुना, आप सुनिए फिल्म सावन की घटा का ये नगमा, आवाज है आशा भोसले की।

0: सुनाओगे के साथ ही मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और DD फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। यहूदी की लड़की, ये समय ये गाना सुनिए, आगा हशर कश्मीरी का लिखा।
1: लचक है शाखों में, जुम्बिश हवास फूलों में, बहार झूल रही है खुशी के झूलों में।
2: हवाए ऐस ने फैला दी निकटे शादी, उड़ा है मुझके खुतन खाक के बगूलों में।
3: शहजादी साहेबा, अजरा यहूदी जरे दौलत पर आया है और वो बेशकीमत हार जिसकी तैयारी का हुजूर आलिया ने हुक्म दिया था साथ लाया है।
4: हाजिर करो।
5: देवता खैर करे, ये नहुसत की निशानी, मुसीबत का पेश खेमा, इस हंसी खुशी के जलसे में कहां से नाजिल हुआ।
1: बुजुर्ग बाप, आपने नफरत का इजहार क्यों किया? क्या वो कोई चोर या खूनी है?
5: इस शादी के जलसे में एक यहूदी का हाल लाना ये सख्त बदशगुनी है।
1: मगर उसके यहाँ आने से हमारा क्या नुकसान हो सकता है?
5: रातों को एक कोने में बैठकर रोने वाले कुत्ते क्या नुकसान पहुंचाते हैं जो मोहल्ले से मारकर फौरन ही भगा दिए जाते हैं। इसी तरह ये मलाऊन यहूदी भी जहां जाते हैं कोई ना कोई मुसीबत जरूर साथ ले जाते हैं।
4: अजरा, खुश आमदेद। गालिबन तुम हार मेरी मर्जी के मुआफिक ही तैयार करके लाए होगे।
1: खादिम ने कोशिश तो इसी बात की थी है।
4: बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत ये दिलकश हार जब मेरे ईसा नफस मार्कस की सुराहीदार गर्दन का हार होगा तो बड़ा पुरबहार होगा।
5: अजीज शहजादी, चूंकि ये हार एक यहूदी के हाथ का बनाया हुआ है इसलिए इसे पहले गिरजे में भेजकर दुआओं से दम करा के पाक बनाया जाए, उसके बाद शहजादे मार्कस के गले में पहनाया जाए।
1: आली मर्तबत दीनी सरदार, जिस तरह रोमन कौम बादशाह की फरमा बरदार है उसी तरह यहूदी कौम भी उसकी दुआ गुजार है। महज तअस्सुब की बिना पर उसकी एक शरीफ रियाया को सरे दरबार जलील करना कितने शर्म की बात है।
5: जलील को जलील कहना मेरी नजर में कोई बुराई नहीं।
1: अगर वाकई हम ऐसे ही हैं तो हमें ऐसा बेरहम बनाने वाले भी तुम और तुम्हारी कौम है।
5: झूठे, अगर हम वाकई ऐसे ही होते तो तुम लोग हमारी सल्तनत में रहने भी ना पाते।
1: क्यों नहीं? क्यों नहीं? ये आफ्ताब जो हमें रोशनी पहुंचाता है, ये दरिया जो हमें पानी पिलाता है, ये सब तुम्हारी ही मेहरबानी है, तुम्हारी ही वजह से हमारी जिंदगानी है।
5: अच्छा, तू बता सकता है कि तेरे कौम के साथ हमने कौन सा बुरा सुलूक किया?
1: ये मुझसे नहीं अपने बेदर्द दिल से पूछो। तुम सितम करते रहे और हम सितम देखा किए, खानमा बर्बाद होकर रंज गम देखा किए। बुग्ज काम हम पर मगर उल्टा असर होता गया, छांटने से नखले मजहब बराबर होता गया।
4: आपके बतंदेश यहूदी खामोश रहे, क्या जिंदगी से ना उम्मीद है? बुजुर्ग बाप, एक फरसूदा हवास बुट्ठे को अपना मुखातिब बनाना आपकी शान से बईद है।
5: हम देसिया की राय को पसंद करके आपको इसकी अहमकाना जुर्रत से चश्मपोशी करने और इस यहूदी को खामोश रहने का हुक्म देते हैं। खैर, उठिए और बरकत देकर मेरे अजीज बच्चों का हाथ मिलाइए। आगे आओ, खुश और एक दूसरे पे मेहरबान रहो, दुनिया में बामुराद रहो।
4: ठहरो, ठहरो, जब तक बादशाह आदिल के हुजूर में एक मजलूम बाल साथी अर्जी

0: तुम्हारा ऐश है और हमारा ऐश फानी है। यहाँ बचपन बुढ़ापा माँ बुढ़ापा भी जवानी है। तुम्हारा खून है खून और हमारा खून पानी है। ये जरिए नखपते क्या लेके अपने साथ जाएगा, यही रह जाएगा सब, यहाँ से खाली हाथ जाएगा।
1: आदिल सुल्तान, अब मुझे इंसाफ पाने में क्या देर है?
2: आह, क्या करूं और क्या ना करूं। कभी शादी की जो साद आई थी ना साथ जाती है, उधर इंसाफ जाता है इधर औलाद जाती है।
1: फिर तो इंसाफ मिलना चाहिए।
2: जरूर मिलेगा।
1: जनाबे वाला से?
2: हाँ, मुझसे।
1: तो कहाँ?
2: यहाँ।
1: किस वक्त?
2: इसी वक्त। बहू, एसआई हुक्म के पक्षदारों, इस नाखलक को बेड़ियां और हथकड़ियां पहनाओ और मुकदमे का फैसला होने के लिए कल इसे मजहबी अदालत में ले जाओ।
3: खाने आलम खानवा।

0: राहिल, तू होश में है?
1: हाँ।
0: तुझ पर कोई दबाव तो नहीं डाला गया?
1: नहीं।
0: तो तू अपना पहला बयान वापस लेती है?
1: हाँ।
2: राहिल राहिल, क्यों मोहब्बत में अंतिम हो गई है?
1: इसलिए कि अब और कुछ नजर नहीं आता।
2: तू अपने हाथों से अपनी कमर खोद रही है?
1: इसलिए कि कब्र में जाऊंगी तो बेवफाओं के जुल्म से निजात पाऊंगी।
2: अदालत अदालत इसकी बातों का यकीन न करे, इस पर जरूर किसी ने

0: इसलिए अब तुम क्या कहते हो?
1: जिस कदर अफ्रीका के बियाबान में रेत के जर्रे हैं, उनसे भी ज्यादा मेरे पास अल्फाज थे, मगर इस नातिबतन देश की वजह से अब कुछ नहीं कहना चाहता और अदालत के फैसले के सामने अपना सर झुकाता हूं।
0: तब मेरा सिर्फ इतना फर्ज रह गया है कि मैं अपना आखिरी हुक्म सुना दूं। शहजादा मार्कस, इज्जत और आबरू के साथ आपकी रिहाई की जाती है। राहील और अजरा, तुम्हें एक रोमन शहजादे पर बिला सबूत झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में जिंदा आग में जलाने की सजा दी जाती है।
2: मेरे बाप को सजा? मेरे बाप को मेरे जुर्म से क्या सरोकार?
0: इसलिए कि ये तुम्हारा हिमायती और मददगार है।
2: नहीं नहीं, ये नाइंसाफी है, जुल्म है। मुझे मार दो, बर्बाद कर दो, मगर मेरे बूढ़े बाप को आजाद कर दो।
0: कुछ नहीं हो सकता। इजलास बर्खास्त।
3: बुजुर्ग बाप, इस वफादार लड़की ने चूंकि मेरे साथ निहायत शरीफाना सलूक किया है, इसलिए अगर आप अपने वलीहत और होने वाले शहरयार को हमेशा के लिए हल्का बखोश बनाना चाहते हैं तो इसकी रिहाई की तदबीर फरमाइए।
0: अच्छा, आप जाइए, मुझसे जो मुमकिन होगा मैं वो करूंगा। राहील, अगर तुम्हारा बाप तुम्हें बचाने के लिए तुमसे कोई दरख्वास्त करे तो क्या तुम मंजूर करोगी?
4: दिलो जान से।
0: अजरा, तुम अपनी लड़की को मौत के पंजे से बचाना चाहते हो?
1: जी, दिल और ईमान से।
0: तो इसे इजाजत दो कि ये अपना मजहब छोड़कर हमारे मजहब में शामिल हो और इसके साथ तुम भी हमारे दीन में दाखिल हो।
1: हरगिज नहीं, अपनी बच्ची के बचाने को और सब कुछ करने को तैयार हूँ, मगर अपना प्यारा मजहब छोड़ने से लाचार हूँ।
0: कम समझ, अपनी घर जान है तो सब कुछ है,
1: अपना ईमान है तो सब कुछ है,
0: अपना इम्कान है तो सब कुछ है,
1: अपना यजदान है तो सब कुछ।
0: अजरा अजरा, ये मेरी मेहरबानी है कि मैं इस वक्त तेरी जान बचाने को तैयार हूँ, वरना तू जानता है कि मैं यहूदियों की सूरत तक से बेजार हूँ।
1: और ये उसी बेजारी और नफरत का नतीजा है कि कुदरत ने तुम्हारा गुरूर तोड़ दिया है। तुम्हारा घर बार, बीवी बच्चे, सब कुछ तुमसे छीन कर तुम्हें इस दुनिया में तनहा जलने और कुड़ने के लिए छोड़ दिया है।
0: मेरी पिछली जिंदगी के वाकयात तू कैसे जानता है?
1: बेदर्द रामन, अदराज से नहीं, तुझे 16 बरस से पहचानता है।
0: मैंने तेरी कौम के साथ जो सुलूक किया वो उसकी मुस्तहक थी, मगर इस वक्त मेरी मेहरबानियों को देख तो मैं तुझे सरासर मुजरिम पाता हूँ और फिर भी तेरी जान बचाता हूँ।
1: मुझे अब जान की परवाह नहीं, अलबत्ता आरजू है कि मरने से पहले एक पुरफन कातिल रोमन का सारा कस्बल निकाल दूं, उसके पत्थर जैसे कलेजे में चुटकियां ले लेकर छाले डाल दूं, मैं हंसता और कलेजा थाम कर रोता हुआ तू हो। मेरी आंखों में नफरत और तेरी आंखों में आंसू हो।
0: मैं तुझे सख्त बेवकूफ पाता हूँ।
1: मैं तुझे आज से 16 बरस पेशतर का वाकया याद दिलाता हूँ, जब शाहीरों के हुक्म से तमाम रोम हमें हर तरफ आग भड़की थी। उस वक्त तेरे घर में एक खूबसूरत बीवी और बीवी की गोद में 6 महीने की लड़की थी।
0: इस बात के याद दिलाने से तेरी क्या मुराद?
1: मैं पूछता हूँ कि इन दोनों के आग में चलने का वाकया तुझे खूब याद है?
0: मैं उस मनहूस दिल को जब मौत ने मेरी बीवी और मेरी बच्ची को मुझसे छीन लिया कभी नहीं भूल सकता। अभी तक गम से कुड़ता है, अभी तक याद करता है, मेरा टूटा हुआ दिल लाश तक फरियाद करता है।
1: तुम्हारी बीवी जरूर इस आग में जलकर मर गई, मगर बच्ची
5: तो क्या वो जिंदा है? उसे किसने बचाया?
1: खुदा के कुदरत ने।
5: किसने आग से निकाला?
1: एक रहम दिल यहूदी के हाथ में।
5: वो कौन है?
1: नहीं बता सकता।
5: उसका नाम?
1: नहीं बता सकता।
5: उसका ठिकाना?
1: नहीं बता सकता।
5: नहीं नहीं जसरा, तुझे बताना होगा।
1: हरगिज नहीं, ये मेरा राज है जो जिंदगी का तमसाज है।
5: नहीं अजरा,

यहूदी की लड़की। अभी आपने ये ड्रामा सुना, आगा हशर काश्मीरी का लिखा, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। फिल्मी मौसीकी मेरे सामने इस प्रोग्राम में समाप्त कीजिए कुछ फिल्मी नक में।

किशोर कुमार और मन्ना डे को आपने सुना फिल्म शोले में। अभी आप सुनिए मौसम फिल्म का ये नगमा, आवाजें हैं लता मंगेशकर और भूपेंद्र की।

और प्रोग्राम की अगली पेशकश है फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस से, आवाज है मोहम्मद रफी की।

0: हाँ
1: क्या चुप रहूं
0: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
0: क्या है

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में आपने फिल्म दीवार का ये नगमा सुना। वहीं जब सुनिए परवीन सुल्ताना और मीनू पुरुषोत्तम और साथियों की आवाजों में ये नगमा, फिल्म है दो बूंद पानी।

Bubun Fanny, friend sa'yo anak, maapres mo. Or, Abhi Jesunye, film Qurbani ka nagma. आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की, नगमा निगार हैं इंदीवर, मुसिकार कल्याण जी, आनंद जी।

दिल तेरा आशिक। अरे आपने इस फिल्म का ये नगमा सुना, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। नगमागार थे समीर, मौसीकार नदीम शर्मन। आप सुनिए फिल्म प्रेम कैदी से ये नगमा। एस पी बाला सुब्रमण्यम और कविता कृष्णामूर्ति की आवाजों में। नगमा निगार हैं समीर और मौसीकार आनंद मिलन।

दौर में भी दाखिल हो रहा है। भारत के कंपनी सेक्रेटरियों के इंस्टीट्यूट ICSI का तस्करा करते हुए जनाब राधाकृष्णन ने मुल्क में अच्छे कारपोरेट इंतजामिया के फरोग में इंस्टीट्यूट के अहम रोल की सताइश की और इसे पायदार तरक्की के लिए आलमी पैमाना करार दिया। उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की कि मजबूत आत्मनिर्भर भारत की तामीर में ICSI की इज्तिमाई कोशिशों की बदौलत मुल्क एक दिन दुनिया की वाहिद सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। अपग्रेड किए गए ITIs के जरिए प्रधानमंत्री हुनरमंदी और रोजगार के मौके फराहम करने वाली स्कीम पीएम सेतु का आज एक साल मुकम्मल हो गया है। हुनरमंदी की तरक्की और सनअतकारी की वजारत की स्कीम पीएम सेतु का आगाज पिछले बरस 4 अक्टूबर को किया गया था। इस स्कीम का मकसद सनअत पर मबनी हुक्मरानी को मजबूत करना, तरबियत से मुतालिक बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना और उभरती हुई अफरादी कुव्वत की मांग के मुताबिक कोर्सेज को फरोग देना शामिल है। इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कप्तान स्मिथ मछार और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इसराइल के आइंदा यौम आजादी की तकरीबाती समारोशन करने के लिए मदऊ किया है। कैप्टन मछार ने टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान जनाब नेतन्याहू ने फिजाई हमले को नाकाम बनाने में उनकी बहादुरी को सराहते हुए उन्हें भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का हीरो करार दिया। उन्होंने कैप्टन मछार की जल्द और मुकम्मल सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाएं की और उनके अहले खाना के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जनाब नेतन्याहू ने कहा कि तकरीबाती समारोशन करने का एजाज रिवायती तौर पर इसराइली शहरियों के लिए मखसूस होता है, इसलिए कैप्टन मछार को यह दावतनामा उनकी बहादुरी और खिदमात का एक गैर मामूली और अहम एतराफ है। कैप्टन मछार उस वक्त अबूजहबी में जेर इलाज हैं और सेहतियाबी के मरहले से गुजर रहे हैं। उन्होंने कॉकपिट में होने वाले हमले के दौरान गैर मामूली दिलेरी और हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए 174 मुसाफिरों की जानें बचाई। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। यमन की फोर्सेज ने दावा किया है कि यमन में अहम महाजों पर हौसी लड़ाकों को काफी नुकसान पहुंचा है। उधर सऊदी अरब ने हौसियों के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि सऊदी शहर रियाज को मिसाइल और ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। मीडिया इत्तलात के मुताबिक यमन की बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा सरकार की मुसलह अफवाज ने दो महाजों पर हौसी कुमक के खिलाफ 97 कार्रवाइयां अंजाम दी हैं। इत्तलात में कहा गया है कि इस कार्रवाई में 260 हौसी लड़ाकों को हलाक किया गया है और 44 फौजी मोटर गाड़ियां और ट्रांसपोर्ट नीज सप्लाई साजो सामान तहस नहस हो गया। मालूम हुआ है कि फोर्सेज ने सना और सादा में हौसी ठिकानों को निशाना बनाया। टकराव वाले अहम महाजों पर लड़ाई में तेजी आ रही है। यूक्रेन ने रूस के साथ मुमकिन जंगबंदी के लिए भारत की तजवीज को कीव को मौसूल होने वाली 4 तजावीज में सबसे अहम करार दिया है। यूक्रेन के वजीर खारजा अंद्री सिबिहा ने कहा है कि यूक्रेन तवानाई के बुनियादी ढांचे और बहरे अस्वद में जंगबंदी पर गौर करने के लिए तैयार हैं। उनका यह बयान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के एक दिन बाद सामने आया जिसमें उन्होंने कहा था कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तनाजा के बाहमी तौर पर काबिल कबूल हल तक पहुंचने के लिए तामीरी नजरियात पेश किए हैं। वजीर खारजा सिबिहा ने कहा कि यूक्रेन को भारत, तुर्की, मिस्र और अमरीका की जानिब से जंगबंदी की तजावीज मौसूल हुई हैं। उन्होंने कहा कि कीव जंगबंदी के मुख्तलिफ तरीकों पर गौर करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी मुआहदे का दायरा सिर्फ मैदान जंग की कार्रवाई तक महदूद नहीं होना चाहिए बल्कि तवानाई और बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे पर हमले और बहरे अस्वद में जारी सरगर्मियों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। अमरीका के साहली मुहाफिज दस्ते ने तस्दीक की है कि बरमूडा से बोस्टन जाने वाले लापता तिब्बी तैयारे का मलबा नाटकेट के साहिल के करीब से मिला है। तैयारे ने कनाडा के 4 और बरमूडा के 2 शहरी सवार थे। शहरी हवाबाजी के वफाकी इंतजामिया ने कल रात तकरीबन 2 बजे कोस्ट गार्ड को इत्तला दी कि गल्फ स्ट्रीम G100 तैयारा जिसका टेल नंबर CGRJP है से राबता मुनक़ते हो गया है। तलाश में मसरूफ साहली मुहाफिज दस्ते ने बताया है कि मलबा उसी तैयारे का है और तैयारे में सवार 6 अफराद की तलाश जारी है। LiveATC.net पर जारी किए गए एयर

0: ट्रैफिक कंट्रोल के ऑडियो से पता चला है कि पायलट ने साहिल के करीब पहुंचने के दौरान बिजली के निजाम में खराबी की इतला दी और इमरजेंसी सूरत हाल का ऐलान किया था। कनाडा के ट्रांसपोर्ट के वजीर ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि हुकाम सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। इंडोनेशिया के सोमबावा खिते में आज सुबह सवेरे 5.9 शिद्दत का जल्जला आया। मुल्क के महकमे मौसमियात के मुताबिक जल्जला 10 किलोमीटर की गहराई में आया। जल्जले से किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। अमेरिका में बड़ी तादाद में भारतीय निजात अमरीकी शहरी वर्जीनिया के ग्रेवली प्वाइंट पार्क में भारतीय सिफारतखाने के जेर एहतमाम मुनक़िदा विकसित भारत यूनिटी रन में जमा हुए। इस तकरीब में दौड़, योग और ध्यान को शामिल किया गया, जबकि सेहतमंदी और कम्युनिटी की शिरकत का पैगाम दिया गया। जापान में 2026 के एशियाई खेल आज इख्तितामी तकरीब के साथ खत्म हो गए। इस तरह दो हफ्ते से ज्यादा अरसे से जारी खेल मुकाबलों का सिलसिला भी खत्म हो गया। भारत ने 20वें एशियाई खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। भारत मजमूई तौर पर 85 तमगे जीत कर चौथे मुकाम पर रहा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में खवातीन के 53 किलोग्राम के फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने पर अंतिम पंघाल को मुबारकबाद दी है। खास खबरें एक बार फिर। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि मुल्क के इदारों, एमएसएमईज और स्टार्टअप्स की कुव्वत पर विकसित भारत का सफर आगे बढ़ेगा। इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ मछार को इसराइल, भारत और पूरी दुनिया का हीरो करार दिया। उन्होंने कैप्टन स्मिथ मछार और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इसराइल के यौम आजादी की तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया। यमन के हुकाम ने सना और सादा में हौसियों के कब्जे वाले इलाकों पर हमलों की तस्दीक की है। यूक्रेन के वजीर खारजा एंद्री सिबिहा ने कहा है कि यूक्रेन जंगबंदी के लिए भारत की तजवीज पर गौर करने को तैयार है। और 2026 के एशियाई खेल आज जापान के नागोया में इख्तितामी तकरीब के साथ खत्म हो गए। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पांच बजे चाहते हैं अब हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम को पहुंचती है। रात 9:15 पर तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। आकाशवाणी वर्ड सर्विस दिल्ली ए पंजाबी सेवा है। शाम दे 5 बजे ने हुण साडी दूजी सभा शुरू हुंदी है। सभा दी शुरुआत सब तो पहला समात फरमाओ सराय की प्रोग्राम झोक माही दी।

0: आकाशवाणी दी विदेश प्रसारण सेवा दसी राय की प्रोग्राम है। मैं आप सबको सलाम नमस्ते करेंदा। अज असा हाजिर हैं आप सब दे नाल एक वार्ता ते सिराय की गीत संगीत दे नाल। आप सुनते हैं पहले वार्ता, भारतीय संस्कृति की संवाहक नदी सरयू नदी। वार्ताकार हैं ज्योति।
1: आज मैं अपनी मां बोली सरायकी विच एक वार्ता पेश करेंदी पई हां, जिंदा शीर्षक है सरयू नदी। पर्वत राज हिमालय भारत दा मुकुट है। हिंदिया बर्फानी चोटियां ते हरे भरे जंगल शांत एकांत तपोभूमि हैं। हिने जंगले विच रोग निवारक जड़ी बूटियां दा भंडार है। हिंदी गोडी विचू बेशुमार नदियां निकल देन। ए नदियां भारत वासियों दा जीवन दा आधार हैं। ए नदियां भारत माता दे गले दा हार ते वक्ष दा श्रृंगार हैं। हिने नदियां दे तटे ते बैके ऋषि मुनि तपस्या करेंदे हन। विशाल

भारत भूमि ते अनेक नदियां वांदियां पेन, जिन्हें विच गंगा, जमुना, भागीरथी, अलकनंदा, नर्मदा, ताप्ती, गोमती अते गोदावरी आदि दा अलग मुकाम है। पवित्र नदे दे रूप विच अपनी अलग पहचान है। हिने दी तरह सरयू नदी दा भी अपना अलग इतिहास ते पहचान है। गंगा वांगू सरयू नदी दी भी लोक मान्यता है। लोग हिंकू भी बड़ी श्रद्धा नाल पूजेंदे। सरयू नदी हिमालय दी तलहटी विचों निकलदी है ते भारत दे उत्तरी भाग विच वांदी है अते गंगा दी सहायक नदियां विचों हिक है। हिंदा उद्गम उत्तराखंड दे वागेश्वर जिले विचों थींदे। बाद विच ए शारदा नदी विच मिल वेंदी है ते उथाऊ हिकू काली नदी आख देन उत्तर प्रदेश राज्य विचों गुजरदे वे। हिंदा घाघरा नदी विच विले थी वेंदे ते हिंदे तलवे भाग को सरयू सडेन देन। थोड़ा आगू ते वन के छपरा ते बलिया शहरे दे विचकार ही सरयू दा गंगा विच विले थी वेंदे। बाराबंकी, बहराम घाट, अयोध्या, दोहरी घाट, टांडा आदि नगर सरयू दे तट ते स्थित हैं। आम लोगे दी बोलचाले विच सरयू को सरजू आख देन। घाघरा, शारदा, राप्ती, रामप्रिया ते काली नदी भी हिंदे ही ना हैं। सरयू नदी उत्तर प्रदेश दे अयोध्या, बहराइच, गोंडा, मिथिलांचल आदि कई जिले दी जीवन रेखा है ते ही सारे प्रदेश दी भूमि दा सिंचन ही सरयू नदी दे पवित्र जल नाल थींदे। ही उदेश नाल नहरा भी खटिया गेन ते बराज भी बनाए गेन। खेते दी हरियाली ते सरयू तट दी ग्रीन बेल्ट पर्यटकें को अति मनोरम ते शांतिदायक लग देन। पुराणे विच वर्णन है कि सरयू भगवान विष्णु दे नेत्रे तो प्रकट थई हई। आनंद रामायण दे यात्रा कांड विच उल्लेख है कि शंकासुर दैत्य ने वेदें को चुरा के समुद्र विच सट दित्ता हई। ही कारण अधर्म दी वृद्धि ते धर्म दी हानि थीवन लगी। हूं वेले भगवान विष्णु ने मत्स्य दा रूप धारण करके शंकासुर दा वध कीता अते वेद ब्रह्मा जी को सौंप के अपने असली रूप को धारण कीता। हूं वेले भगवान विष्णु दे अखी विचों खुशी दे हंजू त्रिंपे। ब्रह्मा जी ने हुने हंजुए को संजो के मान सरोवर विच सुरक्षित कर गिद्दा। ही जल को महाप्रक्रमी राजा बैवस्वत ने तीर मार के मान सरोवर तू बाहर कड्या ते जल दी हिक धारा प्रवाहित थई जिंदा ना सरयू पै गया। ए वैदिक कालीन नदी मन्नी वेंदी है ते हिंदा उल्लेख अलग अलग धर्म शास्त्रे विच मिल दे। हिंदा धार्मिक, सामाजिक ते आध्यात्मिक महत्व गंगा जमुना दे महत्व कनु घट कहने मन्या वेंदा। भगवान राम दे अयोध्या विच अवतार ने सरयू दे महत्व को चार चन्न ला दित्तेन। सरयू तट ते ही रघुवंशी राजाएं दी राजधानी है अयोध्या, जेंदा पुराना लोक प्रचलित ना अवधा। अयोध्या दे आस पास दा सारा क्षेत्र अवध प्रदेश सडिंदा हा। ही अयोध्या विच भगवान विष्णु दे सतवें अवतार भगवान श्री राम दा जन्म महाराज

0: दशरथ ते महारानी कुशल्या दी संतान दे रूप विच थया हा। इहो कारण है कि सरयू दान ना सुनदे ही साडा मन राम नगरी विच पुजवेंदे। श्री राम ते हुने दे भीरावें दा बचपन अयोध्या विच सरयू तट ते ही बीतिया। हुने बचपन विच ही सरयू विच कित्ती वारी टुबिया मारिया होसन ते रोज ही सरयू विच धां के हुंदे पवित्र जल को ब्याह पवित्र कीता होसी। हुने कुल गुरु मुनि वशिष्ठ दे आश्रम विच रह के शास्त्र विद्या ते शास्त्र विद्या दा ज्ञान प्राप्त कीता होसी। वल राम ते लखन ने ऋषि विश्वामित्र दी प्रेरणा नाल वन विच वन के राक्षसें दा संहार कीता ते यज्ञ दी रक्षा कीती। उथाऊ ही ऋषि श्रेष्ठ दे नाल मिथिलापुरी वन के सीता स्वयंबर विच अपना पुरुष दिखाया ते शिव धनुष भांग करके सीता स्वयंबर जीतिया। इह सरयू नदी प्रभु श्री राम दे अयोध्या विच जन्म बचपन बनवास ते वापसी तक दे सारे जीवन दी साक्षी बनी। पुराने कथावें विच ए भी उल्लेख मिलदे कि महाराज दशरथ द्वारा भ्रमवश पितृभक्त श्रवण कुमार दी हत्या कर दिती गई है। ए दर्दनाक घटना भी ही सरयू नदी दे तट ते थई है। गुरु वशिष्ठ व ब्रह्मा जी ने जद भगवान राम को संसार तू मुक्त थी वनन दा आदेश दिता ता श्री राम ने सरयू नदी दे विच जल समाधि घिन गिद्धी। जेड़े भक्त श्री राम दे दर्शन करन आंदेन ओ सब तो पहले सरयू नदी दे पवित्र जल विच धांदे जरूर हैं। हिंदे बाद हनुमान गढ़ी विच हनुमान जी दा आशीर्वाद घिंदेन ते राम दरबार दे दर्शन करेंदेन। सरयू नदी अपनी यात्रा दे लिहाज नाल बेशक छोटी नदी है लेकिन हिंदा इतिहास गौरवशाली है। सरयू दा तट हरदी पौड़ी हरिद्वार ते बोध गया जी दे बराबर मन्या वेंदे। ही प्रदेश दे लोगें को सामाजिक कृते किथाई दूर वनन दी लोड़ कहनी पौंदी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर दे नाल नाल अयोध्या दे विकास दे वास्ते भी कई योजनावां ते काम करेंदी पई है जिस नाल सरयू दा रूप निकर वेसी। ही सिलसिले विच श्री राम दी पौड़ी दी सजावट दे बाद सरयू रिवर फ्रंट दा विकास सब तो वड्डी योजना है। हिंदे नाल ना सिर्फ अयोध्या दी शान वधसी बल्कि कुदरत दे कहर दी हालत विच लोगें को परेशानी कनु निजात मिलसी। नाल ही घूमण फिरन दे शौकीन लोगें को एक सुंदर पर्यटन स्थल भी मिलवेसी। सारे रल के संकल्प करूं कि जेड़िया नदियां साकू पवित्र करें देन असा हुने को भूल के भी अपवित्र ना करेसू।
1: आप सब सुनते पे आवे एक वार्ता ज्योति दिनाल वार्ता आई भारतीय संस्कृति की संवाहक नदी सरयू नदी। हुण पेश है आप सब दे सामने सिराई की गीत संगीत
2: ते हुण सुनेंदे हां महक मलिक दा गाया हे गीत कदे यार होंदा साडा कदे प्यार होंदा साडा। गीत दे मजे चाओ।

सामीन दी खिदमत नवजोत सलामर्स करती है। खुश नौ की हाल चाल है, उम्मीद करदे हाल चाल वधिया होणगे। वैसे भी जदों असीं मिलदे हां तां वाकई ही हाल चाल होर भी वल हो जांदे ने। लो जी इधर अज इस मजेजे प्रोग्राम दस दिए जी। सब तो पहला होगा जी अज की गल। अज आपां गलबात करांगे घरेलू पशुआं की देखभाल बारे। अगला सिलसिला आएगा जी प्रोग्राम दोपार दियां। बहुत सारियां गल्लां सांझियां करांगे अपने।

तो से सुन रहे प्रोग्राम दो आरतियां दो पारतियां। सो गलबात अपनी चल रही सी जी दोहां देशां बारे लैंदे पंजाब ते चढ़दे पंजाब दी गल कर रहे हां। सांझे लोक गीत ने साडे विरसा आया साडा हीर रांझा मिर्जा साहिबा सस्सी पुन्नो ये सारा कुछ ही तो साडा आ। वाकई सोनी महिवाल दियां प्रीत कहानियां दोवां पासियां दे हर पंजाबी दे दिल दे नेड़े हन। सरों दा साग मक्की दी रोटी परौंठे ए पंजाबी पहरावा कुर्ता चादरा सूट दोहां पंजाबां दी पछाण है। विसाखी लोहड़ी बुले शाह जां शाह हुसैन दे उर्स दोहां पासियां ते इको जिहे चाह दे नाल मनाए जांदे ने। लहिंदा पंजाब सिख धर्म अते सूफीवाद दी पवित्र धरती है। श्री ननकाणा साहिब जो कि श्री गुरु नानक देव जी दा जन्म स्थान है पंजा साहिब अते श्री करतारपुर साहिब लहिंदे पंजाब विच स्थित हन। हर साल चढ़दे पंजाब तो हजारा श्रद्धालु इन्हां पवित्र स्थानां ते दर्शन ले जांदे ने। बाबा फरीद हजरत मियां

0: फीमेल काल्स होंगी, यानी कि 95% कट्टियां या बच्चियां ही होंगियां। और इस तरह जिथे पशु पालक का फायदा होगा अगे ओदी जिहड़ी आपां कहने आं भी प्रोजनी अगे चलती है उसके नाल ही मेल काल्स घट होने करके जिहड़े स्ट्रे एनीमल दी आपां आवारा छड्ड दिंदे आं मेल काल्स उन्हां दी जिहड़ी समस्या ते भी काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। अलग अलग विभागों वालों जिहड़े ने चाहे इसे असी कहिए नैशनल लाइफ स्टॉक मिशन है इस स्कीम दे विच कहिए एसकेट स्कीम दे विच कहिए वख वख जिहड़ी सहायक धंधियां नूं अपनाउण दे लई असी जिहड़े पशु पालकां नूं ट्रेनिंगां दित्तियां ने अलग अलग ट्रेनिंग दित्तियां जा रहियां ने और अगों फ्यूचर दे विच वी जिहड़ियां ट्रेनिंग दित्तियां जाणगियां। इस दे नाल ही इह वी जिहड़ी अपील है मेरी सारे पशु पालकां नूं जिहड़ी वी वैक्सीन जिहड़ी भी कोई स्कीम है सरकार दे वल्लों आंदी उन्हां दे लई पशु पालकां दे लई फील्ड दे विच आंदी है उह उस वेले उहनूं हुंगारा देण चंगा क्योंकि उह सारियां चीज़ां पशु पालकां दे लई ने उहनां दे फायदे लई ने। पशु पालकां नूं अलग अलग स्कीमां जिहड़ियां आंदियां ने उहनां दे उत्ते जदों स्कीम स्टेट विच आंदियां ने तां काफी ज्यादा उहदे उत्ते लेबर लगदी है सो कोशिश हुंदी है भी कोई भी स्कीम असी एहो जी ना छड़िए जिहदे नाल कि पशु पालक दा फायदा असी छड़ दईए और किसी भी तरह दी लोड़ दे लई किसी भी तरह दी जरूरत है या तुहाडी कोई नवी चीज तुहाडी रिक्वायरमेंट है तुसी नेड़े दी पशु संस्था नाल अपना राबता कायम कर सकते हो। नाल ही तुसी डिस्ट्रिक्ट हैड जिहड़े डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंडरी उहनां कोल जा सकते हो या जिहड़ी डायरेक्टोरेट लैवल ते है तुसी डायरेक्टोरेट जिहड़ा डायरेक्टर पशु पालन विभाग पंजाब साडे नाल संपर्क कर सकदे हो लाइफ स्टॉक कंपलैक्स विखे मोहाली विखे आके संपर्क कर सकदे हो। हमेशा पशु पालन विभाग पंजाब तुहाडी सेवा दे लई हमेशा हाजिर है तुहाडा जीवां दे लई जानवर जिहड़े भी तुसीं पाले है उहनां दी सेहत लई उहनां नूं बीमारियां तों बचाउण दे लई असीं हमेशा वचनबद्ध आ और उहनां दे फायदे लई तुहाडे फायदे लई हमेशा जिहड़े है पशु पालन विभाग अगे रहेगा यही सानू उम्मीद है आस है पशु पालन विभाग पंजाब हमेशा तुहाडे नाल है।
1: हां जी बल साहब सुनिया फिर
2: जी बहुत वधिया दस्या जी डॉक्टर साहब ने पशुआं बारे
1: पशुआं दी महत्ता बारे तां इन्हां ने सानू जानकारी दे दित्ती
2: हां जी
1: ते हुण जे दो क बोल गीत दे सुन लईए
2: जरूर जी जरूर सुनदे आं।

0: ਦੀ ਪਿਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਣੀ, ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਉਠਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਉਲਟਾਵੇਂ ਹਲ ਹੈ, ਉਲਟਾਵੇਂ ਹਲ ਦਾ ਲੋਕੀ ਬਸ ਲਿਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਚਲਾ ਲਿਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਐਮਬੀ ਪਲਾਓ ਹੈ। ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਲਟਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਕਿਹੜਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਦਾ, ਉਸੀ ਤਰਫ਼ ਮਿੱਟੀ ਸਿੱਟਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਮਿੱਟੀ ਸਿੱਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਮਤਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਲੈਵਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਰਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਿਜਾਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਖੇਤ ਨਾ ਬਣੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਲੇਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ। ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ 3-point ਲਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਲਿੰਕ ਜੋੜਨੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਰੱਖਣਾ 200-125 ਇੰਚ ਦਾ, ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਲਿੰਕ ਜੋੜਨੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਜੋੜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟੋਪ ਲਿੰਕ ਦਾ। ਟੋਪ ਲਿੰਕ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਲਟਾਵੇਂ ਹਲ ਨੇ, ਉਸਮੇ 2-3 ਛੇਦ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੈਂਪਸ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋੜ ਲਓ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਜੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਛੇਦ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। 3 ਛੇਦ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का दृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है। नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि ये क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने में सहयोग देगी। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर आज गुंटूर जिले में एक परियोजना का शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 3 लाख मकान स्वीकृत किए हैं और चल रहे निर्माण कार्य के पूरा होने से पहले 3 लाख और मकान स्वीकृत करेंगे। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि अब तक आयोजित पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतों में से 20,676 शिकायतों का मौके पर

0: समाधान किया गया है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को, पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज। शाम के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम राम, राम।
0: हेमंत भाई कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। देखिए, किसानों की मदद के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही हैं और चलाई जाती रही हैं। सरकार के साथ साथ अनेक सहकारी संस्थाएं भी किसानों की मदद के लिए कार्य कर रही हैं। इन्हीं में से एक है भारतीय बीज सहकारी समिति। ये समिति देश के कोने कोने से मौजूद सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से किसानों को असली व प्रमाणित बीज उचित दरों पर उपलब्ध कराती है। और इतना ही नहीं हेमंत भाई, साथ ही ये बीज उत्पादन में जुड़े किसानों को आधुनिक तौर तरीके सिखाने के लिए प्रशिक्षण भी देती है। पिछले दिनों इस समिति की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया
1: जी।
0: तो आइए सुनते हैं इसी पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट।
2: विगत दिनांक 29 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के इफको सदन में भारतीय बीज सहकारी समिति द्वारा 4वीं सामान्य निकाय की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय बीज सहकारी समिति के अध्यक्ष योगेंद्र कुमार, समिति के प्रबंधन निदेशक चेतन जोशी, इफको के प्रबंध निदेशक जेके पटेल और भारतीय बीज सहकारी समिति के निदेशक मंडल के सभी सदस्य और पूरे देश से आए सहकार बंधुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई। सबसे पहले भारतीय बीज सहकारी समिति के प्रबंध निदेशक चेतन जोशी ने सभी का स्वागत करते हुए समिति की अब तक की यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए कहा।
3: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निदेशक मंडल के सदस्यगण जो कि आभासी माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माननीय श्री मोहन भाई कुंडारिया जी, इफको के प्रबंध निदेशक श्री केजे पटेल जी, श्री राम इकबाल जी, केओएफ के वाइस चेयरमैन और एनसीडीसी से नामित डायरेक्टर और सामने बैठे हुए सभी माननीय सहकारी समितियों के ऑफिशियल्स और जो बीबीएसएसएल के सदस्य भी हैं, आप सभी का भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की चौथी वार्षिक आम सभा में हार्दिक स्वागत है। आज का दिन विशेष महत्व हमारे लिए रखता है क्योंकि एक औपचारिक बैठक के अलावा ये पिछले वर्ष के कार्यों का आत्ममूल्यांकन, उपलब्धियों की समीक्षा, कमियों से सीखने और आने वाले वर्ष के लिए स्पष्ट कार्य योजना निर्धारित करने का अवसर है। बीबीएसएसएल की जो यात्रा रही है वो एक

0: विचार से एक कार्यशील संस्था तक की रही है। अगर आप पिछले 3 साल का हमारा सफर, हमारी जर्नी देखेंगे, हमारी स्थापना 25 जनवरी 2023 को सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के द्वारा हुई थी और देश की कुछ प्रमुख संस्थाएं इफ्को, क्रिप्को, नेफेड, एनसीडीसी और एनडीडीबी जैसी संस्थाओं ने इसको स्थापित होने में, इसकी नींव डालने में सहयोग प्रदान किया, पूंजी निवेश किया। इन सभी सहकारी संस्थाओं के सहयोग से स्थापित बीबीएसएसएल का उद्देश्य देश के बीज क्षेत्र में सहकारिता की शक्ति को स्थापित करना और किसानों को बीज मूल्य श्रृंखला से जोड़ना है। वित्तीय वर्ष 2025-26 हमारी यात्रा का तीसरा वर्ष था और अगर व्यावसायिक दृष्टि से देखें तो दूसरा पूर्ण व्यावसायिक वर्ष था। इन प्रारंभिक वर्षों में हमारा प्रमुख प्रयास यही रहा है कि संस्थान की नींव मजबूत हो, सदस्यता का विस्तार हो, सीड प्रोडक्शन नेटवर्क पहले स्थापित हो और फिर विकसित हो, मार्केटिंग चैनल से स्थापित हो और किसानों तथा सहकारी संस्थाओं के बीच बीबीएसएसएल के प्रति विश्वास पैदा हो। मुझे प्रसन्नता है कि इन सभी क्षेत्रों में हमने महत्वपूर्ण प्रगति करी है और 2025-26 को यह कहते हुए मुझे खुशी है कि ये बहुत तेज विकास का वर्ष भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के लिए रहा है। माननीय सदस्यों, वर्ष 2025-26 में बीबीएसएसएल ने लगभग 222.34 करोड़ का व्यवसाय किया, जो पिछले वर्ष 59.74 करोड़ की तुलना में 270% की वृद्धि दर्ज करता है। मानव संसाधन और प्रोफेशनल कैपेसिटी के ऊपर तेजी से इजाफा होगा, जैसा कि 2025-26 में 33 से बढ़कर 68 लोग हुए, इस साल ये संख्या 100 से ऊपर चली जाएगी और हम स्पेशलाइज्ड टेक्निकल मैनपावर को दे रहे हैं जो कि अपने अपने विषय में स्पेशलिस्ट हों और किसान के पास सही सीड और सही विपणन स्ट्रेटजी के साथ हम निकले। रिसर्च और इनोवेशन के ऊपर काम करेंगे, टेक्नोलॉजी और डेटा ड्रिवन मैनेजमेंट को बढ़ाएंगे और फाइनेंशियल डिसिप्लिन और प्रॉफिटेबिलिटी सुनिश्चित करेंगे ताकि किसान का विश्वास भारत बीज के साथ बने और बरकरार रहे।
1: इस अवसर पर भारतीय बीज सहकारी समिति के अध्यक्ष योगेंद्र कुमार ने सभी का स्वागत करते हुए अपने उद्बोधन में कहा,
2: निदेशक मंडल के सम्मानित सदस्यगण, हमारी सदस्य सहकारी समितियों के सम्मानित प्रतिनिधि लोग, हमारी और भी संस्थाओं से आए हुए माननीय सदस्यगण और मंचस्थ विशेष रूप से उपस्थित इष्टजनों का यहाँ आने के लिए, हमको आशीर्वाद देने के लिए उनका बहुत बहुत आभार और सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले मैं अपनी केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री को याद करना चाहूंगा, जिनके विशेष प्रयास से और जिनके विशेष निर्देशन में, नेतृत्व में 3 सहकारी समितियों का गठन राष्ट्रीय स्तर पर कैबिनेट नोट से किया गया। एक बहुत ही साहसिक, बड़ा ही दूरगामी और बड़ा ही दूरदर्शी उनका उद्देश्य था और उस उद्देश्य के बारे में जब मुझे मौका मिलता है तो मैं जरूर कहता हूं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का, उन्होंने क्या सोचा होगा, कितनी बड़ी दूरदृष्टि उन्होंने लगाई होगी कि हम अपना उत्पादन करेंगे तो ऑर्गेनिक उत्पादन करेंगे, हमारे पास सहकारिता में कोई एक्सपोर्ट की संस्था नहीं है तो हम एक्सपोर्ट की संस्था बनाएंगे और साथ में बीजों की कमी है देश में क्वालिटी सीड की, उसको पैदा करने के लिए एक संस्था बनाएंगे, उसका नाम रखा भारतीय बीज सहकारी लिमिटेड। आपको मित्रों याद दिलाना चाहता हूं, जब पहली हरित क्रांति आई थी तो आपको शायद पता है, नहीं पता है, लेकिन मैं बड़े विश्वास से और बड़ी दृढ़ता से कह सकता हूं कि उसकी पूरी की पूरी सफलता जो है वो सहकारिता के माध्यम की वजह से हुई थी। ये आंकड़े बताते हैं, सन 1980 या 1990 तक देश में जितना भी कृषि आदान, कृषि निवेश का वितरण होता था उसका मूल स्तंभ ही सहकारिता था। हम लोग सब सहकारिता में एक बार संकल्प लें कि हम सहकारिता के माध्यम से गुणवत्ता युक्त बीज पैदा करेंगे और वो उसका माध्यम हमारी सहकारी समितियां होंगी, इससे आदर्श स्थिति कोई दूसरी हो नहीं सकती। माननीय केंद्रीय और गृह सहकारिता मंत्री जब हम लोगों की समीक्षा करते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि भाई उत्पादन सहकारी समितियों से हो, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबकी सहकारी समितियां हैं, सभी किसान हैं, वो किसानों का हित अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, उस आधार पे हमको वो आशीर्वाद दे सकते हैं, हमको गाइड कर सकते हैं, अगर हम कहीं गलती करें तो उसको सुधारने में भी हमारी मदद कर सकते हैं। तो ये मैं आग्रह आपसे करना चाहता हूं।
1: इस अवसर पर इफ्को के प्रबंध निदेशक ने भारतीय बीज सहकारी समिति के भविष्य और उर्वरकों के सही उपयोग के बारे में जानकारी देते हुए कहा,

0: सभी का मैं इफको सदन के इस ऑडिटोरियम में इफको परिवार की तरफ से सादर अभिनंदन करता हूं। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है और बात है कि मुझे ईबीएसएसएल की समिति के द्वारा यहां पर उपस्थित रहने का एक सौभाग्य मिला। जो सोच के साथ बीबीएसएसएल की शुरुआत की गई, उसकी इस संस्था के जो बीज बोए गए हैं और उस बीच को आज मैं देख रहा हूं कि केवल ये चौथी आम सभा है और आपके सामने आज जो हमने आंकड़े प्रस्तुत किए हमारे एमडी साहब ने, मुझे दिख रहा है कि हमारे बीबीएसएसएल का भविष्य बहुत ही सुंदर, बहुत हम आगे ले जाएंगे संस्था। आज मेरे लिए भी एक बात करने का मौका है। मैं इफको संस्था के साथ जुड़ा हूं पिछले 42 सालों से। ये संस्था हमारी जो इफको है वो किसानों के हित में कार्य कर रही है। ये केवल किसानों का हित नहीं, देश का हित है। आप सबको जानकर शायद सरप्राइज भी हो सकता है कि हमारे देश की जो फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट्स है ना, उसका करीब करीब आप अगर डीएपी की बात कर लें तो 70% केवल इफको बनाती है। यूरिया के बहुत सारे कारखाने हैं, लेकिन अगर इफको की बात कर लें तो हम लोग करीब करीब 20% यूरिया केवल इफको बनाता है। देखिए, बात वहां नहीं रुकती है कि कहां कौन कितना फर्टिलाइजर बनाता है, बात वहां आकर उठती है कि ये फर्टिलाइजर का उपयोग कैसे हो रहा। आज हमारे देश के अंदर में केवल मैं यूरिया की बात करूं तो 4 करोड़ टन फर्टिलाइजर, यूरिया फर्टिलाइजर का हम लोग उपयोग कर। ये जो फर्टिलाइजर है, चाहे वो यूरिया हो चाहे डीएपी हो, ये बनाने के लिए जो सामान आता है ना वो विदेशों से आता है, बट उसके पीछे जो लागत होती है ना वो बहुत अधिक होती है। तो आज एक बोरा 4,500 रूपये का किसानों को डीएपी का 1,350 में और यूरिया का 266 रूपये में हमारी सरकार उपलब्ध कराती है। बाकी के पैसे सब्सिडी के रूप में जो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके माध्यम से किसानों तक पहुंचता। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारी फर्टिलाइजर का जो उपयोग है वो वैसे हो जिससे कि कम से कम मात्रा में हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग, और इसको यदि हमें कम करना है, ये पैसे जो हम सब्सिडी के विदेश से रॉ मटेरियल्स लाने में खर्च करते हैं, वही पैसे अगर हमारे देश के किसान अगर फर्टिलाइजर्स को केमिकल फर्टिलाइजर्स से हटके धीरे धीरे धीरे धीरे अगर ऑर्गेनिक या स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स या मिनरल बेस्ड फर्टिलाइजर्स की तरफ अगर हम मुड़ेंगे तो ये पैसे हम बचा सकते हैं, और इन पैसों से हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे रोड्स हो, चाहे हमारे यहां पर हॉस्पिटल्स का निर्माण करना, इसमें हमारे देश की सरकार हमारे अपने ही सिटीजन्स के लिए, नागरिक के लिए, देश के नागरिकों के लिए उपयोग कर सकती है। तो हम सब मिलकर के इस बात को हर किसान तक इसको पहुंचा। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
1: भारतीय बीज सहकारी समिति के प्रबंध निदेशक चेतन जोशी द्वारा सहकार बंधुओं के समक्ष 4वीं सामान्य निकाय की बैठक का वार्षिक एजेंडा प्रस्तुत किया गया। सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर एजेंडा पास करने की स्वीकृति प्रदान की।
2: एजेंडा मैं अब आम सभा के सामने रखना चाहूंगा। एजेंडा नंबर 1, पिछले साल 27/9/2025 को आयोजित तृतीय वार्षिक आम सभा के मिनट्स ऑफ मीटिंग की पुष्टि। मिनट्स के प्रति एजेंडा नोट के पृष्ठ संख्या 4 से 6 पर अंकित की गई है। मैं जनरल बॉडी के समक्ष पुष्टि एवं अध्यक्ष के हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत करता हूं। एजेंडा नंबर 2, जनरल बॉडी की पूर्व बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही को नोट करना। एजेंडा 6, पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति पर विचार करना एवं अनुमोदन प्रदान करना। कार्यवाही पूर्ण हो गई। संविधिक लेखा परीक्षक को दिनांक 1 अक्टूबर 2025 को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक वित्तीय विवरण तथा अनुपालन रिपोर्ट केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल करना। कार्यवाही पूर्ण। वित्तीय विवरण तथा अनुपालन रिपोर्ट 7 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल की गई। जनरल बॉडी के संज्ञान हेतु प्रस्तुत।
1: जेपी सिंह प्रमुख सहकारी सेवाओं के धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही नई दिल्ली के इफको सदन में आयोजित भारतीय बीज सहकारी समिति की 4वीं सामान्य निकाय की बैठक पर आधारित रेडियो रिपोर्ट संपन्न होती है। स्वर शशि कपूर, सहयोग प्रताप सिंह भाटी, संयोजन शिव नंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर।

0: सुनील भाई, अभी हमारे साथी सुन रहे थे भारतीय बीज सहकारी समिति की चौथी वार्षिक आम सभा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। स्वर था शशि कपूर का, संकलन था प्रताप सिंह भाटी और प्रस्तुति थी तुषार पारासर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।
1: बिल्कुल, और देखिए भाई, अब जानकारी के बाद बात मनोरंजन की आती है, तो जैसा कि हमने कहा था भाई, काफी और फरमाइश हमें मिली। आज के हमारे अगले कलाकार हैं भूलन त्यागी, और भूलन त्यागी को सुनने के लिए पहली फरमाइश मिली है ग्राम रोजनी जिला महो बुलंदखंड से, और इसको भेजने वाले हैं उदयभान पाल, जयंत पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल और उनका समस्त परिवार।
0: भूलन त्यागी को ही सुनना चाहते हैं बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिम्पल देवांगन और उनके परिवार के बाकी सदस्य।
1: भूलन त्यागी से उपदेश सुनना चाहते हैं पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और कैथल हरियाणा से मधु नायक।
0: अगली फरमाइश है हमारे पास बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ एमपी से विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
1: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है धनोरी तेली वाला उत्तराखंड से, इसको भेजने वाले निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू।
0: सुनील भाई, अगली फरमाइश आई है हमारे पास ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी की, और सुनना चाहते हैं भूलन त्यागी को।
1: तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं भूलन त्यागी से ये उपदेश।

0: तो सुमन भाई, अभी हमारे साथियों की पसंद पर हमने सुनवाया बुलंद त्यागी को, और जैसा कि पत्रोत्तर पर आधारित यह कार्यक्रम है, सुमन भाई, एक पत्र हमारे पास आया है और ये पत्र लिखते हैं माधव राम, और ये माधव राम जो है माजरा हरियाणा से ये लिखते हैं और कहते हैं कि मैं सब्जी वाली मटर की बिजाई करना चाहता हूं, और इसकी बिजाई का सही समय क्या है, साथ ही इसके लिए कौन सी भूमि अच्छी है, इसकी उन्नत किस्मों के बारे में जरूर बताएं, सिंचाई आदि की क्या व्यवस्था करें जिससे भरपूर उत्पादन मिले।
1: माधाराम जी, सब्जियों की बात करें तो देखिए, सब्जी वाली मटर पहले नंबर पर आती है और मटर की खेती करके किसान भाई अच्छी आमदनी ले सकते हैं। मटर की खेती के लिए जहां तक आपने सही समय की बात की है तो देखिए, 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक का समय सबसे उचित माना जाता है। इसके अलावा भाई देखिए, अगेती व पछेती मटर की खेती भी की जा सकती है। जहां तक जमीन की बात है तो देखिए भाई, अम्लीय भूमि को छोड़कर मटर हर प्रकार की भूमि में उगाई जा सकती है, लेकिन अगर दोमट मिट्टी मटर की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मटर की बुआई के लिए और बीज अंकुरण के लिए 22 डिग्री सेल्सियस तापमान उचित माना जाता है और फसल के विकास के लिए, बढ़ोतरी के लिए 10 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान उचित माना जाता है। जहां तक उन्नत किस्मों की बात है तो देखिये, सब्जी मटर की उन्नत किस्मों में पंत उपहार और जवाहर मटर 3, 3, 9, 3, 56, NP 29, अर्ली वेजर बोनीवाल और जवाहर P4, काशी उदय आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा अपने क्षेत्र के हिसाब से भाई भी आप उन्नत किस्म ले सकते हैं, और जहां से भी लें तो भाई उपचारित बीज लें, अगर बीज उपचारित ना हो तो उपचारित अवश्य कर लें। और सिंचाई की जहां तक बात है, देखिए प्रारंभ में मिट्टी की नमी के आधार पर 1-2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई फूल आने के समय और दूसरी सिंचाई भाई फलिया बनने के समय करनी चाहिए। और माधवराव जी, इस बात का भी ध्यान रखना है कि भाई सिंचाई हल्की करें और फसल में अधिक पानी न ठहरे। जहां तक कटाई और मंडाई की बात है तो मटर की फसल सामान्यतः भाई 130 से 50 दिनों में आपके बीज के हिसाब से पककर तैयार हो जाती है, और इसकी कटाई दराती से करना उचित माना जाता है तथा 5-7 दिन धूप में सुखाने के बाद इसकी मड़ाई करनी चाहिए। इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, समय पर बिजाई करेंगे, उन्नत किस्म लेंगे, उपचारित बीज लेंगे तो भाई आप ले पाएंगे मटर फसल से भरपूर।
0: बहुत बढ़िया जानकारी माधव राम भाई, आपको उम्मीद है कि ये जो जानकारी सुनील भाई ने आपको दी है, उम्मीद है कि आप इसका जो फायदा उठाकर आप अच्छे से मटर लगाएंगे, और उम्मीद रहेगी कि आपकी जो मटर की खेती है बहुत अच्छे से हो। साथ ही जैसे सुनील भाई, अभी हमारे जो अगले कलाकार हैं वो हैं विनोद कुमार, और उनके लिए जो हमारे पास जो फरमाइश आई है वो एक फरमाइश आई है जिला मुरादाबाद से, गांव दुलापुर उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिले सिद्धेश्वर नगर से, और इसको भेजने वाले पंजाब रामटेक, यशोधरा रामटेक और उनका समस्त परिवार।
0: एक और फरमाइश हमारे पास आई है जलालपुरा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम प्रजापति, आर्यन प्रजापति, लविश प्रजापति और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है जटवाड़ा गाजियाबाद से अक्षीस पाल अकेला की।
0: अगली फरमाइश आई है हमारे पास विनोद कुमार को सुनने के लिए पटेल नगर मलोट से, डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और उनके परिवार के सदस्य।
1: विनोद कुमार से उपदेश सुनना चाहते हैं गांव खोकरवाली श्रीगंगानगर से विनोद बारसा और रोशनी बारसा।
0: अगली फरमाइश हमारे पास आई है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश मिली है जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल और उनका समस्त परिवार। साथ ही फरमाइश मिली है कस्बा बराड़ जिला अम्बाला से रवि कुमार राहुल की।
0: और अगली फरमाइश हमारे पास आई है MLB रोड ग्वालियर से, और ये फरमाइश आई है सुरेश खुराना पप्पी की, किरण खुराना, लाभ्या आरव, मेगा साक्षी और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन पर प्रभजोत और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: अगली फरमाइश जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: और हमें फरमाइश मिली है भाई देखिए, मोहल्ला रूपनगर हनुमानगढ़ टाउन से रजाक मोहम्मद, सभी बेगम और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही फरमाइश मिली है गांव लोड़ा जिलापत से जगमोहन प्रजापति और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: एक और फरमाइश हमारे पास करावल नगर दिल्ली से आई है रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन जी और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिले सिरसा हरियाणा से सुभाष लूना।

0: उन समस्तों पर रिपेयर करते थे।
1: गांव अली मोहम्मद जिला सिरसा हरियाणा से सुभाष लुना उम्बती चिंटू स्वामी और उनके परिवार के सदस्य।
0: और ये फरमाइश हमें मिले गांव उगाला अम्बाला से इसको भेजने वाले राजेंद्र कुमार मलकीत और उनका समस्त परिवार।
1: एक फरमाइश मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन संदीप गुगलानी जगमोहन प्रजापति प्रतिभा शर्मा और उनके परिवार के सदस्यों की भी आई है।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिले गांव कुमार एड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर साइन हसन और उनके परिवार की तरफ से।
1: एक और फरमाइश हमारे पास एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा बबीता बोट और उनके परिवार के सदस्यों की हम तक पहुंची है।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है राजू टुटेजा खुशदिल उर्मिला और उनके समस्त परिवार की तरफ से गोविंदगढ़ मांझी वाला से।
1: एक और फरमाइश आई है ये आई है हमारे पास नरशाना भिवानी से जगदीश चंडालिया राजवीर चंडालिया सतीश चंडालिया और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: तो आइए आप सभी की पसंद सुनते हैं विनोद कुमार से ये उपदेश।

हेमंत भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर उपदेश सुना विनोद कुमार से। और देखिए, मौसम की बात करें तो भाई देखिए, मौसम विभाग के अनुसार जो आने वाले सप्ताह में धूप खिली रहेगी और बारिश की उम्मीद नहीं है। और साथ ही भाई देखिए, जो अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 32 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई जा रही है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ऐसे में देखिए भाई, जो भाई गेहूं की फसल लगाना चाहते हैं, अगेती बुआई करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। चना और मटर की बिजाई भी कर सकते हैं। और साथ ही सरसों की उन्नत किस्मों जैसे पूसा तारक, पूसा विजय, पूसा बोल्ड, करिश्मा की बुआई कर सकते हैं। और सब्जियों की बात करें तो भाई पालक, मेथी, धनिया, मूली, गाजर, चकुंदर और मटर की बुझाई कर सकते हैं। और

0: और गोभी वगैरह की फसलों में फूल गोभी पत्ता गोभी की बिजाई कर सकते हैं। और भाई देखिए खेत की गहराई ऐसे जुताई करें और सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाकर अच्छी तरह से मिलाएं। बुआई से पहले मिट्टी की नमी और उर्वरक क्षमता की जांच अवश्य कर लें।
1: बिल्कुल। और कल आप बता देते हैं कल आने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल 5:10 पर कार्यक्रम रहेगा लोक रंजनी, वहीं 6:30 का समय रहेगा ग्राम संसार का। बातचीत सुन सकेंगे, एक्जोटिक सब्जियां उगाने का सही तरीका, योजना रहेगी वोकल फॉर लोकल। 7:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम, बातचीत आपदा के समय फसल बीमा योजना, और योजना रहेगी फसल अवशेष प्रबंधन योजना।
0: तो भाई ये हमारा था आज का कार्यक्रम। आपको कैसा लगा, अपने सुझाव शिकायत अवश्य लिखें। और यदि आप अपना कोई जानकारी चाहते हैं तो भी अभी इस पते पर लिखें। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश कमरा नंबर 610 नव प्रसारण भवन आकाशवाणी नई दिल्ली 110001।
1: साथ ही हमारे साथी हमें मेल भी कर सकते हैं और मेल आईडी है feedback@fnh@gmail.com। जी हाँ, feedback@fnh@gmail.com।
0: इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिव नंदलाल। कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम राम, राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, या आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे चहल पहल।
1: आकाशवाणी से प्रस्तुत है चहल पहल। सुप्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका कलरव के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रिंट का कालजयी स्वरूप नामक एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रिंट की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए प्रसिद्ध साहित्यकार अशोक चक्रधर ने कहा,
2: आकाशवाणी से मेरा बड़ा पुराना और घनिष्ठ नाता रहा है। 1967 में मैं आकाशवाणी का ऑडिशनड आर्टिस्ट था, फिर युववाणी में आया और अब मेरी वाणी आपके सामने मुखरित हुआ चाहती है चहल पहल के लिए कलरव करते हुए। चहल पहल का और कलरव का तो संबंध है ना आपस में, तो ये कलरव मजे मजे में हमें उस इतिहास को जानना है जो प्रिंट मीडिया का इतिहास है। अब जो प्रिंट मीडिया है उसका जो स्वरूप है वो अधुनातन प्रविधियों को प्राप्त करते हुए इंटरनेट की दुनिया में आ गया है और अब संवाद संप्रेषण एक त्वरित गति से तत्काल घटित होने वाला काम है कि आपको तत्काल समाचार मिल जाएगा, तत्काल सूचना मिल जाएगी। तो वो जो प्रिंट मीडिया है अब तो दर्शनीय भी है, श्रवणीय भी है। तब केवल प्रिंट मीडिया था जिसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचते थे। तो भला हो एक संस्था का जो फोर्ट विलियम कॉलेज था जिसमें चार लेखक थे जो लिखा करते थे, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खान, सदा सुखलाल नियाजी, ये लोग थे, लिखते थे। अब छपने की प्रविधियां भी आने लगी और उदंत मारतंड नाम का एक अखबार प्रकाशित हुआ जो बहुत दिन नहीं चला। संकट क्या था कि छाप तो लिया, बांटेगा कौन, पोस्ट कैसे होगा, पोस्ट अगर करेंगे तो खर्चा कितना होगा, उतने खर्चे में तो अखबार निकाल लेंगे, भेजेंगे कैसे। तो उन समस्याओं से जूझता हुआ आज इस चरण तक आ गया है कि हम तत्काल, आपने यहाँ रिकॉर्ड किया मुझे और आप इसे इंटरनेट से अपने स्टूडियो को भेज सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। और तत्काल हमारे भारतवर्ष के सारे श्रोता हैं या कार में चलने वाले लोग हैं, अगर FM पे होगा तो वो तत्काल आपकी चहल पहल जान लेंगे कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। तो प्रिंट मीडिया हमारा अनेक चरणों में रहा है, वो एक वृहद इतिहास है। उदंत मारतंड से लेकर आज निकलने वाले जितने भी समाचार पत्र हिंदी के हैं, रायपुर में से तो रायपुर शहर ऐसा है वहाँ सर्वाधिक अखबार प्रकाशित होते हैं, सबके पास इंटरनेट है। गांव-गांव में हम AI से बात करने वाले लोगों को मिल सकते हैं। तो अब हम आगे से पीछे की ओर चलें कि पीछे से आगे की ओर चलें। संक्षेप में मैं बता दूं आपको कि ये जो प्रारंभिक चरण था ये भारतेंदु के आने के बाद में थोड़ा नवजागरण की ओर बढ़ा। फिर द्वेदी युग आया तो उन्होंने भाषा के परिमार्जन पर, व्याकरण निर्माण पर, भाषा के मानकीकरण पर काम किया और जो समाचार छपते थे कवि वचन सुधा में वो अब यहाँ परिनिष्ठित होने लगे। फिर उसके बाद आया जिसमें कि आजादी पानी थी, तो ऐसा भी होने लगा कि जो पत्रकार हैं उनको बंद भी कर दिया जाता था कि ये ऐसा समाचार क्यों आपने छाप दिया। फिर हमें मिल गई आजादी। आजादी के लिए ये था कि जो जनतंत्र हमने बनाया है इसको अक्षुण कैसे रखें। तो कुल मिला के आजादी के बाद हम धीरे धीरे अब आप समझ लीजिए

0: इसी तक आ गए जहाँ पत्रकारिता को बहुत तगड़ा ब्रेक लगा। फिर एक भूमंडलीकरण का दौर 90 के दशक में आया और फिर चीजें आवागमन करने लगी देश विदेश। कोई ऐसा नहीं रहा कि बाहर की प्रगति की छाया हमारे तक नहीं आई हो, हमने उसका प्रयोग न किया हो। खुला बाजार हो गया तो खुला अखबार हो गया, उसके पास साधन सुविधाएं आ गई। प्रिंट मीडिया में ऑफसेट का अवतरण हुआ कि कितनी ही लाखों में आप प्रतियां निकाल सकते हो। टेक्नोलॉजी बदली, फिर ये टेक्नोलॉजी फिर 10 साल बदली। सन 2020 में कंप्यूटर के क्षेत्र में, वर्तनी के क्षेत्र में और कीबोर्ड्स के क्षेत्र में हम कलम छोड़ बैठे और टाइपराइटर ले आए।
1: संगोष्ठी में आमंत्रित विशिष्ट अतिथि आलोक पुराणिक कहते हैं।
2: आलोक पुराणिक मेरा नाम है, व्यंग लेखक हूँ और आर्थिक पत्रकार हूँ। देखिए, प्रिंट यानी छपित शब्द, इसकी एक अपनी महत्ता है और इंटरनेट युग के बावजूद इसकी अपनी महत्ता है। इंटरनेट या दूसरे चैनल्स का जो माध्यमों का जो जोर है वो स्पीड पर है, सबसे तेज। विश्वसनीयता उनका मुख्य बिंदु नहीं है, लेकिन विश्वसनीयता ऑथेंटिसिटी वो आज भी हम तलाशते हैं प्रिंट में। वो किताबें हों, जैसे कि मैं अगर शोध कार्य कर रहा हूँ अम्बेडकर साहब के लेखन की, तो ऐसे एप्लीकेशन अवेलेबल हैं कि आपको एक विषय पर उनकी क्या राय थी आपको इंटरनेट पर दिखा दिया जाएगा। लेकिन विश्वसनीयता के लिए मुझे वो छपी किताबें रेफर करनी पड़ेंगी, तो वॉल्यूम 8 या वॉल्यूम 9 कहाँ है। तो अभी भी आप देखेंगे कि जिन मोबाइल एप्लीकेशंस की या टीवी चैनल्स की और माध्यमों की जो विश्वसनीयता है वो उनकी है जिनका ताल्लुक एक जमाने के प्रिंट के पब्लिकेशन से है। तो इंटरनेट कहें या नई तकनीक कहें, इसने गति तो बहुत दे दी है मगर विश्वसनीयता उनकी भयंकर है। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि शोध के कार्य से, गंभीर कार्य से, जहां मैं रेफरेंसेस दे रहे हैं, जहां मैं अपनी क्रेडिबिलिटी कायम करनी है, प्रिंट था, प्रिंट है और प्रिंट रहेगा।
1: कलरव पत्रिका के गौरवशाली 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रोशनी डालते हुए पत्रिका के संपादक अनिल तिवारी बताते हैं।
3: कलरव पत्रिका की शुरुआत आज से 20 साल पहले 6 सितंबर 2006 को की गई थी। हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर को इसे प्रकाशित किया गया था। तमाम उतार चढ़ाव के बाद पत्रिका लगातार 20 साल से निरंतर छप रही है। पत्रिका का प्रकाशन जब शुरू किया गया था तब यह तय किया गया था कि पत्रिका किसी एक मुद्दे पर केंद्रित करके निकाली जाएगी। प्रारंभ से लेके अब तक पत्रिका अपने लक्ष्य पर टिकी है और पाठकों के बीच अपनी जगह भी बनाई है। 20 साल पूरा होने पर यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब स्पीकर हॉल में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि रोज रोज बदलते इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के आ जाने और तकनीक के विकसित होने के कारण, आजकल तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भी जोर है, यह शंका जताई जा रही है कि प्रिंट धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन हम लोगों का मानना है कि प्रिंट काल यही है, प्रिंट पहले था, अब है और आगे भी रहेगा। इसी उद्देश्य को लेकर के यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है ताकि लोगों में एक जागरूकता बढ़े, लोग प्रिंट को लेकर के जागरूक हों, खुद भी पढ़ें, दूसरे को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें।
1: आयोजित संगोष्ठी में ज्योतिष विद्या पर आधारित ज्योतिष जीवन पथ का विज्ञान नामक एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। पुस्तक पर प्रकाश डालते हुए लेखक अरुण कुमार मिश्र ने कहा,
4: कलरव प्रकाशन के 20वें वर्ष पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हुई है, साथ ही हमारी रचना ज्योतिष जीवन पथ का विज्ञान इसका लोकार्पण है। ग्रंथ कलरव प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित हुआ है। इस ग्रंथ की रचना को 4 क्रम में किए हैं। प्रथम भाग ज्योतिष का वास्तविक स्वरूप 1 से 25 अध्याय में, जीवन की समस्याएं जो कि 26 से 50 अध्याय में, 51 अध्याय से 75 अध्याय तक जो तृतीय खंड है वह ज्योतिष के उपाय और व्यवहारिक पक्ष। ग्रंथ का चतुर्थ खंड है ज्योतिष से जीवन दर्शन। इसमें हमारा उद्देश्य यह है कि ग्रंथ का वास्तविक स्वरूप से आरंभ होकर जीवन की समस्याओं, उनके उपायों और व्यवहारिक पक्षों से गुजरते हुए जीवन दर्शन की एक क्रमबद्ध वैचारिक यात्रा प्रस्तुत करता हूं। हम चाहते हैं कि पाठक इस ग्रंथ को केवल एक ज्योतिषीय पुस्तक के रूप में न देखें बल्कि इसे भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के प्रश्नों और मानवीय विवेक के संबंध में विचार करने का एक प्रयास करते हुए पढ़ें। हमारे लिए ज्योतिष मनुष्य के पुरुषार्थ का विकल्प नहीं है। हम यह नहीं मानते हैं कि मनुष्य अपने जीवन के समस्त उत्तरदायित्व ग्रहों के ऊपर छोड़ दे, स्वयं को कर्म से विमुख कर दे, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्टतया कहे हैं, कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात मनुष्य का अधिकार कर्म करने में है, फल पर नहीं। उसे कर्म फल के प्रति आसक्ति में बदकर कर्म नहीं करना है, अकर्मण्यता से आसक्त नहीं होना चाहिए। हमारा ग्रंथ रचना का यही उद्देश्य है।

0: और इसी कार्यक्रम में अपने अनुभवों को साझा करते हुए एक अतिथि बताती हैं।
1: मेरा नाम स्वाति है, मैं खुद कवित्री हूँ, शिक्षिका भी हूँ, दिल्ली के सरकारी स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ। और कलरव के कार्यक्रम में आकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस तरह की ध्वनि करती हुई ये 20 साल के सफर को आगे बढ़ा रही है, और इस तरह से हमारे आपके बीच में प्रिंट मीडिया एक्चुअली जिस तरह से समाज में इंटरनेट एक तरह से सूचना की क्रांति लेकर के आई है, और लोग सोशल मीडिया पे इस तरह से आदत होती जा रही है, जिस तरह से हम हैबिचुएटेड होते जा रहे हैं, उसमें ऐसा लगता है कि अब किताबें पढ़ना, पत्रिकाएं पढ़ना थोड़ी कम हो गई है। उस बीच में प्रिंट मीडिया के भविष्य को लेकर के हम सब अगर थोड़ा सा सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बना करके अगर इस पे अगर हम ध्यान दें तो बहुत अच्छा भविष्य बन सकता है। इस कार्यक्रम में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है, और इसमें जितने मूर्धन्य और बड़े अच्छे साहित्यकार हैं, सब विद्वान हैं, विद्वज्जनों को सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है।
0: और इसी के साथ अब आज का चहल पहल का ये अंक संपन्न होता है। कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग रहा श्रीनाथ दीक्षित का, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चहल पहल, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़। शाम के 7:45 होने को हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: ये देख कैसे?
4: हैप्पी बर्थडे भाई।
3: देखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर
4: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
6: RBI कहता है
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
9: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
10: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत आज दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर मतदाताओं के नाम दर्ज करने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। दिल्ली जल बोर्ड ने उपभोक्ताओं के लिए EKYC अभियान शुरू किया। अभियान के अंतर्गत अधिकृत कर्मी घर घर जाकर उपभोक्ताओं की जानकारी को अपडेट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी मामले में जम्मू कश्मीर और राजस्थान से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद आज तालकटोरा स्टेडियम में 4th राज्य पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2026 में शामिल हुए। कहा, दिल्ली सरकार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध। और दिल्ली के कनॉट प्लेस में आज राहगीरी डे और संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। और अब समाचार विस्तार से। विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत आज राजधानी के विभिन्न स्थानों पर सभी मतदाताओं के नाम दर्ज करने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। ये शिविर जंगपुरा, नई दिल्ली, रोहतास नगर, आदर्श नगर, नजफगढ़, मादीपुर, बदरपुर, बादली, शाहदरा, संगम विहार, चांदनी चौक, ग्रेटर कैलाश, अम्बेडकर नगर, कस्तूरबा नगर, कालकाजी, घोंडा और कोंडली में लगाए गए। अगला विशेष शिविर कैंप 11 अक्टूबर को लगाया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम बदला है। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर होगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं के लिए EKYC अभियान शुरू किया गया है। जल बोर्ड ने बताया कि अभियान के अंतर्गत अधिकृत कर्मी घर घर जाकर उपभोक्ताओं की जानकारी को अपडेट कर रहे हैं। साथ ही बोर्ड ने उपभोक्ताओं को सतर्क करते हुए अपील की है

0: ईकेवाईसी के लिए आने वाले किसी व्यक्ति को पैसे या उपहार न दें। ऐसी मांग होने पर तुरंत 1916 हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। साथ ही ओटीपी, आधार या अन्य संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी किसी के भी साथ साझा न करें और जानकारी सिर्फ अधिकृत अधिकारी को ही दें। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने दिल्ली में सड़कों पर धूल और सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में 35 किलोमीटर लंबे 25 सड़क मार्गों की जांच की गई है। एक रिपोर्ट।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाली इन सड़कों पर जांच के दौरान 17 जगहों पर नियमों का उल्लंघन पाया गया। इनमें निर्माण और तोड़फोड़ से निकले मलबे का जमाव और सड़कों पर अधिक धूल शामिल है। आयोग ने लोक निर्माण विभाग और संबंधित एजेंसियों को धूल पर नियंत्रण के लिए प्राथमिकता के आधार पर सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि वायु प्रदूषण रोकने के उपायों के क्रियान्वयन की जांच के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऑपरेशन क्लीन एयर के अंतर्गत निरीक्षण जारी रहेगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा नवाचार की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। श्री राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 58वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।
3: So the significance of this great journey becomes even more apparent when we look at India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy and I am sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
0: श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कंपनी सुशासन को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय रहा है और इसने सतत विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा है कि भारत की निरंतर आर्थिक मजबूती, मजबूत कॉरपोरेट प्रदर्शन और निरंतर निवेश गतिविधियों के कारण अब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा देश के विकास अनुमानों में की गई बढ़ोतरी में परिलक्षित हो रही है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में श्री गर्ग ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति को बरकरार रखा है।
4: I think this growth rate, if you look at the last 3 years,
5: मुझे लगता है कि यह विकास दर काफी उत्साहजनक है। पिछले 3 वर्षों पर नजर डालें तो हम लगातार 7% से अधिक की दर से वृद्धि कर रहे हैं। पहली तिमाही के आंकड़ों में भी यह देखा जा सकता है जिसमें 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई है।
0: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी मामले में जम्मू कश्मीर और राजस्थान से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों के भेष में व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट किया और उससे 6 लाख रुपए ट्रांसफर कराए। मामले की जांच के बाद पुलिस ने यह पाया कि एक आरोपी के खाते में लगभग 50 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। साथ ही अलग अलग राज्यों की 10 राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP शिकायतों से जुड़े होने का भी पता चला। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध हथियार रखने के मामले में एक आरोपी को पालमगांव से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 2 देसी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और 1 एयर गन बरामद की गई है। मामले में आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने 3 महिला पत्रकारों की

0: जीवंत परंपरा है। उन्होंने बताया कि पिछले साल रामलीला आयोजनों के लिए सिंगल विंडो मंजूरी, समयबद्ध एनओसी और विभागों के बीच समन्वय की व्यवस्था की गई थी। इस साल इन व्यवस्थाओं को और प्रभावी बनाया जा रहा है ताकि रामलीला समितियों को आयोजन में सुविधा हो। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज हरेवली गौशाला के नवनिर्मित भवन और 45 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये सौर संयंत्र गौशाला को स्वच्छ ऊर्जा से जोड़ने की दिशा में एक सार्थक पहल है। गौ माता को सनातन संस्कृति की चेतना बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ सेवा और गौ संरक्षण की चिरंतन परंपरा को आगे बढ़ाना सांस्कृतिक दायित्व है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: यह आकाशवाणी है। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित सेवा सेतु शिविर का उद्घाटन किया। इस शिविर का उद्देश्य सीतापुरी क्षेत्र में नागरिकों को विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं और सुविधाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार जन सेवा को सरल, सुलभ और जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि सीतापुरी में आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने पहुंचकर विभिन्न सेवाओं का लाभ लिया। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद आज तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित चौथी दिल्ली राज्य पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2026 में शामिल हुए। उन्होंने पैरा खिलाड़ियों के जज्बे, उनकी प्रतिभा और खेल भावना की सराहना की। श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर अवसर और मजबूत मंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वो अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे अभियानों ने देश भर में दिल्ली में खेलों को लेकर लोगों को बहुत प्रोत्साहित किया है।
2: दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ दिल्ली के द्वारा आयोजित इस स्विमिंग कंपटीशन के लिए मैं एसोसिएशन के पदाधिकारियों को साधुवाद देता हूं और दिव्यांगता कोई बाधा नहीं है, ये अपने आप में हौसलों को टेस्ट करने का मौका है। दिल्ली सरकार इस एसोसिएशन को यथासंभव जो मदद कर सकती है जरूर करेंगे।
0: कनॉट प्लेस में आज राहगीरी डे और संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी और दिल्ली पुलिस के विशेष यातायात आयुक्त अजय चौधरी ने साइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिलिंग कार्यक्रम के लिए श्री सूद के साथ एशियाई खेल 2026 के पदक विजेता नवरेम रोशिबिना देवी, जय मीना और सुचिका तरियाल हुड्डा भी शामिल हुए।
3: इस दौरान कनॉट प्लेस का इनर सर्किल वाहन मुक्त रहा और दिल्ली वासियों ने साइकिलिंग, योग, जुम्बा, बैडमिंटन, क्रिकेट, लोक नृत्य और अन्य गतिविधियों में भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली, स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन तथा सार्वजनिक स्थलों में जनभागीदारी को बढ़ावा देना था। श्री सूद ने कहा कि राहगीरी केवल व्यक्तिगत फिटनेस की पहल नहीं बल्कि यह समग्र रूप से दिल्ली के स्वास्थ्य और कल्याण का उत्सव है। उन्होंने कहा कि साइकिलिंग पर्यावरण संरक्षण का एक सशक्त माध्यम है क्योंकि यह न केवल वायु प्रदूषण को कम करने में योगदान देती है बल्कि शारीरिक फिटनेस, स्वस्थ जीवन शैली को भी बढ़ावा देती है। श्री सूद ने बताया कि दिल्ली सरकार शहर भर में समर्पित साइकिल ट्रैक विकसित करने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अनुराग नामदेव।
0: राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने बताया कि कल आसमान साफ रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत आज दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर मतदान

0: मतदाताओं के नाम दर्ज करने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। दिल्ली जल बोर्ड ने उपभोक्ताओं के लिए EKYC अभियान शुरू किया। अभियान के अंतर्गत अधिकृत कर्मी घर घर जाकर उपभोक्ताओं की जानकारी को अपडेट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी मामले में जम्मू कश्मीर और राजस्थान से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद आज तालकटोरा स्टेडियम में 4th राज्य पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2026 में शामिल हुए। उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और दिल्ली के कनॉट प्लेस में आज राहगीरी डे और संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए हिंदी पखवाड़े के शुभ अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली और विश्व हिंदी परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आकाशवाणी दिल्ली के भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित कवि सम्मेलन के संपादित अंश। इस कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे हैं प्रसारण कर्मी श्री पार्थ सारथी टपलियाल।
2: उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जब हिंदी का पखवाड़ा मना रहे हैं तो इस पखवाड़े के दौरान विभिन्न कार्यालयों में अलग अलग गतिविधियां होती हैं। उन गतिविधियों में एक गतिविधि ये भी होती है कि हम कवि सम्मेलन या कवि गोष्ठी या कोई परिचर्चा करते हैं। आज के इस कवि सम्मेलन में हमारे साथ जो कवि हैं, तो अभिनव पहला नाम है और फिर जो है मनोज कुमार शुक्ल जी अभिदा है, फिर ऋचा बनर्जी है, देवी प्रसाद मिश्र जी हैं, सुबोध भारद्वाज जी हैं, दिनेश प्रसाद ध्यानी हैं, साथ में जो है रजनी सेन हैं, जो कि अपने अपने कविताएं यहाँ पर सुनाएंगे। अभिनव भारद्वाज एक संवेदनशील और विचारशील लेखक हैं, जिनके रचनाओं में आत्मा की गहराई, जीवन की नजाकत और समय की परतें झलकती हैं। कविता उनके लिए केवल एक संवाद नहीं है बल्कि एक पुल है। उनके शब्द उन भावनाओं को आवाज देते हैं जिन्हें अक्सर लोग खुद भी महसूस करते हैं पर कह नहीं पाते। खुशी की तलाश में जिंदगी गुजर गई, उम्र तो ढल गई मगर खुशी किधर गई। अभिनव भारद्वाज।
3: मैं अक्सर जीवन के ऊपर लिखता हूँ या फिर जो भी मुझे दिखता है रोजमर्रा की ऑब्जर्वेशंस के ऊपर, तो मैंने एक कविता लिखी हिंदी के ऊपर, उसी से शुरुआत करेंगे। हम हिंद देश के वासी, हिंदी हमारी भाषा है, चुनौतियों से लड़ती मानवता की उम्मीदों भरी एक आशा है। कहीं दिनकर के वीर रस से सुशोभित, कहीं सुमित्रा नंदन के प्रेम की अभिलाषा है। कभी हरिवंश ने दर्शन पिरोया, तो कभी गुलजार ने जीवन तराशा है। हम हिंद देश के वासी, हिंदी हमारी भाषा। युग बदले संसार भी बदला, बदली शब्दों की परिभाषा है, स्वरूप भी बदला इस हिंदी का, देखा समय का सारा तमाशा है। कल भी थी आज भी है ये, कल भी थी आज भी है ये, और कल भी यही आशा है। चाहे जितने रंग बदल ले, हिंदी भारत की परिभाषा है। हम सब हिंद देश के वासी, हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी हमारी भाषा है। अब वो खुशी ढूंढ रहे थे तो सुनिए। खुशी की तलाश में जिंदगी गुजर गई, उम्र तो ढल गई मगर खुशी किधर गई। रोज पहिए की तरह घूमता रहा था मैं, रोज पहिए की तरह घूमता रहा था मैं। एक शाम माँ ने पूछ लिया, बेटा हंसी किधर गई। रोटी कपड़ा और मकान, बस इतना सा फलसफा, बस शोर में उलझा रहा पर शांति किधर गई। वक्त की चाल में ढलता ही गया था मैं, वक्त की चाल में ढलता ही गया था मैं। इस झूठ के नकाब में वो असलियत किधर गई। इश्क भी रुसवा हुआ फिर किसी मोड़ पर, जिस्म तो रह गया मगर वो रूह किधर गई। जिंदगी की शाम को बस रात की है आरजू, आखिर सवाल यही रहा, ये जिंदगी किधर गई, ये जिंदगी किधर गई।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा था कि युवा दिल की धड़कने होती हैं, वो अलग धड़कती हैं। कविता के माध्यम से इस सफर को और आगे बढ़ाएंगे और मैं आमंत्रित करता हूं अब रजनी सेन को, जो कि एक अनुभवी एंकर, लेखिका, कवियत्री और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में उनकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं। आपको विभिन्न मीडिया संस्थानों के साथ 20 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है और हिंदी से इनका जबरदस्त प्रेम है। अपनी बात इस तरह से कहती हैं कि धीरे धीरे मन की सारी गांठें खोल रही हूँ, कानों

0: से नहीं हृदय से सुनना, कानों से नहीं हृदय से सुनना, मैं हिंदी में बोल रही हूँ। आपका स्वागत है रजनी से।
1: हिंदी मेरे और आपके हृदय की भाषा है, मातृभाषा है, हमारी राजभाषा है, लेकिन सबसे अधिक ये एक हृदय को दूसरे हृदय से जोड़ने की भाषा है। तो इसी भाषा को नमन करते हुए मैं यहाँ ये काव्य पाठ शुरू कर रही हूँ। धीरे धीरे मन की सारी गांठें खोल रही हूँ, कानों से नहीं हृदय से सुनना, मैं हिंदी में बोल रही हूँ। मेरे मन की पीड़ा अब जागेगी तेरे मन में, मेरे मन की पीड़ा अब जागेगी तेरे मन में, मेरे सुख के बेर भी अब टपकेंगे तेरे आंगन में। मेरे शब्दों का ताप चढ़ेगा तुझ पर हौले हौले, मेरे शब्दों का ताप चढ़ेगा तुझ पर हौले हौले, ढाई आखर प्रेम के गाकर मैं नब्ज टटोल रही हूँ, कानों से नहीं हृदय से सुनना, मैं हिंदी में बोल रही हूँ। शब्द मेरे हैं सपन सुनहरी रात की गोद से कूदे, शब्द मेरे हैं राग सुबह का सुनना आंखें मूंदे, शब्द मेरे हैं रजनी गंधा जीवन की रात में महके, शब्द मेरे हैं आस परिंदा जीवन की भोर में चहके। जीवन की कड़वाहट में थोड़ी मिसरी घोल रही हूँ, कानों से नहीं हृदय से सुनना, मैं हिंदी में बोल रही हूँ। शब्द झरे अब मोती बनकर यही मन की अभिलाषा है, इस भाषा का मौन भी सुंदर हिंदी मेरी प्रिय भाषा है। थाम के इस बोली की उंगली, थाम के इस बोली की उंगली, नए द्वार में खोल रही हूँ, कानों से नहीं हृदय से सुनना, मैं हिंदी में बोल रही हूँ, मैं हिंदी में बोल रही हूँ। दूसरी कविता कि लिखो की कहानी है बाट जोहती, लिखो की कहानी है बाट जोहती, कागज के आंचल पे टांको तो मोती, लिखो की अफसाने कब से कराते, बयां होना चाहती कविता है रोती। लिखो की गीतों का अंबर है सूना, लिखो की गीतों का अंबर है सूना, लिखो की सियाही का शोक है दूना, गीतों के धागों में सदियां पिरो दो, जला दो अंधेरे में आखर की ज्योति। लिखो लिखो भी की लोरी में घुल जाए मिसरी, लिखो भी की लोरी में घुल जाए मिसरी, लिखो भी की गुड़िया की माला है बिखरी, लिखो भी की चंदा को मामा है बनना, लिखो भी की सूनी है जादू की नगरी। लिखो लिखो भी की कान्हा की बंसी तो बाजे, पाती हो प्रेम की राधा जो बाचे, सीता का कोई संदेशा ले आए, कांस पे आखर के फूल खिलाए। लिखो लिखो ना कि पक गई है मौन की फसलें, लिखो ना कि पक गई है मौन की फसलें, लिखो ना कि सुनने को आतुर है नस्लें, लिखो कि अतीत है आधा अधूरा, भरो उनमें स्याही करो गीत पूरा। लिखो कि दहरी के भीतर की चीख, मांगे है तुमसे शब्दों की भीख, लिखो ना कि अंधियारे मन की पीड़ा, बनकर कविता तोड़ेगी लीक। लिखो कि किसी को हिम्मत सी आए, लिखो लिखो ना किसी को कि हिम्मत सी आए, टूटे हृदय में साहस सा आए, मिला क्या है तुमको यू मौन रहकर, लिखो अब की ऐसा की जग मुस्कुराए, लिखो अब की ऐसा की जग मुस्कुराए। एक अपनी अंतिम कविता कि क्या सोचा था मैंने कि जामुन के गुच्छों को तोड़कर, जामुन के गुच्छों को तोड़कर झट झोली में भरना था, और घुइया की ओस की बूंदे संदूकों में धरना था। जाने क्या क्या सोचा था और जाने क्या क्या करना था। झालर वाली फ्रॉक पहन के फूलों वाला ताज सजा, झालर वाली फ्रॉक पहन के फूलों वाला ताज सजा, वहीं पे अपना महल बनेगा जहाँ पे बहता झरना था। जाने क्या क्या सोचा था और जाने क्या क्या करना था। नन्ही तितली रानी बनकर गुड़हलपुर की सैर करूँ, नन्ही तितली रानी बनकर गुड़हलपुर की सैर करूँ, फूलों पर ही जीना था और फूलों पर ही मरना था। जाने क्या क्या सोचा था और जाने क्या क्या करना था। रेत की गीली चूनर से सीपों के तारे चुन चुन कर, बड़े जतन से उन तारों को जूड़े में अपने जड़ना था। जाने क्या क्या सोचा था और जाने क्या क्या करना था। बैठ के जिसकी डालों पर चिड़िया के घर में झांका था, बैठ के जिसकी डालों पर चिड़िया के घर में झांका था, उसके कटने से पहले उसको बाहों में भरना था। जाने क्या क्या सोचा था और जाने क्या क्या करना था।
0: वो कविता ही अर्थपूर्ण है जो कहीं ना कहीं भावों को जो है दिल तक पहुंचा दे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी कविता सुनाने के लिए। और अब सुबोध भारद्वाज, साहित्य में बचपन से ही रुचि रही है आपकी और 1983 से लगातार लिखते चले जा रहे हैं। दर्शन, आध्यात्म, प्रेम विरह, प्रकृति चित्रण और प्रकृति के मानवीकरण जैसे

0: विषयों पर आपके लेखन के प्रति बहुत रुचि है, लेकिन बात तो यह है कि दमकता रहा देश अपना यहाँ, आंधियां भी आई लाखों, मगर हौसलों ने न झुकना सीखा इधर, घाव इतिहास के वो भरते गए, देश को वो सदा चमकाते रहे। और अब चमकाने की बात आपकी है, यहाँ पर सुबोध भारद्वाज जी सादर आमंत्रित हैं।
1: देश की बात हुई है तो देश की बात करते हैं। भारत भू पर शीश धरूं और प्राणन को बलिदान करूं, मात पुकारे जबरन में तब हंस निज जीवन दान करूं, अरियद सीमा लांघ चले तब वज्र समान विधान करूं, भारत की जय बोलत ही तन मन धन सब कुर्बान करूं। अब जब भारत की बात है तो भारत तो मेरा देश है, तो मैं आज फिर उसकी वसीयत कर देता हूँ। कहते हैं ये भारत देश तो मेरा है, मैं इसकी वसीयत करता हूँ, खून पसीने से सींचा है, मैं तुमको विरासत करता हूँ, ये भारत देश तो मेरा है, मैं इसकी वसीयत करता हूँ। सीमा पर जो गिरते देखे वे फूल नहीं चिंगारी हैं, सीमा पर जो गिरते देखे फूल नहीं चिंगारी हैं, उनकी शहादत की लौ से ये दुनिया सारी हमारी है, उनके सपनों का बाग तुम्हें सिर माथे पर धरता हूँ, भारत देश तो मेरा है, मैं इसकी वसीयत करता हूँ। नदियों की तहजीब संभालो, नदियों की तहजीब संभालो, नदियाँ रूठ गई तो जानो, सूखे खेत और सूखे मन दोनों रोते और हारे हैं, गंगा जमुना के जल जैसा मैं सभी में घुलता हूँ, ये भारत देश तो मेरा है, मैं इसकी वसीयत करता हूँ। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से पहले मनुष्य बन जाना, कर्म धर्म से ऊपर है इसे दिल में उतार लेना, असली पूजा तो सेवा है बस इतना याद करवाता हूँ, ये भारत देश तो मेरा है, मैं इसकी वसीयत करता हूँ। भाषा बोली चाहे गलती हो या सुर में थोड़ा फर्क रहे, पर दिल में भारतवाद रहे तो शब्द हमेशा ठीक रहे, एकता को मत टूटने देना बस इतना आदेश मैं धरता हूँ, भारत देश तो मेरा है, मैं इसकी वसीयत करता हूँ। अंतिम संदेश लिख जाता हूँ शोषित की आवाज बनोगे, दबे कुचले के साथ रहकर अन्याय के विरुद्ध बोलोगे, इस भीगते आकाश के नीचे सबको अपना घर दोगे, तो समझो मैं अमर हूँ और मैं तुम पर नाज करता हूँ, ये भारत देश तो मेरा है, मैं इसकी वसीयत करता हूँ। माटी भारत माँ की देन है, माटी माँ की देन है ये, इसे न गिरवी कभी रखना, तिरंगे की लकीरें तीनों इंसानियत और कानून से रखना, सिर ऊंचा करके जा रहा हूँ, अभय सौंप कर जाता हूँ, ये भारत देश तो मेरा है, मैं इसकी वसीयत करता हूँ। हिंदी की पहचान बचाना, हिंदी का सम्मान करो, माँ के मुख की मधुर वाणी का सारे जग गुणगान करो, ज्ञान विज्ञान कला साहित्य में इसका मान बढ़ाओ तुम, अपने शब्दों के दीप जलाकर तमका तिमिर हटाओ तुम, जन जन की भाषा हिंदी को जन जन की आवाज करो, जन जन की भाषा हिंदी को जन जन की आवाज करो, नई पीढ़ियों के हाथों में इसका सुंदर ताज धरो, मातृभाषा के इस गौरव को मैं तुम पर अर्पित करता हूँ, ये भारत देश तो मेरा है, मैं इसकी वसीयत करता हूँ, ये भारत देश तो मेरा है, मैं इसकी वसीयत करता हूँ। अभी मेरी कविता की कुछ पंक्तियां बोली, वही कविता मैं भारत देश की है वो भी, कि दीप जलते रहे राह दिखाते रहे, दीप जलते रहे राह दिखाते रहे, और जगमग करता रहा कारवां, कदम बढ़ते रहे स्वप्न सजते रहे, और दमकता रहा देश अपना यहाँ, दीप जलते रहे सीमा पर वो दुश्मन भगाता रहा, सीमा पर वो दुश्मन भगाता रहा, वीर हर पल तिरंगा उठाता रहा, नींद आंखों से अपनी चुरा कर सदा शांति का गीत संगीत गाता रहा, हम सुरक्षित रहे और वो तपते रहे, गूंजती ही रही उनकी कुर्बानियां, कदम बढ़ते रहे स्वप्न सजते रहे, और दमकता रहा देश अपना यहाँ, खेतों में कोई पसीना बहाता रहा, ज्ञान का दीप कोई जलाता रहा, शब्द बनकर किसी की कलम से सदा शब्द बनकर किसी की कलम से सदा वो देश को सदा वो चमचमाता रहा। रंग थे तो अलग पर वो मन से जुड़े।

0: और खिलाता रहा एकता का जहां, कदम बढ़ते रहे स्वप्न सजते रहे और दमकता रहा देश अपना यहां। आंधियां भी आई लाखों मगर, आंधियां भी आई लाखों मगर, हौसलों ने न झुकना सीखा इधर, घाव इतिहास के वो भरते गए, घाव इतिहास के वो भरते गए, देश को वो सदा चमकाते गए। हम बढ़ाते कदम, स्वप्न सजते रहे और गाता रहा देश अपना यहाँ, कदम बढ़ते रहे स्वप्न सजते रहे और दमकता रहा देश अपना यहाँ। श्रम की धुन में कोई गाता रहा, नव सृजन का वो दीपक जलाता रहा, साहित्य और विज्ञान की राह पर भारत को जग में सजाता रहा। जोर अपनों की थामे बढ़ते कदम, टोर अपनों की थामे बढ़ते कदम, गूंजता ही रहा कर्म का गाना यहाँ, कदम बढ़ते रहे स्वप्न सजते रहे और दमकता रहा देश अपना यहाँ। अंतिम संदेश में, आने वाली पीढ़ी जब भी चले, आदर्श की मशालें वो लेकर चले, त्याग सेवा समर्पण की ही राह पर, देश की ही शान वो बढ़ाते चले। सूरज सा उजाला करे हर दिशा, गूंजता ही रहे देश सारे जहां, कदम बढ़ते रहे स्वप्न सजते रहे और चमकता रहा देश अपना यहां, दीप जलते रहे।
1: सुबोध भारद्वाज जी ने कई तरह के रंग यहां पर बिखेरे हैं और ये उनके उस अनुभव को बताता है कि हिंदी की सेवा जिस तरह से वे शब्दों के माध्यम से कर रहे हैं। हमारे उत्तर में जो अस्तुत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा, उत्तर में हिमालय है और हिमालय से आए हैं। स्वागत करेंगे हम दिनेश ध्यानी जी का। हिंदी गढ़वाली साहित्य संवर्धन के लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिले हुए हैं। पहाड़ों से मैदानों में उतरे, विस्तार दिया मैदानों को, और गंगा भी ऐसी ही उतरी थी, वह विश्व पदा कहलाई थी। कोसी को कोस रहे हैं, तुमने क्या कर डाला? अब आप ही बताए कि क्या कर डाला। आत्मा की कविता का एक अंश है ये, दिनेश ध्यानी।
2: जैसे कि आपने कहा कि कोसी तुमने क्या कर डाला, ये मेरी कविता कोसी को मैंने एक मानक रूप में लिया है कि बिहार में बहुत बाढ़ आती कोसी पे, लेकिन नेपाल से लेके उत्तराखंड से लेके तमाम पर्वतीय क्षेत्रों में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो एक वानगी आपके सामने रखता हूँ। कोसी तुमने क्या कर डाला, घर परिवार ढोर और डंगर सबको बनाने वाला, कोसी तुमने क्या कर डाला। कोसी किस खातिर ये तांडव, किस खातिर यह मौत का मंजर, हमने जो सपने देखे थे पल में उनको तुमने तोड़ा, तुमने अपना पथ क्यों मोड़ा। कोसी तुमने क्या कर डाला, घर परिवार ढोर और डंगर सबका बनाने वाला, मेहरू की बेटी के सपने, पीले हाथों की ये मेहंदी, कंगना और माथे की बिंदी, तैर रही है लाश में उसकी, उसके सपनों का क्या होगा, कोसी अपनों का क्या होगा। माँ से बेटा बहन से भाई, अपना घर और अपने पराये, पल में सबका किया बिछोहा, तनिक जरा तो सोचा होता, इस बस्ती का हाल क्या होगा, इस बस्ती का हाल क्या होगा। बस्ती में मानवता बस्ती, गांव खेत और सपने अपने, कल तक किलकारी थी घरों में, पल में सुना पन भर डाला, कोसी तुमने क्या कर डाला। पानी उमड़ा सर से ऊपर, डूबे घर और गांव नगर सब, भागे अपनी जान बचाने, घेर घेर कर सबको मारा, कोसी तुमने क्या कर डाला। लाशों का अंबार लगा है, सूनी बस्ती सड़ता पानी, कल तक घर थे है अब खंडहर, सबको पल में क्यों हर डाला, कोसी तुमने क्या कर डाला। कोसी तुम तो शांत नदी थी, तुमसे जीवन वन उपवन धन, बस्ती और नगरों में बहकर हमको तुम रसपान कराती, हमको जीवन सार बताती, फिर क्यों बनी तुम विष की हाला, कोसी तुमने क्या कर डाला। और अंत में है, सूनी आंखें बंजर बस्ती, पेड़ पे लटका बस्ता तक थी, कहाँ गए ये बस्ते वाले, कहाँ खो गए हैं घर वाले, कैसा तूने ये रथ डाला, कोसी तुमने क्या कर डाला। और एक रचना है, हर व्यक्ति का अपना नजरिया होता है, क्या क्या भाव आते हैं उसमें, एक वानगी देखिए। जिंदगी कभी धूप कभी छांव, गर्म रेत पर नंगे पांव, कभी शहर कभी गांव, अपनत्व की छांव, जिंदगी ओस पर चलने का एहसास, कभी आम कभी खास, कभी दूर कभी अपने अपनों के पास, जिंदगी

0: बंद किताब आधी अधूरी बात कभी घात अपघात कभी पूस की ठंडी रात जिंदगी अपनों की चाह बहुत कठिन राह कभी एकदम सपाट जैसे बोरी की टाट जिंदगी पथरीली जमीन पानी बिन मीन कभी धरती की माटी कलम और पाटी जिंदगी अधरों की प्यास उम्मीदों की बारात रेत पर लिखी इबादत कभी कभी अधूरी बात जिंदगी गांव की सौंधी महक धान की बालियों की चमक कभी मुंडेरों पर पसरी घास बुने भुट्टों की बास जिंदगी गांव का पनेरा स्कूली बस्ता पहाड़ी रास्ता बचपन की बात विष्णु से मुलाकात जिंदगी पहाड़ का जीवन पहाड़ों से लड़ती औरत ममता की मूरत पहाड़ की चमकाती सूरत जिंदगी बचपन की यादें माँ बाप के सपने कभी भाई बहन की कस्में रीत रिवाज और रस्में जिंदगी स्कूल के वो दिन घास पात खेती पाती हंसिया और दराती दूर प्रदेश से आती पाती बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कई बार शब्द चमत्कृत कर देते हैं और कई बार जो है कहने वाला अपनी बड़ी बात को भी छोटे शब्दों में बहुत बड़ा आकार दे जाते हैं। भारत का साहित्य और संस्कृति राम और कृष्ण के बिना हो नहीं सकता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण लीलामय। तो पलकों से मैं बुहार दूं पथ आज राम का दिल में जो बसे थे सामने आ गए मेरे राम आ गए। आइए डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल उपाख्य अविदा की रचना सुनते हैं

असुमन से मैं पखार दूं, इन चरणन को आज। असुमन से मैं पखार दूं, इन

0: धन्यवाद।
1: एक आपके सामने चित्र खींच रहा हूँ, एक सैनिक है जिसका विवाह हुआ है, विवाह के पश्चात वो जाता है, पत्नी से वापस कह के आता है कि मैं आऊंगा। जब उसका ताबूत आता है तो उस स्त्री की क्या मनोदशा होती है,

सिमट रह गया, कह गया अब कि वापस जो आऊंगा मैं। आन जाने नदी इस महान देश की, आन जाने नदी।

0: तो दो दृश्य हमने देखे हैं और दोनों का ही अलग अलग दृश्य है और अलग अलग भाव है और जो सीधे दिल तक उतरता है। तूफान के थम जाने के बाद कितना विचित्र लगता है सड़कों पर गुजरना, पत्तियों के ढेरों को रौंदते हुए चुपचाप चलना। उस सरसराहट को जब हम फील करते हैं तो हम जो है सीधे ऋचा बनर्जी साहिब को हम आमंत्रित करना चाहेंगे। ये बताना चाहते हैं कि वे विश्व हिंदी परिषद दिल्ली की अध्यक्ष हैं और आप माखनलाल चतुर्वेदी परिवार से जो है सभी साहित्यिक पत्रिकाओं में कविताएं, लेख, संस्मरण, कहानियां प्रकाशित हो चुके हैं और मुझे सामाजिक परिवेश और पारिवारिक संबंधों पर प्रेरित रहती हैं इनकी रचनाएं। मैं आमंत्रित करता हूं आप आए और अपनी रचना सुनाएं।
1: मेरी कविता का शीर्षक है प्रतिदान। एक तूफान के थम जाने के बाद कितना विचित्र लगता है सड़कों से गुजरना, पत्तियों के ढेरों को रोंगते हुए चुपचाप चलना, डरे हुए चेहरों पर उड़ती हुई मुस्कुराहट भापना और लड़खड़ाते पैरों से खोई हुई शक्ति को संचित करने का एहसास लिए मकानों के पास से गुजर जाना। क्या तुम बता सकते हो जब नब्ज की हरकत रुक जाती है तो परिवार और डॉक्टर को कैसा लगता है? अचानक भयानक बिल्ली का चूहा बन जाना या खौफनाक डाकू का वाल्मीकि में बदल जाना और लंबे वर्षों के बाद कारावास से मुक्त होना। अच्छा लगता है किसी परिचित का नाम लेकर पुकारना और उसे समीप पा जाना या जिंदगी के उस लबहे में जब सब व्यस्त होने का नाटक करते हैं स्वयं को बेकार की गुत्थियों में उलझाए रखना। ये कविता का नहीं सच का इतिहास है। ये मोड़ सकता है दिशाओं को, घृणा से जलते हुए दो व्यक्तियों को और कदाचित मोड़ सकता है रास्ते अपने आत्मीय होने के विश्वास में। ये विश्वास बहुत ढूंढने से भी कहीं मिलता है और मिलता है तो वह छीनता नहीं है कुछ अपितु वह तो देता है स्नेह और शक्ति। ये जो मैं आपको अपनी कविता पढ़ने जा रही हूँ खामोशी।

0: शीर्षक है, सारे शहर में ये कैसा अंधकार समाया। अनगिनत तस्वीरें दीवारों में समा गईं, सुर्खियों में लिपटी हुई शाम की हल्की धुंध सिमटती गई काली बजरी की सड़क पर, या उस आसमान की ओर जो नजर आता है इस बेरंग दीवार की ओट से। वह इस दरख्तों के खामोश शहर को नया नाम देना चाहती है और बदल देना चाहती है उस चीखती संस्कृति को जिसने रोज नए विभीषण पैदा किए और शताब्दियों से गूंजती हुई शंखनाद की ध्वनि को सड़कों पर बेतहाशा दौड़ती हुई स्त्रियों के विलाप में बदल दिया। कर दी गई मानवीय संवेदनाओं की हत्या और सरेआम बदल दिए नैतिक मूल्य। इस नए युग ने सब कुछ बदल दिया, ऋतुओं के रंग बदल गए, खड़े रहे देवदार के वृक्ष मौन और उदास, पूरा शहर एक बस्ती में बदल गया और बदल गया आत्मबोध। आओ हम इस बदली हुई संस्कृति को नया रूप दें और उतार फेंके मुरझाई हुई मुस्कानों की परत या बेरंग खामोश आकृति।
1: भावपूर्ण प्रस्तुति आपके सुनी है, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
2: कि शब्दों में जिनके उजियारा, भावों में संस्कार मिले, हर पंक्ति में जीवन दर्शन, हर छंद में सत्कार मिले, अर्जुन के सारथी की लेखनी का ये वैभव देखो, सूखे मन के आंगन को भी उनसे नव अभिसार मिले, उनसे नव अभिसार मिले। मैं बुला रहा हूँ पारसार्थी जी को। पारसार्थी जी,
1: भारद्वाज जी ने बात शब्द की है, तो शब्द शब्द में रस की धारा, शब्द शब्द में भाव अपार, मधुरिम स्वर में गूंजे हिंदी, हिंदी का अद्भुत शब्द भंडार, कहीं प्रेम की कोमल सरगम, कहीं वीरता की हुंकार, कहीं भक्ति की निर्मल गंगा और कहीं ज्ञान का अद्भुत सार, तत्सम तद्भव देशज शब्दों का है इसमें सुंदर संसार, लोक जीवन से लेकर वेदों तक मिलता इसका शब्द विस्तार, कबीर की साखी की सादगी, तुलसी का मंगल उद्गार, मीरा के पद सूर का सागर, शब्दों से शोभित भंडार, शब्द नहीं ये संस्कृति के दीपक, शब्द नहीं ये जीवन का सार, विश्व मंच पर नित्य प्रकाशित हिंदी का शब्द बृहद आकार। तो आपने शब्द से बात की थी, शब्द से ही हम बात अपने करें। उत्तंग शिखरों से उठे भारत का जयगान, दशों दिशाएं गा रही भारत का यश गान, माता पिता सम्मान का भारत में प्रतिमान, गुरु चरणों में ज्ञान है गुरु से बढ़ता मान, सत्य वचन जीवन बने सत्य रहे व्यवहार, मीठे वचन मन जीतते बढ़ता प्रेम अपार, अतिथि देवो भव रहा भारत का संस्कार, आगत का सम्मान ही ईश्वर का सत्कार, योग साधना ने दिया तन मन को विज्ञान, आयुर्वेद ने विश्व को जीवन का वरदान, भाषा वेश अनेक हैं फिर भी एक विधान, विविध रूप में एकता भारत की पहचान, नारी को सम्मान मिले घर का रखे ध्यान, माँ बहना बेटी बहू सबको भगवती जान, श्रम को पूजा मानकर कर्म बने संधान, श्रम से अर्जित द्रव्य ही नित्य बढ़ाई शान, ऋषि परंपरा की धरा संतों का सम्मान, त्याग तपस्या साधना बढ़े ब्रह्म का ज्ञान। एक कविता छोटी सी है, गिरना किसी इंसान का तब समझ आया जब आदमी सब हदें तोड़ आया, न नाते न रिश्ते फकत मैं ही मैं हूँ, न नाते न रिश्ते फकत मैं ही मैं हूँ, दुनिया है मुझसे मैं दुनिया से नहीं हूँ, ये पर्वत ये नदियाँ और मौसम भी बदले, दिलों की दुआएं और छलावे भी बदले, बदलता है मौसम इंसान बदला, बदला है बदले से इंसान बदला, बदलते जमाने ने रफ्तार बदली, बरगद बन गए तुम और रहे हम कली, निगाहें हैं बदली नजारा है बदला, निगाहें हैं बदली नजारा है बदला, धनवान होते ही एहसान बदला, गिरने से औकात का पता है चलता, कोई गिरता है ठोकर से कोई है फिसलता, कोई गिरता है आंखों से कोई दिल से उतरता, इंसानियत न होती तो कभी ना संभलता, गिरने में

0: ऊंचाई कोई मायने नहीं रखती, कोई निगाह से गिरता है ऊंचाई कहाँ रखती है। मर्यादा से गिरा कब कौन कहाँ उठता, गिरने की औकात का तब पता चलता। विश्व हिंदी परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवी प्रसाद जी मिश्र, भारतीय संस्कृति, राजभाषा हिंदी और भाषाओं के संवर्धन और विकास के प्रति आप जो है समर्पित व्यक्तित्व हैं, हिंदी को राष्ट्रभाषा और वैश्विक भाषा बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूं।
1: मेरी जो कविता है हिंदी भाषा हिंदुस्तान की, लिखी गई भारत की गौरव गाथा जिस भाषा में, वो भाषा हिंदी हिंदुस्तान की। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सीख दिया जिस भाषा ने, वह भाषा हिंदी हिंदुस्तान की। जन जन के अधरों में रहती मिठास जिस भाषा की, वह भाषा हिंदुस्तान की। सूर तुलसी कबीर की वाणी का संगम जिस भाषा में, वह भाषा हिंदी हिंदुस्तान की। आजादी का बिगुल बजा जिस भाषा में, वह भाषा हिंदी हिंदुस्तान की। भारत छोड़ो का जय घोष दिया जिस भाषा में, वो भाषा हिंदी हिंदुस्तान की। गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने की अजस्त्र ऊर्जा दिया जिस भाषा ने, वो भाषा हिंदी हिंदुस्तान की। अमर शहीदों को प्राणहूत की प्रेरणा दी जिस भाषा ने, वो भाषा हिंदी हिंदुस्तान की। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, आजादी का अलग जगह जिस भाषा में, वो भाषा हिंदी हिंदुस्तान की। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का बिगुल बजा जिस भाषा में, वो भाषा हिंदी हिंदुस्तान की। करो या मरो का बिगुल बजा जिस भाषा में, वो भाषा हिंदी हिंदुस्तान की। राष्ट्र गौरव छिपा जिस भाषा में, वो भाषा हिंदी हिंदुस्तान की। संस्कृत भाषा है जननी जिसकी, वो भाषा हिंदी हिंदुस्तान की।
0: विश्व हिंदी परिषद और आकाशवाणी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कवि सम्मेलन में भाग लेने वाले कवि थे श्री देवी प्रसाद मिश्र, श्रीमती ऋचा बनर्जी, डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल अभिदा, श्री दिनेश प्रसाद ध्यानी, श्री सुबोध कुमार भारद्वाज, श्रीमती रजनी सैनी, अभिनव भारद्वाज, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी पखवाड़े के शुभ अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली और विश्व हिंदी परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आकाशवाणी दिल्ली के भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित कवि सम्मेलन के संपादित अंश। इस कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे थे प्रसारण कर्मी श्री पार्थ सारथी थपलियाल।

मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है।

0: अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।
1: ये कहा

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और लीजिए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3 लाख मकान सौंपे। उन्होंने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग कर देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला रखी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। ईरान ने कहा, अमेरिका जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा, हुरमुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा। ईरान की मिसाइलों की रेंज बढ़ाने की भी योजना। और जापान में एशियाई खेल भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, 21 स्वर्ण पदक सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्य स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3600 करोड़ रुपए की लागत से 3 लाख घरों के लिए पहली किस्त जारी की। ये कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। इसके अंतर्गत 14 करोड़ रुपए की लागत से 177 घरों का निर्माण किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार राज्य भर में विकास को गति देने और इसे देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए मिलकर काम कर रही है।
3: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3 लाख मकान बनाने की पहली किस्त आंध्र प्रदेश के गरीबों को समर्पित की है। 100% मकान गरीबों को बनाने में आपके साथ भारत सरकार खड़ी है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में।

0: की कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी से ये मकान हम बनाने वाले हैं कि ये मकान 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो, उसमें लागत भी कम आए।
1: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि भारत की निरंतर आर्थिक मजबूती, मजबूत कॉरपोरेट प्रदर्शन और निरंतर निवेश गतिविधियों का असर अब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा देश के विकास अनुमानों में की गई बढ़ोतरी में परिलक्षित हो रहा है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव के दौरान श्री गर्ग ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बरकरार रखी है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव वित्तीय शक्तिकांत दास ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक मजबूती का मुख्य कारण वित्तीय क्षेत्र में सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि दिवालियापन और दिवालिया संहिता, बैंकों के पुनर्पूंजीकरण और रचनात्मक नियामक निगरानी जैसे सुधारों से भारत का वित्तीय क्षेत्र आर्थिक विकास का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के साथ स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है।
2: Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fossil five economy, we become the fourth largest economy and I am sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
1: नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि ये क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जैन परंपरा में क्षमा को आध्यात्मिक अनुशासन में परिवर्तित किया जाता है जो आज समूची मानवता के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, X@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थन्नट चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे 3 नए आपराधिक कानूनों के जरिए न्याय को आसान और सुलभ बनाया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शामिल हैं।
3: नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत 0 FIR, त्वरित जांच, सीमित स्थगन, फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह और वीडियोग्राफी तथा लैंगिक रूप से तटस्थ अपराध जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। नए आपराधिक

0: है। यदि 5 या उससे अधिक लोगों का समूह नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो समूह के प्रत्येक सदस्य को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड के साथ साथ जुर्माने की सजा हो सकती है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुनील कुमार ने कहा,
1: 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह ली है। इनका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को आधुनिक, तेज और तकनीक अनुकूल बनाना है। इनमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों पर विशेष प्रावधान है। साथ ही EFIR, डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही और फोरेंसिक जांच को बढ़ावा दिया गया है।
0: पहले 16 वर्ष और 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान था। अब इस प्रावधान में संशोधन किया गया है। वहीं अब 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के अपराध के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हुरमुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमरीका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आईची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2023 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा। खेलों के दौरान कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा।
3: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहाँ भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। वो 2014 में मैरीकॉम के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार लगातार 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 42 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांस्य पदक हासिल किया। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
2: भारत और कनाडा कल से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय और दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देश के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रूपये की लागत से बने 3 लाख मकान सौंपे। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ। मतदान मंगलवार

इस दौर में कई नई नई आवाजें आई, उनमें से पंकज उदास काफी मकबूल हुए। उनकी सिलेक्शन और गायकी में सादगी और कंपोजिशन में आम लोगों को अट्रैक्ट करने का एक अजीब सा

करूं। किसी एक शायर ने बहुत अच्छा शेर कहा है, बहुत खूबसूरत शेर कहा है कि आज की रात नहीं शिकवे और शिकायत के लिए, आज की रात नहीं शिकवे और शिकायत के लिए, आज की रात बहुत देर के बाद आई है। पहली गजल जो मैंने आपके सामने पेश की वो मेरा पहला एल्बम सन 1980 में आहट के नाम से आपके सामने मैंने पेश किया था, उस एल्बम से थी। और उसी जमाने में यानी 1980 में मुझे एक हसीन साथी मिला जो आज भी मेरा जीवन साथी है, आपके दरमियान और मेरे सामने बैठी हुई फरीदा जो मेरी शरीके हयात है, जो मेरे जीवन साथी है। और आज बहुत खुशी है कि आहट के 25 साल और मुझे आपसे मेरा जो तारुफ हुआ उसके भी 25 साल हुए। 1981 में मेरा एक दूसरा एल्बम आया जिसका उन्वान था मुकर्रर। मुकर्रर मेरे दिल के बहुत करीब है। मुकर्रर एक ऐसा एल्बम है कि जिससे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई। आज भी मुझे याद है कि जिस दिन मुकर्रर रिलीज हुआ मेरे वालिद मेरे पिता अस्पताल में थे, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा नासाज थी। मैं अस्पताल पहुंचा, मैंने उनको उस जमाने में आप जानते हैं लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड आते थे, मैंने लॉन्ग प्ले दिखाया उनको। उनको जब रिकॉर्ड दिखाया तो वो बहुत खुश हुए। मुझे ऐसा लगा कि उनकी आंखों में कोई एक चमक एक रोशनी सी मैंने महसूस की, मुझे नजर आई। मुझे ऐसा लगा कि उनको ये एहसास हुआ कि मेरा जो बेटा है उसने जिंदगी में कोई मकाम हासिल किया है। उसी रात एक कॉन्सर्ट था जिसका उन्वान खजाना के नाम से जो कॉन्सर्ट होता था, उस कॉन्सर्ट में मैं शरीक हुआ। मैं गा रहा था, उस वक्त मुझे ये खबर मिली कि वालिद साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो बड़ी कश्मकश थी, लेकिन मैंने वही किया जो हर कोई फनकार करता है और जिसको करना चाहिए। एज दे से इन इंग्लिश के द शो मस्ट गो ऑन, मैंने वही किया। और जब मैं अस्पताल पहुंचा वापस कॉन्सर्ट खत्म करके, तो वालिद साहब के साथ चंद लम्हे मुझे गुजारने का मौका मिला। तो ये गजल मैं मेरे पिता मेरे वालिद को समर्पित करना चाहूंगा, डेडिकेट करना चाहूंगा। जनाब कासिम जाफरी का कलाम है,

अभी अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक फनकार के तहत पंकज उदास की आवाज में गैर फिल्मी गजलें। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए अब सुनते हैं खबरें।

आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ। मैं अबे रहमान। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया के बदलते हुए मंजरनामे से उभरती हुई औसत दर्जे की ताकतों के माबेन ताउन के नए मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने अमन, मजबूत सप्लाई चेन और कनेक्टिविटी को उनका अहम एजेंडा करार दिया। दिल्ली तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3 लाख से ज्यादा मकानात सुपुर्द किए, जिनकी लागत 3,600 करोड़ रुपए है। उन्होंने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पहले आदमाइशी हाउसिंग प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। तमिलनाडु, पुडुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली सीटों और आसाम में 1-1 लोकसभा हलके के लिए जिमनी चुनाव की मुहिम अपने अख्ताम को पहुंची। वोटिंग मंगल को कराई जाएगी। ईरान ने कहा है कि अबनाए हुरमुज उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक अमरीका उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं कर देता। ईरान कह रहा है कि वो अपने मिसाइलों की किस्मों में इजाफा करेगा और एशियन गेम्स 2026 जापान में जगमगाती हुई एक तकरीब के दौरान अपने इख्तिताम को पहुंचे। भारत 85 तमगों के साथ चौथे मकाम पर रहा, उसने सोने के 21 तमगे हासिल किए। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि बैन अल-अक़वामी अमन और सलामती, सप्लाई चेन की मजबूती और कनेक्टिविटी वो अहम शोबे हैं जिनमें उभरती हुई और औसत दर्जे की ताकतें अहम रोल अदा कर सकती हैं। डॉक्टर जयशंकर आज नई दिल्ली में 62वीं म्यूनिख सलामती कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि दुनिया, इसका एजेंडा और इसकी जोग्राफियाई व सियासी मंजरनामा, ये सब अहम तब्दीलियों के मरहले से गुजर रहे हैं जिससे उभरती हुई और औसत दर्जे की ताकतों के माबेन ताउन का एक खातिरखा माहौल पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा है कि ये सब अमरीका की एक नई हैसियत कायम होने, चीन के तरक्की करने और बढ़ते हुए आलमी इन्हिसार के मुतरादिफ है। क्वाड को एक मिसाल के तौर पर पेश करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इससे औसत दर्जे की ताकतों के माबेन ताउन का इजहार होता है। वजीर खारजा ने जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, मसनू जहानत आए और खला से मुतालिक सलाहियतों को ऐसे अहम शोबे करार दिया जिनमें भारत यूरोपीय यूनियन ताउन में तोसी की जा सकती है। ज़राअत और किसानों की बहबूद निजदेही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज 3 लाख मकानात की पहली खेप आंध्र प्रदेश के सुपुर्द की, जिन पर 3,600 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये मकानात प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे मरहले के तहत आंध्र प्रदेश के सुपुर्द किए गए हैं। इसके लिए गुंटूर जिले में एक तकरीब मुनाकिद की गई। जनाब चौहान ने पहले आजमाइशी हाउसिंग प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा जिसमें 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके तहत 14 करोड़ रुपए की लागत से 177 मकानात तामीर किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू भी इस मौके पर मौजूद थे। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने इज्तिमा से खिताब करते हुए इस प्रोजेक्ट को देही मकानात को जदीद शक्ल दिए जाने की जानिब एक बड़ा कदम करार दिया। तमिलनाडु, पुडुचेरी और मगरबी बंगाल में आसाम असेंबली, 5 असेंबली हलकों और आसाम में 1 लोकसभा हलके के जिमनी चुनाव की मुहिम आज खत्म हो गई। मंगल को इन 6 सीटों के लिए पोलिंग कराई जाएगी और वोटों की गिनती जुमा को की जाएगी। असेंबली हलकों की पोलिंग तमिलनाडु में मधुरांतकम और धारापुरम, पुडुचेरी में थट्टन चावड़ी और मगरबी बंगाल में रेजीनगर, नीज नंदीग्राम में कराई जाएगी। आसाम में पोलिंग नागांव लोकसभा हलके में कराई जाएगी। ये असेंबली सीटें मौजूदा कानून साज अरकान की तरफ से इस्तीफा दिए जाने की वजह से खाली हो गई थी, जबकि नागांव लोकसभा सीट कांग्रेस रहनुमा प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी। इसी दौरान बीजेपी ने दिनेश आर्या को उत्तराखंड में राज्यसभा के 2 साल में 1 बार होने वाले आइंदा इंतखाब के लिए पार्टी उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। बीजेपी ने रुक्मिणी मलिक का नाम मगरबी बंगाल में राज्यसभा के जिमनी चुनाव के अपने उम्मीदवार के तौर पर पेश किया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड नीज मगरबी बंगाल में जिमनी पोलिंग इस महीने की

16 तारीख को कराई जाएगी। स्विट्जरलैंड के सदर गाय परमिलिन भारत के 3 रोजा दौरे के लिए कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। वो आलम से तही वफ्द सीनियर अफसरान और कारोबारी लीडरों के साथ मीटिंग करेंगे। वजीर आजम मोदी और सदर परमिलिन मुख्तलिफ मामला समेत दो तरफा ताउन में पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए बाहमी बातचीत करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अदादशुमार और प्रोग्राम पर अमल दरामद की वजारत की सेक्रेटरी सौरभ गर्ग ने आज कहा कि भारत की इक्तसादी मजबूती, जिसे कारपोरेट की जानिब से पुख्ता कारकर्दगी और मुस्तकिल सरमायाकारी की मदद हासिल है, अब मुख्तलिफ बैनुल अक्वामी एजेंसियों के भारत की तरक्की से मुतालिक तखमीनों से ऊंचाई की तरफ बढ़ती हुई जाहिर हो रही है। नई दिल्ली में क्वार्टरली इक्तसादी कन्क्लेव से अलग नामनिगारों से बात करते हुए जनाब गर्ग ने कहा कि भारतीय मईशत ने माली साल 2026-27 की पहले सहमाही में 7.8% शरह तरक्की हासिल करने के बाद अपनी रफ्तार बरकरार रखी। उन्होंने कहा कि कारपोरेट की मजबूत कारकर्दगी और प्राइवेट शोबे समेत लगातार असासा सरमायाकारी मुस्बत इक्तसादी रुझान के अहम तरीन अनासिर में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि भदोही जिला अब संत रविदास नगर भदोही के तौर पर जाना जाएगा। भदोही में मुनक़िदा आज एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि नए नाम से क़ुरून उस्ता के साधु संत और समाजी मुसलह संत रविदास की जिले से वाबस्तगी का इजहार होता है। इस मौके पर वजीर आला ने 1,340 करोड़ रूपये के 112 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। ईरान ने कहा है कि आपदा हुरमुज उस वक्त तक दोबारा नहीं खोली जाएगी जब तक अमरीका उन 7 शर्तों को पूरा नहीं कर देता जो जून के एक अबूरी मुआहदे में पेश की गई थी। ईरान के सरकारी मीडिया ने आज पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ के हवाले से बताया कि उन्होंने कहा है कि आबनाए हुरमुस को दोबारा खोलने पर ईरान का मौकिफ पूरी तरह वाजह और मुसम्मम है। उन्होंने कहा है कि आबनाए हुरमुस को दोबारा उस वक्त तक नहीं खोला जाएगा जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं हो जाएंगी। ये शर्तें इस्लामाबाद मुफाहमतनामे पर मबनी हैं। इसके अलावा ईरानी फौज के तर्जुमान मोहम्मद अकरामीनिया ने कहा है कि ईरान अमरीका के साथ अपनी हालिया जंग के बाद अपने मिसाइलों की तादाद में इजाफा करेगा। यह खबर रसा एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तनाजे से ईरान की यह जरूरत उजागर हो गई है कि वो तवील दूरी के मिसाइल तैयार करे और मुल्क ने इस तरह के इकदाम शुरू कर दिए हैं। भारत और कनाडा कल से ओटावा में जामे इक्तसादी शराकतदारी के अपने मुजव्वजा मुआहदे CEPA के बारे में 5वें दौर के मुदाकरात शुरू करेंगे, क्योंकि दोनों मुल्कों का मकसद इस तजारती मुआहदे को 2026 के अवाखिर तक मुकम्मल कर लेना है। दोनों मुल्कों की आला मुजाकरातों की क्यादत में ये 5 रोजा मुजाकरात इस महीने की 9 तारीख तक जारी रहेंगे। जापान के आइची नागोया में मुनाकिदा शानदार तकरीब के साथ एशियन गेम्स इख्तिताम पजीर हो गए। इस दौरान 43 खेलों के लिए 2 हफ्ते से ज्यादा जारी रहने वाले सनसनीखेज मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इख्तितामी प्रोग्राम में रवायती तौर पर खिलाड़ियों की परेड, एशियन गेम्स के परचम को उतारने और 2030 के मेजबान शहर दोहा को बाजाब्ता तौर पर मेजबानी सौंपने की तकरीब शामिल थी। इख्तितामी तकरीब में भारतीय तिरंगा उठाने का एजाज शूटिंग की उभरती हुई भारतीय खातून खिलाड़ी नीरो धांडा को हासिल हुआ। सोने के 2 तमगे जीतने वाली नीरो इस काबिल फख्र लम्हे में भारतीय दस्ते की क्यादत की। भारत मजमूई तमगों की फेहरिस्त में चीन, जापान और जनूबी कोरिया के बाद 4थे मुकाम पर रहा। भारतीय दस्ता 85 तमगों के साथ वतन वापस लौटा, जिनमें सोने के 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगे शामिल हैं। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि दुनिया के बदलते हुए मंजरनामे से उभरती हुई और औसत दर्जे की ताकतों के माबैन ताउन के नए मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने अमन, मजबूत सप्लाई चेन और कनेक्टिविटी को इनका अहम एजेंडा करार दिया। दिल्ली तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3 लाख से ज्यादा मकानात सुपुर्द किए, जिनकी लागत 3,600 करोड़ रुपए है। उन्होंने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पहले आदमाइशी हाउसिंग प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा। तमिलनाडु, पुडुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली सीटों और आसाम में 1 लोकसभा हलके के लिए जिमनी चुनाव की मुहिम अपने इख्तिताम को पहुंची। वोटिंग मंगल को कराई जाएगी। ईरान ने कहा है कि आबनाए हुरमुस उस वक्त तक बंद नहीं होगा
बंद रहेगा जब तक अमरीका उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं कर देता।

0: वायरल बुखार के हवाले से डॉक्टर राशन कुमार से कुछ जरूरी बातें।
1: हिस्बान सेहत इस प्रोग्राम के साथ हम एक बार फिर अपने तमाम सुनने वालों की खिदमत में इस प्रोग्राम का एक और शुमारा लेकर हाजिर हैं। और एक डॉक्टर साहब हमारे साथ यहां मौजूद हैं, तशरीफ फरमा है। लेकिन समीन, सबसे पहले आप जानना चाहेंगे कि हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू क्या है। आज एक ऐसी आम बीमारी के बारे में बात करेंगे जो अगर फौरी तौर पर जिस पर तवज्जो ना दी जाए तो वो कई बार हमें परेशानी में मुब्तला कर सकती है और हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। वायरल फीवर आपने सुना होगा, जैसे ही मौसम बदलने लगता है तो ये बुखार दर आता है हमारी जिंदगी में। कई बार हम पहचान ही नहीं पाते हैं और मामला ज्यादा बिगड़ जाता है। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर रोशन कुमार, सीजीएचएस से आप तशरीफ लाए हैं। डॉक्टर साहब, उर्दू सर्विस की जानिब से मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ।
2: खुश आमदीद, नमस्कार सारे श्रोताओं को।
1: जैसे आपने सुना डॉक्टर साहब कि आज हम वायरल फीवर के हवाले से आपसे बहुत कुछ जानना चाहेंगे, तो सबसे पहले शुरुआत इसी से करते हैं कि असल में ये जो वायरल बुखार हम सुनते हैं कि भाई वायरल हो गया है, ये असल में क्या है?
2: ये वायरल बुखार जो है ये बहुत बड़ा टर्म है, इसमें बहुत सारे ग्रुप के डिजीजेज आते हैं। हमें मेनली फोकस करना है कि ये बुखार क्या होता है, वायरल बुखार के सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें इसे कैसे पहचानना चाहिए और कैसे प्रिकॉशन लेना चाहिए। सबसे पहले हमें ये देखना है जो वायरल बुखार, ये कॉमन कोल्ड से लेकर आजकल कोविड-19 तक इसके बीच में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो एक कॉमन कोल्ड भी वायरल बुखार है और कोविड-19 जो आप लोग देख रहे हैं वो भी एक वायरल बुखार है। बाकी बीच में डेंगू है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं इसके कॉमन सिम्टम्स आपको बताता हूँ जो कि सबको जानना चाहिए। जो वायरल फीवर है, वायरल फीवर, फीवर तो सब में आना है, बुखार जो है उसके साथ क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। जो वायरल फीवर जो होता है उसके साथ आपको बॉडी के कोई भी पार्ट को इफेक्ट कर सकता है। जैसे वायरल फीवर है तो आपके सर से लेकर पैर तक कहीं भी इफेक्ट कर सकता है।
1: अच्छा।
2: चाहे वो ब्रेन हो, चाहे नेजल मिकोशा हो, रेस्पिरेटरी हो, फिर आपके पेट हो, कहीं भी इफेक्ट कर सकता है। लाइक डायरिया हो सकता है, ठीक है, वॉमिटिंग हो सकती है, मसल पेन हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, या फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो इंसेफेलाइटिस या दिमागी बुखार जिसको बोलते हैं वो हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम हमारे क्या क्या है, बुखार हो गया, उसके साथ वॉमिटिंग, डायरिया, इमोशंस, पेन, बॉडी पेन्स, हिमरेजिक फीवर लाइक एनी पट्टी की रैश इन डेंगू फीवर लाइक,
1: तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये सब
2: वायरल फीवर से एसोसिएटेड हो सकते हैं,
1: उससे जुड़े हुए हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अगर ये सिम्टम्स आने लगते हैं डॉक्टर साहब, तो एक आम इंसान के तौर पर हमें क्या करना चाहिए?
2: जनरली जो वायरल फीवर होते हैं या वायरल कोई भी डिजीजे हैं वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, वो खुद से ठीक हो जाते हैं। मोस्टली 2 to 3 days इनका टाइम पीरियड होता है, उस दौरान ये ठीक हो जाते हैं। लेकिन इन केस अगर इस दौरान आपको लगे कि उसके बाद भी सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉब्लम और ज्यादा क्रिटिकल हो रही है, तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है या फिर हम आगे क्या उनसे बात करनी है, टेस्ट क्या लेने वो करना है।
1: अच्छा, एक चीज ये भी देखने में आ रही है डॉक्टर साहब कि जो आजकल वायरल फीवर है, तो जैसे आपने बताया कि वो उनका एक वक्फा है कि उसमें वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, लेकिन बुखार चला जाता है लेकिन उसके बाद भी खांसी है, जुकाम है, ये काफी लंबे अरसे तक जारी रहता है,
2: तो वो उसका हमें लेना है, मेडिसिन लेना है।
1: मेडिसिन,
2: लेकिन अगर वो चीजें मान लो वायरल के साथ कभी कभी बैक्टीरियल कंपोनेंट भी हो जाता है, तो वो बैक्टीरियल कंपोनेंट की वजह से मान लो चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, तो उसको हमें देखना है, एक्सरे है, बहुत सारे टेस्ट करके हमें वो देखना पड़ेगा कि ये सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं। और जो अगर वायरल फीवर अगर मोर देन 14 डेज हो गया तो हमें और कुछ देखना पड़ेगा, और जांच करानी पड़ेगी कि और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो बैक्टीरियल कंपोनेंट है तो हमें बैक्टीरियल के लिए एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, उसका इलाज करना पड़ेगा।
1: अच्छा
2: जी,
1: तो ये हर तरह के वायरल में एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी?
2: नहीं, कोई जरूरत नहीं है, एंटीबायोटिक का हम लोग मोस्टली मिसयूज करते हैं, लेकिन हम अगर 2-3 दिन वेट कर लें तो वायरल फीवर का मेनली होता है कि हमारे जो बॉडी में इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, वो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और उससे वो ट्रीट होता है। इसलिए मोस्टली हम लोग क्या है उसमें बैक्टीरियल एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं, कुछ भी वायरल फीवर हुआ आप एंटीबायोटिक खा लो ठीक हो जाएगा, ऐसे चलेगा, लेकिन वो नहीं करना चाहिए, हमें कम से कम 2 to 3 days वेट करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, कई बार ये होता है कि बुखार एक पर्टिकुलर टाइम पर आता है, जैसे कुछ लोगों को सिर्फ रात होती है तो बुखार आने शुरू हुआ और सुबह में फिर वो ठीक हो जाते हैं, फिर अगले दिन फिर रात में, तो ये भी क्या वायरल ही है?
2: नहीं, हमें सबसे पहले जो फीवर की है वो चैटिंग करनी चाहिए। और जो फीवर का है बहुत सारी डिजीज में, जैसे मलेरिया में है, उसमें कुछ अलग

0: सिम्टम्स होते हैं फीवर के, वायरल डिजीज में कुछ अलग होते हैं, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि वायरल डिजीज जो है मल्टी सिस्टम फेलियर करता है, लेकिन मल्टी सिस्टम लाइक हर कोई भी म्यूकोसा बॉडी का डैमेज हो सकता है, लाइक नेजल म्यूकोसा, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रिक, कुछ भी, तो उसके साथ ये चीजें एसोसिएटेड हो सकती हैं, लूज मोशन, डायरिया, ऐसी चीजें होंगी, ठीक है ना। और बैक्टीरियल कंपोनेंट जो है वो लोकलाइज होता है, बैक्टीरियल या कुछ भी जो जो लंग्स है तो लंग्स को इफेक्ट करेगा, लेकिन वायरल पूरे सिस्टम को इफेक्ट करती है, इसलिए वो लोकलाइज नहीं होता है।
1: सामिन, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रोशन कुमार की जुबानी वायरल बुखार के हवाले से कुछ जरूरी बातें। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश है प्रोग्राम मार्केट मंत्रा।
2: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।
3: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking calls on mutual fund related queries. But do remember that we do not address fund specific queries. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. Along with Subodh Mishra, I am Sarabjit Kaur.
4: धन्यवाद सरबजीत, और नमस्कार श्रोताओं। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। ख्याल रखें कि हम किसी खास म्यूचुअल फंड से संबंधित आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। श्रोता, इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट स्नेहा सूरी। स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
5: जी धन्यवाद।
4: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर।
3: ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस रैप अप वीक ऑन मिक्स्ड नोट। ब्रेंट क्रूड राइजेस नियरली 5%। WTI क्रूड ड्रॉप्स अराउंड 1.5%। इन बुलियन मार्केट गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस डिक्लाइन लास्ट वीक एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टर्न नेट सेलर्स ऑफ इंडियन इक्विटीज इन सितंबर। इन्फ्यूज ओवर 9,600 करोड़ रुपीज थ्रू प्राइमरी मार्केट।
4: पिछले हफ्ते कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में मिला जुला रुख। ब्रेंट क्रूड लगभग 5% उछला, WTI क्रूड करीब 1.5% गिरा। सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में साप्ताहिक गिरावट। और सितंबर में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयरों की बिकवाली की। प्राथमिक बाजार में 9,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया।
3: And may we just once again remind our listeners that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Global crude oil prices displayed mixed trend this week. Brent crude December futures rose 4.9% to settle at $102.25 per barrel. West Texas intermediate crude November futures dropped 1.4% to end at $91.11 per barrel over the week. Now we go over live to our correspondent in Dubai, Manish Shiva, for updates on latest developments in West Asia.
6: The first thing in West Asia is that today the seven OPEC plus countries have decided to keep November production unchanged. That means we might not see any additional plant supply increase. Secondly, we've seen some kind of escalation on the Saudi Yemen Houthi front. Houthis had yesterday claimed that they attacked Riyadh, specifically the Aramco facility. While Saudi Arabia has rejected these claims, any potential danger to Saudi Arabia's oil infrastructure may put pressure on oil prices in the future. Hormuz continues to remain a big oil market risk. Even today, there was a report of an unidentified projectile hitting an oil tanker. Now, these geopolitical tensions is

0: being counterbalanced by G7's decision to coordinate the release of 100 million barrels of oil and refined products, which may help ease the pressure. But I think the volatility will remain for some days.
1: धन्यवाद मनीष शिवा. ये थे हमारे संवाददाता मनीष शिवा. और जैसा कि उन्होंने भी बताया, ओपेक प्लस के 7 देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने नवंबर में भी सितंबर 2026 वाले उत्पादन कोटे को जारी रखने का फैसला किया है. यह फैसला 4 अक्टूबर को हुई वर्चुअल बैठक में लिया गया. बैठक में इन देशों ने वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और भविष्य की संभावनाओं की समीक्षा की. संयुक्त मंत्री स्तरीय निगरानी समिति JMMC की 68वीं बैठक में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों और ऊर्जा ढांचे की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया गया. समिति ने चेतावनी दी कि हमला होने या आपूर्ति में रुकावट से बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है और ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है. तो ये बहुत सारी खबरें हैं दुनिया में अस्थिरता की, और देखते हैं कि अब कॉलर्स इंतजार कर रहे हैं हमारे. मेरठ से हरीश लाइन पर है. हरीश, स्वागत है आपका, सवाल पूछे.
2: जी सर, नमस्कार.
1: नमस्कार
2: सर, मैं कह रहा था मेरी म्यूचुअल फंड में 70,000 to 80,000 की सिप चल रही है और मेरा टाइम होराइजन 10 to 12 इयर्स है सर. तो क्या सही है सर मेरा म्यूचुअल फंड में? मैंने स्मॉल कैप में और मिड कैप में और फ्लेक्सी कैप में कर रखा है. एक SBI कॉन्ट्रा फंड ले रखा है सर.
3: हरीश जी, आपके टाइम होराइजन के अकॉर्डिंग और आपकी जो कैटेगरी सिलेक्शन है ये एकदम अलाइंड है. फोकस आपका इस पूरे समय में इस पे रहना चाहिए कि जो आपने मिड और स्मॉल कैप एलोकेशन रखी हुई है वो एलोकेशन एक सीमित तरीके से आपके कोर पोर्टफोलियो के अराउंड बनी रहती है. इसका मतलब ये हुआ कि आप उसमें अपना जो परसेंटेज ऑफ एक्सपोजर है पोर्टफोलियो का उसको 30% से ज्यादा ना रखें, क्योंकि लंबे समय में बहुत बेहतर रिटर्न देने की ये आपको मतलब संभावना देते हैं. बट होता क्या है कि इनमें जो एक रिस्क लेवल है वो भी काफी हाई रहता है. तो हमें अपना एक कोर पोर्टफोलियो रखना चाहिए, जैसे आपने बताया फ्लेक्सी कैप कॉन्ट्रा टाइप की कैटेगरी से, और मिड और स्मॉल कैप जो एक अग्रेसिव ग्रोथ आपके पोर्टफोलियो को प्रोवाइड करता है वो एक एक लिमिटेड तरीके से रहे तो ये काफी सही रहता है. आप एक चीज का ध्यान ये रख सकते हैं कि आप थोड़ा सा पोर्शन डेट एलोकेशन में रख सकते हैं ताकि आपकी एक एसेट एलोकेशन इस तरीके से बनी रहे. आप जब मार्केट में उतार चढ़ाव काफी ज्यादा हो रहे हो और आपको डर की संभावना लगती हो, तब जो आपकी डेट एलोकेशन होती है वो आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है. तो इसका आप ध्यान दीजिए, अपनी SIP इसको कंटिन्यू रखिए. कोई भी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट अगर होती है तो उससे अपने SIP को स्टॉप या पॉज ना करें.
1: जी, आपने जैसा भी बताया वो स्मॉल कैप क्या थी, ये कई जगह देखा है क्योंकि लोग अक्सर एजेंट्स के पास या एडवाइजर्स के थ्रू करते हैं, या कई बार लोग ऐसे सलाह दे रहे होते हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आ रहे होते हैं कि आप इसमें डाल लो, ये कर लो, वो कर लो. और कई बार पोर्टफोलियो देखते हैं कि आप 60-70% स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड हैं. थोड़े समय के लिए तो अच्छा लगता है, जैसे अभी पिछले कुछ महीने से शायद अच्छा लग रहा हो, किसी ने अभी 1-8 साल में किया होगा तो उसको बढ़त भी कुछ दिख रही होगी, लेकिन आगे के लिए क्या करें?
3: बिल्कुल, आगे के लिए बस ध्यान ये देना चाहिए, ये जो इतना अग्रेशन जब बिल्ड हो जाता है पोर्टफोलियो में तो मार्केट जब, आपने बिल्कुल सही कहा, मार्केट जब हरी दिख रही होती है तब ये वाले फंड्स आपको काफी अच्छे लग रहे होते हैं. इसे हम एक तरीके से परफॉर्मेंस चेजिंग कह देते हैं. वो ना करते हुए हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर आपका टेम्परमेंट है वैसा कि आप ये स्मॉल कैप मिड कैप की इतनी ज्यादा एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं तो आप बिल्कुल वो करिए. पर ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि
1: उठा सकते हैं
3: कितना रिस्क उठा सकते हैं, और रिस्क एक ही बार आपको दस्तक देती है अपने पोर्टफोलियो में, और जब देती है तब आपको रियलाइज होता है कि उतना ज्यादा सही नहीं था. इसीलिए जैसे अभी मैं हरीश जी को बता रही थी कि आप डेट एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में रखिए और अपना रिस्क आपको जानना चाहिए. यू नो, उससे पहले, इन्वेस्ट करने से पहले जो अपने एक पर्सनल सर्कमस्टांसेस होते हैं, अगर आपका गोल ही आपके 3 साल का गोल है तो आप मिड स्मॉल कैप छोड़िए, इक्विटी एज एन एसेट क्लास ही सूटेबल नहीं है. जैसे हरीश जी ने बोला उनका 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है. इस होराइजन के लिए आप स्मॉल कैप मिड कैप एलोकेशन चाहे तो 30-40 रख सकते हैं.
1: 30-40, उससे ज्यादा नहीं,
3: मतलब फॉर स्टार्टर्स आपको 20-25 तक ही उसको
1: 25 ही रखना.

0: रखना चाहिए
1: जी, नए निवेशकों के लिए जी।
0: वेल लेट्स आस्क आवर नेक्स्ट कॉलर व्हाट हिज क्वेश्चन इज। योगेश जी सवाल पूछे।
2: नमस्कार आप सभी को। मेरा एक सवाल है और एक क्लैरिफिकेशन है। जो मैंने पिछली बार सवाल पूछा था कि सारा कुछ हमारा डिजिटल एसेट में कन्वर्ट होता जा रहा है, इसका रीजन ये था कि रियल एस्टेट अपने आप में एक फिजिकल एसेट चार्ज होता था, बट उसको रीच की वजह से डिजिटाइज कर दिया गया है, तो वो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है। दूसरा जो मेरा आज का सवाल है वो ये है कि एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट को ऐड करने का सही तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि अगर हमारा पोर्टफोलियो ही 1 करोड़ से कम का है, अगर हम उसमें रियल एस्टेट ऐड करते हैं तो जैसे ही हम ऐड करेंगे वो एक मेजर पोर्शन खा जाएगा पोर्टफोलियो का अपने आप में, जबकि हमारा गोल है कि 20% से ज्यादा रियल एस्टेट एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। तो क्या अभी के लिए स्टार्टिंग के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि एक SIP करें एक मिड या लार्ज मिड के फंड में और उसको एक रियल एस्टेट का लेवल कर दें, फिलहाल के लिए मेंटल लेवल दे दें रियल एस्टेट, और जब वो अपने आप में एक अच्छा अमाउंट हो जाए तो फिर उसको हम रियल एस्टेट के लिए यूज करें।
0: योगेश जी मुझे आपका वो सवाल याद है जिसपे अभी आपने क्लैरिफिकेशन के लिए कहा। मैं एक्चुअली आपसे मैं आपको एक थॉट देना चाहूंगी कि जी रियल एस्टेट का जो एक्सपोजर की हम बात कर रहे हैं, अगर आप फिजिकल रियल एस्टेट आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब अगर आपके दिमाग में इस तरीके से है तो एज एन एसेट अगर आपको वो चाहिए तो आपको कोई भी कुछ भी कहे वो आपको लगेगा नहीं कि उसको उस नजरिए से देखना चाहिए। बट मेरा पर्सनल सुझाव ये है कि म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में आजकल इनडायरेक्ट मतलब नॉट फिजिकल तरीके से जो रियल एस्टेट का एक्सपोजर मिलता है वो इतना इजी हो चुका है, क्योंकि रियल एस्टेट के लिए आपने बिल्कुल सही कहा कि एक लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। आप कह रहे हैं अगर वो कैपिटल रिक्वायरमेंट बन भी जाती है तो आप फिर उसको फिजिकली खरीदें, बट बियॉन्ड दैट जैसे और दो प्रॉब्लम्स रहती हैं फिजिकल रियल एस्टेट में, विच इज इनलिक्विडिटी या फिर जो एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, जैसे आपने बोला कि एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में वो इमीडिएटली काफी बड़ा अमाउंट बन जाता है, तो ये कुछ रिस्क रहेंगे ही जो फिजिकल रियल एस्टेट की जहां तक बात है। फिर भी रियल एस्टेट का एक्सपोजर जो रीट्स के माध्यम से आजकल मिलता है, म्यूचुअल फंड्स में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स आपको एक रीट्स की एक एलोकेशन प्रोवाइड करते हैं, और उसमें क्योंकि वो एलोकेशन लिमिटेड रहती है, हाल फिलहाल में 2-3 नए फंड्स आए हैं विच आर फोकस्ड ऑन दिस, यू नो वो रीट्स ओरिएंटेड इंडेक्स फंड हो जाते हैं, तो क्योंकि वो पैसिव फंड्स हैं आपको इतना पता होता है कि वो कौन से रीट्स में इन्वेस्ट करेंगे, कौन सी लिस्टेड रियल एस्टेट हैं जिसका आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। तो मेरी नजर में आप उसको एक म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, अगर वो आपके पोर्टफोलियो में अगर आपको सहानुभूति देता है कि ये मुझे एक रियल एस्टेट का एक्सपोजर मिल रहा है। लिमिटेड रीट्स अवेलेबल हैं आज की तारीख में हमारी लिस्टेड मार्केट में, बट क्योंकि ये इंडेक्स है तो ये रियल एस्टेट कंपनीज का भी आपको एक्सपोजर देगा और रीट्स का भी जो आप चाह रहे हैं वो एक्सपोजर आपको मिल जाएगा।
1: जी रियल एस्टेट के लिए अब तक भारतीय निवेशकों में काफी प्यार बना हुआ है,
0: बिल्कुल
1: ये दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पर हम इतिहास में जाएं, अगर इसके थोड़े बैकग्राउंड में जाएं तो कई बार हम देखते हैं जो काफी जानकार एडवाइजर्स हैं, सलाहकार हैं, विद्वान हैं, इवन मुझे नियल फर्ग्यूसन की किताब पुरानी याद आ रही है, उसमें भी उन्होंने अमेरिका का जिक्र किया था, कैसे बाजार गिरा था और सब कुछ बर्बाद हुआ था, कई शहर खाली हो गए थे। तो रियल एस्टेट में रिस्क जब आता है और जब गिरावट होती है तो बुरी तरह से वो बर्बाद करके जाता है,
0: वो बात भी है। और जहां तक मतलब मैं योगेश जी की बात समझ पा रही हूँ, रियल एस्टेट के लिए आपका एक फेवरेटिज्म आ जाता है, क्योंकि वो जो फिजिकलिटी अटैच होती है कि ये
1: है हमारे पास
3: समथिंग पैल्पेबल,
0: एग्जैक्टली। तो कभी कभी वो एक मेरे नजरिए में नुकसानदेह बात हो जाती है, क्योंकि आजकल के टाइम्स में जहां पे बिल्डर्स आपको बेच देते हैं पर उसका जो उसको जो बनाना है, जो ग्रोथ है, कितना समय लग जाता है, आप समय इन्वेस्ट कर सकते हैं तो और भी बढ़िया बात है, वो आपको कंस्ट्रक्ट मिल जाता है, उसके बाद टेनेंट ढूंढना, मेंटेनेंस, ये सब काफी सारे एस्पेक्ट्स अटैच होते हैं, तो काफी सूझबूझ से ये मेरे हिसाब से सोचना चाहिए। इन द मीन टाइम क्योंकि डिजिटल एनवायरनमेंट में भी अब ये रीट ओरिएंटेड इंडेक्स फंड्स आ गए हैं, तो एक माध्यम वहां से भी खुल जाता है।
1: जी, और वैसे भी जब आप फिजिकल अगर प्रॉपर्टी रखते हैं तो उसको बेचना इतना आसान नहीं होता है। आज आप बेचना शुरू करें तो आपको शायद पूरा साल लग जाए उसे बेचने की कोशिश में। चलिए देखते हैं।

0: सोने और चांदी का क्या हाल रहा? पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी रही। अमेरिकी डॉलर की मजबूती और ट्रेजरी यील्ड में बढ़त से निवेशकों ने कम उत्साह दिखाया। एमसीएक्स में अक्टूबर अनुबंध का सोना वायदा पिछले हफ्ते 1.9% की गिरावट के साथ 1,50,390 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। दिसंबर अनुबंध की चांदी के वायदा भाव में 3.8% की कमी आई और ये 2,25,877 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। कॉमेक्स में अक्टूबर अनुबंध का सोना 3.7% गिरकर 4,162 $30 प्रति ट्रॉय आउंस पर रहा। दिसंबर अनुबंध की चांदी 6.8% लुढ़क कर $60.41 प्रति ट्रॉय आउंस पर आ गई।
1: एंड जय कुमार जॉइन्स अस फ्रॉम गाजियाबाद।
2: मार्केट बंद है, टीम को नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
2: मैम मेरा सवाल है कि कई सारे इंडेक्स फंड हैं और मुझे कौन से इंडेक्स फंड में बेटर रिटर्न मिल सकता है?
3: जी कुमार जी, जो आपका सवाल है कि पैसिव फंड्स में आपको बेहतर रिटर्न कैसे मिल सकता है, तो ये जानना हमारे लिए सबसे जरूरी है कि जो पैसिव फंड्स होते हैं वो अपने जो इंडेक्स जिस इंडेक्स को वो ट्रैक कर रहे होते हैं, मतलब कि जो वो इंडेक्स जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा होता है वो उन्हीं में ही इन्वेस्ट करेगा। तो वो आपको बस एक प्रॉमिस कर रहा होता है कि जो ये इंडेक्स रिटर्न देगा अपने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन से वही आपको मिलेगा। तो बेहतर रिटर्न का जो एक फंडा है वो पैसिव्स में उस तरीके से नहीं चलता है। पैसिव इन्वेस्टिंग मतलब इंडेक्स इन्वेस्टिंग हमें इस तरीके से देखनी चाहिए कि हम एक्टिव इन्वेस्टिंग नहीं चाह रहे हैं, मतलब कि हम एक फंड मैनेजर को ये अपने पैसे इस तरीके से नहीं देना चाह रहे हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग अपनी सूझबूझ के अकॉर्डिंग डिसीजन लें और आप उनकी सूझबूझ यूज करने के लिए उनको एक एक्सपेंस रेशियो के माध्यम से कुछ कॉस्ट देते हैं जो आपके प्राइस में से कट हो जाता है। पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट करने का तरीका आप ये देख सकते हैं कि आप निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स जो एक लार्ज कैप ओरिएंटेड पैसिव फंड्स होते हैं उनसे मोस्ट इन्वेस्टर्स का काम हो जाता है, बस वो आपको एक लार्ज कैप एक्सपोजर प्रोवाइड कर देते हैं। तो मतलब ये वो वाली कंपनीज हो जाती हैं जो वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, जिनके ग्रोथ पोटेंशियल बिल्कुल स्टेबल हैं। तो मेरे हिसाब से पैसिव्स का यूज केस इंडेक्स फंड्स का यूज केस वहां बनता है जहां पर लार्ज कैप एलोकेशन आप अपने पोर्टफोलियो के लिए ढूंढ रहे हैं।
0: जी अगले कॉलर हैं दिल्ली से दिनेश कुमार, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
4: नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से।
0: जी
4: मैडम, मैं म्यूचुअल फंड में हर वीक इन्वेस्ट करता हूँ एक लमसम करके और मेजर मेरा जो इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में वो निफ्टी में और हाइब्रिड में है करीब 25% और बाकी का 4-5 म्यूचुअल फंड में है। तो अभी मेरा पोर्टफोलियो स्लाइटली नेगेटिव में आ गया है लेकिन निफ्टी वाला जो फंड है वो हैवीली नेगेटिव में आ गया है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मुझे अभी मैं आगे कैवरेज तो करूंगा तो वो निफ्टी में ही करना चाहिए या हाइब्रिड या लार्ज एंड मिड कैप बाकी फंड्स में करना चाहिए ताकि उसका इम्पैक्ट मैक्सिमम पॉजिटिव हो? थैंक यू वेरी मच।
3: जी दिनेश जी, जो आपने तरीका बताया आपके इन्वेस्ट करने का, अगर वो तरीका आपको सूटेबल रहता है और आप जैसे कह रहे हैं कि आप हर वीक करते हैं और आप एवरेज आउट भी करते हैं, ये जो तरीका होता है इन्वेस्ट करने का ये काफी डिपेंडेंट होता है अपॉन यू नो जो पर्सन इसको कर पा रहा है। जैसे मैं एज एन इन्वेस्टर अपने बारे में ये सोचती हूँ कि मैं जो एक ये टाइमिंग वाला एलिमेंट होता है वो इतना कर नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मार्केट आगे क्या करेगी। अभी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज करा कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो स्लाइटली नेगेटिव हो रहा है बट निफ्टी जो कि एक पैसिव फंड है वो ज्यादा नेगेटिव हो रहा है। मेरी राय ये रहेगी कि अभी फिलहाल आपको कुछ नहीं करना चाहिए। ओवरऑल मार्केट का ही रुख कुछ ऐसा है कि आपको उतना ज्यादा रिटर्न या उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस मार्केट में दिख नहीं रही है टुवर्ड्स द अपसाइड। तो मेरी सलाह ये रहेगी आप अपना जो निवेश कर रहे हैं आप उसको जारी रखिए। इम्पॉर्टेंट बस यही रहेगा कि आगे जब आपको ये अमाउंट की जरूरत होती है और आपको अपना पोर्टफोलियो ऐसे दिख रहा है तभी आप कुछ चेंज करें, नहीं तो आपका पोर्टफोलियो लार्जली जो मैं समझ पा रही हूँ निफ्टी 50 और हाइब्रिड फंड से बना हुआ है तो ये एक काफी ऑलरेडी सूझबूझ से बनाया गया पोर्टफोलियो है।
0: जी देखें अब क्या हाल रहा एफपीआईज का। सितंबर में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार से पैसे निकाले जबकि जुलाई और अगस्त में उनका रुख सकारात्मक था।

0: lose over 9,600 crore rupees through primary market. And that's all in today's edition of Market Mantra. Goodbye.
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
0: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 PM.
2: सामने भी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मार्केट मंत्रा. ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है. पेश है आपका पसंदीदा फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामील इरशाद. सामीन की खिदमत में मेजबान मोहम्मद शाहरुख का आदाब. लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम की पहली पेशकश आप सबकी पसंद आप सबकी नजर. और जब तक ये नगमा आप सुने और अपनी फरमाइशें भी हमें आप लिख कर भेज सकते हैं उर्दू सर्विस ESD@gmail.com के जरिए.

महेश घुगे और नारायण देव घुगे महाराष्ट्र से सुनना चाहते हैं और उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, केशवदास उपाध्याय को झारखंड सुनना चाहते हैं। सबिया खानम, फरीदा बानो और रईसा खातून उदयपुर से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। आगा खान आगा, ऊत खान और अमल खान गंजनवारा से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव बेंगलुरु से सुनना चाहते हैं और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। बांदा उत्तर प्रदेश से फई मंसूरी फातिमा मंसूरी, अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी और भाव्या कुमारी, निवेश कुमार सुनना चाहते हैं बोनपट्टी मधुबनी बिहार से। नर्मदा पार्क मंगलवेदा से मास्टर सलीम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और मोहम्मद यासीन रंजन, सायमन नवाज, हसन नवाज गिरडी झारखंड से सुनना चाहते हैं।

अभी आप सुन रहे थे चोरी चोरी फिल्म से ये नगमा लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में, जिसकी तर्ज बनाई थी शंकर जयकिशन ने और लफ्जों से सजाया था हसरत जयपुरी ने। हाजिर है इस प्रोग्राम की अगली पेशकश किशोर कुमार की आवाज में, जिसको सुनना चाहा है जाकिर मुल्लानी।

अपने अख्तिताम को पहुंची। वोटिंग मंगल को कराई जाएगी। ईरान ने कहा है कि आबनाए हुरमुज उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक अमरीका उसकी सात शर्तें पूरी नहीं कर देता। ईरान का इरादा है कि वह अपने मिसाइलों की किस्मों में इजाफा करेगा। और एशियन गेम्स 2026 जापान में जगमगाती हुई एक तकरीब के दौरान अपने अख्तिताम को पहुंचे। भारत 85 तमगों के साथ चौथे मकाम पर रहा। उसने सोने के 21 तमगे हासिल किए। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि बैन अल-अक़वामी अमन व सलामती, सप्लाई चेन की मजबूती और कनेक्टिविटी वो अहम शोबे हैं जिनमें उभरती हुई और औसत दर्जे की ताकतें अहम रोल अदा कर सकती हैं। डॉक्टर जयशंकर आज नई दिल्ली में 62वें म्यूनिख सलामती कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुनिया, इसका एजेंडा और इसका जोग्राफियाई व सियासी मंजरनामा, ये सब अहम तब्दीलियों के मरहले से गुजर रहे हैं जिससे उभरती हुई और औसत दर्जे की ताकतों के माबैन ताउन का एक खातिर ख्वाह माहौल पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह सब अमरीका की एक नई हैसियत कायम होने, चीन के तरक्की करने और बढ़ते हुए आलमी इन्हिसार के मुतरादिफ है। क्वाड को एक मिसाल के तौर पर पेश करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इससे औसत दर्जे की ताकतों के माबैन ताउन का इजहार होता है। वजीर खारजा ने जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, मस्नूई जहानत, एआई और खला से मुतालिक सलाहियतों को ऐसे अहम शोबे करार दिया जिनमें भारत यूरोपीय यूनियन ताउन में तौसी की जा सकती है। ज़राअत और किसानों की बहबूद नीज देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज 3 लाख मकानात की पहली खेप आंध्र प्रदेश के सुपुर्द की जिनमें 3,600 करोड़ रूपये की लागत आएगी। ये मकानात प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे मरहले के तहत आंध्र प्रदेश के सुपुर्द किए गए हैं। इसके लिए गुंटूर जिले में एक तकरीब मुनक्किद की गई। जनाब चौहान ने पहले आजमाइशी हाउसिंग प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा जिनमें 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके तहत 14 करोड़ रूपये की लागत से 177 मकानात तामीर किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू भी इस मौके पर मौजूद थे। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने इज्तिमा से खिताब करते हुए इस प्रोजेक्ट को देही मकानात को जदीद शक्ल दिए जाने की जानिब एक बड़ा कदम करार दिया। तमिलनाडु, पुडुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली हलकों और असम में 1 लोकसभा हल्के के जमीनी चुनाव की मुहिम आज खत्म हो गई। मंगल को इन 6 सीटों के लिए पोलिंग कराई जाएगी और वोटों की गिनती जुमे को की जाएगी। असेंबली हलकों की पोलिंग तमिलनाडु में मदुरंतकम और धारापुरम, पुडुचेरी में थट्टन चावडी और मगरबी बंगाल में रेजीनगर नीज नंदीग्राम में कराई जाएगी। आसाम में पोलिंग नागांव लोकसभा हलके में कराई जाएगी। ये असेंबली सीटें मौजूदा कानून साज अरकान की तरफ से इस्तीफा दिए जाने की वजह से खाली हुई थी जबकि नागांव लोकसभा सीट कांग्रेस रहनुमा प्रद्युत बोर्दोलोई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। इस दौरान बीजेपी ने दिनेश आर्या को उत्तराखंड में राज्यसभा के 2 साल में एक बार होने वाले आइंदा इंतखाब के लिए पार्टी उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। बीजेपी ने रुक्मणी मलिक का नाम मगरबी बंगाल में राज्यसभा के जिमनी चुनाव के अपने उम्मीदवार के तौर पर पेश किया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड निज मगरबी बंगाल में जिमनी पोलिंग इस महीने की 16 तारीख को कराई जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। स्विट्जरलैंड के सदर गाय पारमेलिन भारत के 3 रोजा दौरे के लिए कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। वो आला सतही वफद, सीनियर अफसरान और कारोबारी लीडरों के साथ मीटिंग करेंगे। वजीर आजम मोदी और सदर पारमेलिन मुख्तलिफ मामलात समेत दोतरफा ताउन में पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए बाहमी बातचीत करेंगे। आदादशुमार और प्रोग्राम पर अमल दरामद की वजारत के सेक्रेटरी सौरभ गर्ग ने आज कहा कि भारत की इकतसादी मजबूती, जिसे कॉरपोरेट की जानिब से पुख्ता कारकर्दगी और मुस्तकिल सरमायाकारी की मदद हासिल है, अब मुख्तलिफ बैन अल-अक़वामी एजेंसियों के भारत की तरक्की से मुतालिक तखमीनों से ऊंचाई की तरफ बढ़ती हुई जाहिर हो रही है। नई दिल्ली में कौटिल्या इकतसादी कन्क्लेव से अलग नामा निगारों से बात करते हुए जनाब गर्ग ने कहा कि भारतीय मईशत ने माली साल 2026-27 की पहली सहमाही में 7.8% शरह तरक्की हासिल करने के बाद अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट की मजबूत कारकर्दगी, प्राइवेट शोबे समेत लगातार असासा सरमायाकारी,

अभी आप सुन रहे थे साहिब बीबी और गुलाम फिल्म से नगमा गीता दत्त की आवाज में, जिसकी तर्ज बनाई थी हेमंत कुमार ने और बोल थे शकील बदायूनी के। हाजिर है इस प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसको सुनना चाहा है राशिद हुसैन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी ने जैन मंदिर कुरावली से, और सुनना चाहते हैं शिव प्रसाद देवदास, मोहित कुमार देवदास, कुमारी युवती देवदास छत्तीसगढ़ से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं सुहेल खान दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं अहमद भाई फूलवाले दुखना सदफ और जूही इकबाल करजत मुंबई से, काबासेड़ा नई दिल्ली से आमना नसरीन बागवान और आसमा परी और राबिया सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और सुनना चाहते हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा रुड़की कैंट से।

अभी अभी आप सुन रहे थे ब्रह्मचारी फिल्म से नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसकी तर्ज बनाई थी शंकर जयकिशन ने और बोल थे हसरत जयपुरी के। हाजिर है इस प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में, जिसको सुनना चाहा है पंजाब रामटेके हजर रामटेके श्रव्य रामटेके ने सिद्धेश्वर यवतमाल से, और सुनना चाहते हैं राज शर्मा मीना शर्मा निवान शर्मा मलोट पंजाब से, और गुरविंदर सिंह पांधा मनविंदर सिंह पांधा जी एस रामगढ़िया कलोनी करनाल फ्रेंड्स कलोनी से सुनना चाहते हैं। मनोज सेन और पूनम सेन खंडवा से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और शाहजी भोट के नंदा भोट के उत्तम जमधाड़े महाराष्ट्र से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। गुलनाज सलमा हाशमी सैयद आलम हाशमी और मोहम्मद आलम हाशमी अजमेर से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं।

सामिन, अभी आप सुन रहे थे ये नगमा अनुपमा फिल्म से, जिसको मौसिकी से सजाया था हेमंत कुमार ने, और नगमा निगार थे कैफी आजमी। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश आशा भोसले की आवाज में, जिसको सुनना चाहा है हिना साबरी, आयज अल इमाम और मोहम्मद हसन इमाम ने, और सुनना चाहते हैं नासिर शेख, नाजिर नाजिर शहीद श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, और सुनने के ख्वाहिशमंद देवेंद्र भटकर, सुचिला भटकर नागपुर से, और सुनना चाहते हैं तखतपुर छत्तीसगढ़ से मिशुलाल मीराकर्मा, मीरा देवी विश्वकर्मा और चेतन विश्वकर्मा, मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमास, बीबी फातिमा शेख, रेलवे रोड गंगनवारा से सुनना चाहते हैं, और गंगाधर यमेकर, प्रमोद यमेकर, प्रदीप यमेकर महाराष्ट्र से सुनना चाहते हैं, श्याम कीटे, वंदना कीटे, कार्तिक कीटे महाराष्ट्र से सुनना चाहते हैं, और आजाद अली अनवर, रिजवान परवीन, अब्दुल्ला आजाद बहादुरगंज गाजीपुर से सुनना चाहते हैं, सूरज कुमार, अजय कुमार और संजू सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आगरा से, और सुनना चाहते हैं रेशमा अंसारी, निशा और सईद अंसारी नई दिल्ली से, रमेश तारेकर, वंदना तारेकर, भारती ठाकुर मलकापुर से सुनना चाहते हैं।

अभी आप सुन रहे थे जब प्यार किसी से होता है फिल्म से ये नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसकी तर्ज बनाई थी शंकर जयकिशन ने, बोल थे असरत जयपुरी के। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजों में, जिसको सुना चाहे राजधानी रायपुर से नीलो मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार और अहले खाना ने। सुनना चाहते हैं निरंजन सिंह, यशमीत यशु और सौम्या सिंह सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, और सुनना चाहते हैं सुनीता शिंदे, प्रशांत शिंदे कृष्णा घोट के पंढरपुर सिटी से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, फजलिका पंजाब से, और मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश उत्तर प्रदेश से सुनना चाहते हैं, अनुपम कुमारी, अपूर्व सिंह, राकेश कुमार सुनना चाहते हैं जमशेदपुर से, आनंद जोशी, तनुज जोशी, ध्रुवी जोशी खंडवा से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं।

तमन्ना भी आप सुन रहे थे वो कौन थी फिल्म से ये नगमा महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजों में, जिसकी तर्ज बनाई थी मदन मोहन ने और बोल थे राजा मेहदी अली खान के। और इस नगमे के साथ हाजिर है प्रोग्राम की आखिरी पेशकश कनेरा मोहल्ला पटियाला जुन्ना चाय मुकेश बत्ता नीलम बत्ता निहारिका मंच बत्ता ने और अनिल कोले छाया कोले प्रियांश कोले महाराष्ट्र सुनना चाहते हैं और सहारनपुर से सुनना चाहते हैं जोंदे केसरो रोजी केसरो अजीज भाई मतीन भाई शेख चंद फारूक तेलंगाना से सुनना चाहते हैं और वली अंसारी आसमान अंसारी मोहम्मद सुल्तान अंसारी पुरातलाब डुमराव बिहार से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और सुनना चाहते हैं गरिमा शर्मा छत्तीसगढ़ से।

अमीन अभी आप सुन रहे थे ठोकर फिल्म से मजाज की नज्म आवारा तलब महमूद की आवाज में। इसी के साथ तामिल इरशाद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए अब सुनते हैं कव्वालियां असलम साबरी और कादिर नियाज कव्वाल की आवाज में।

0: और कारोबारी लीडरों के साथ मीटिंग करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और सदर पारमेलिन मुख्तलिफ मामलात समेत दो तरफा ताउन में पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए बाहमी बातचीत करेंगे। तमिलनाडु, पुडुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली हल्कों और आसाम में 1 लोकसभा हल्के के जिमनी चुनाव की मुहिम आज खत्म हो गई। मंगल को इन 6 सीटों के लिए पोलिंग कराई जाएगी और वोटों की गिनती जुमा को की जाएगी। असेंबली हल्कों की पोलिंग तमिलनाडु में मदुर, कर्नाटम और धारापुरम, पुडुचेरी में थट्टाचार्य और मगरबी बंगाल में राजीनगर, नंदीग्राम में कराई जाएगी। आसाम में पोलिंग नागांव लोकसभा हल्के में कराई जाएगी। ये असेंबली सीटें मौजूदा कानून साज अरकान की तरफ से इस्तीफा दिए जाने की वजह से खाली हो गई थीं, जबकि नागांव लोकसभा सीट कांग्रेस रहनुमा प्रियादत्त बोरादोलोई के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी। इसी दौरान बीजेपी ने दिनेश आर्या को उत्तराखंड में राज्यसभा के 2 साल में एक बार होने वाले आइंदा इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। बीजेपी ने रुक्मिणी मलिक का नाम मगरबी बंगाल में राज्यसभा के जिमनी चुनाव के अपने उम्मीदवार के तौर पर पेश किया है। जापान के आईची नागोया में मुनक़िदा शानदार तकरीब के साथ एशियन गेम्स अख्ताम पजीर हुए। इस दौरान 43 खेलों के लिए 2 हफ्तों से ज्यादा जारी रहने वाले सनसनीखेज मुकाबलों का इनेकाद किया गया। अख्तितामी प्रोग्राम में रिवायती तौर पर खिलाड़ियों की परेड, एशियन गेम्स के परचम को उतारने और 2030 के मेजबान शहर दोहा को बाजाब्ता तौर पर मेजबानी सौंपने की तकरीब शामिल थी। एशियन गेम्स की अलामत समझे जाने वाले मशाल और परचम कतर के नुमाइंदों के हवाले किए गए, जिसके साथ अगले एशियाई खेलों की मेजबानी का बाजाब्ता तौर पर मुंतकली अमल में आई। इख्तितामी तकरीब में भारतीय तिरंगा उठाने का एजाज शूटिंग की उभरती हुई भारतीय खातून खिलाड़ी नीरू धांडा को हासिल हुआ। सोने के 2 तमगे जीतने वाली नीरू ने इस काबिल फखर लम्हे में भारतीय दस्ते की क्यादत की। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर ख़ारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया के बदलते हुए मंजरनामे से उभरती हुई और औसत दर्जे की ताकतों के माबैन ताउन के नए मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने अमन, मजबूत सप्लाई चेन और कनेक्टिविटी को इनका अहम एजेंडा करार दिया। ईरान ने कहा है कि अमनाए हुरमुज उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक अमरीका उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं कर देता। ईरान का इरादा है कि वह अपने मिजाइलों की किस्मों में इजाफा करेगा। 7 ओपेक प्लस मुल्कों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने सितंबर 2026 के अपने पैदावार कोटे में नवंबर के लिए कोई तब्दीली नहीं करने का फैसला किया है। स्विट्जरलैंड के सदर गोई पारमालिन भारत के 3 रोजा दौरे के लिए आज नई दिल्ली पहुंचेंगे और एशियन गेम्स 2026 जापान में जगमगाती हुई एक तकरीब के दौरान अपने अख्ताम को पहुंचे। भारत 85 तमगों के साथ 4थे मुकाम पर रहा, उसने सोने के 21 तमगे हासिल किए। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है इंस्ट्रूमेंटल मौसीकी का प्रोग्राम। आइए इस प्रोग्राम के तहत सुनते हैं उस्ताद रईस खान का सितार पर बजाया हुआ राग शंकर बिहाग।

हमें अभी आप सुन रहे थे दिले नादान फिल्म से ये नगमा तलत महमूद की आवाज़ में, जिसकी तर्ज बनाई थी गुलाम मोहम्मद ने। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश सुधा मल्होत्रा की आवाज़ में फिल्म भाई बहन से।

सामिन, अभी आप सुन रहे थे बेकसूर फिल्म से ये नगमा, मुकेश जी एम दुर्रानी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, जिसकी तर्ज बनाई थी अनिल बिस्वास ने और बोल थे एहसान रिजवी के। हाजिर है इस प्रोग्राम की अगली पेशकश सुरेंद्र और शमशाद बेगम की आवाज़ में, फिल्म अनोखी अदा से।

अब आप फैसल हबीब से खबरें सुनिए। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि दुनिया के बदलते हुए मंजरनामे से उभरती हुई और औसत दर्जे की ताकतों के माबैन ताउन के नए मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने अमन, मजबूत सप्लाई चेन और कनेक्टिविटी को इनका अहम एजेंडा करार दिया। ईरान ने कहा है कि अबनाए हुरमुज उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक अमरीका उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं कर देता। ईरान का इरादा है कि वह अपने मिसाइलों की किस्मों में इजाफा करेगा। 7 ओपेक प्लस मुल्कों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने सितंबर 2026 के अपने पैदावार कोटे में नवंबर के लिए कोई तब्दीली न करने का फैसला किया है। स्विट्जरलैंड के सदर गोई पारमालिन भारत के 3 रोजा दौरे के लिए आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। और एशियन गेम्स 2026 जापान में जगमगाती हुई एक तकरीब के दौरान अख्ताम को पहुंचे भारत 85 तमगों के साथ चौथे मुकाम पर रहा। उसने सोने के 21 तमगे हासिल किए। अब खबरें तफसील से। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि बैनुल अक़वामी अमन सलामती, सप्लाई चेन की मजबूती और कनेक्टिविटी वो अहम शोबे हैं जिनमें उभरती हुई और औसत दर्जे की ताकतें अहम रोल अदा कर सकती हैं। डॉक्टर जयशंकर कल नई दिल्ली में 62वें म्यूनिख सलामती कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुनिया इसका एजेंडा और इसका जोग्राफियाई व सियासी मंजरनामा ये सब अहम तब्दीलियों के मरहले से गुजर रहे हैं जिससे उभरती हुई और औसत दर्जे की ताकतों के माबैन ताउन का एक खातिर ख्वाह माहौल पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये सब अमरीका की एक नई हैसियत कायम होने, चीन की तरक्की करने और बढ़ते हुए आलमी इन्हिसार के मुतरादिफ हैं। क्वाड को एक मिसाल के तौर पर पेश करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि इससे औसत दर्जे की ताकतों के माबैन ताउन का इजहार होता है। वज़ीर ख़ारजा ने जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग, सेमी कंडक्टर्स, मसनूई जहानत, एआई और खला से मुतालिक सलाहियतों को अहम शोबे करार दिया जिसमें भारत यूरोपीय यूनियन ताउन में तोसी की जा सकती है। ईरान ने कहा है कि अबनाए हुरमुज उस वक्त तक दोबारा नहीं खोली जाएगी जब तक अमरीका उन 7 शर्तों को पूरा नहीं कर देता जो जून के एक अबूरी मुआहदे में पेश की गई हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने कल पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ के हवाले से बताया कि उन्होंने कहा है कि अबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने पर ईरान का मौकिफ पूरी तरह वाज़े और मुसम्मम है। उन्होंने कहा कि अबनाए हुरमुज को दोबारा उस वक्त तक नहीं खोला जाएगा जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं हो जाएंगी। ये शर्तें इस्लामाबाद मफाहमतनामे पर मबनी हैं। इसके अलावा ईरानी फौज के तर्जमान मोहम्मद आक्रामीनिया ने कहा कि ईरान अमरीका के साथ अपनी हालिया जंग के बाद अपने मिसाइलों की तादाद में इजाफा करेगा। एक खबर एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तनाजे से ईरान की यह जरूरत उजागर हो गई है कि वह तवील दूरी की मिसाइल तैयार करे और मुल्क ने इस तरह के इकदाम शुरू कर दिए हैं। ज़राअत और किसानों की बहबूद नीज देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने 3 लाख मकानात की पहली खेप आंध्र प्रदेश के सुपुर्द की जिन पर 3,600 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये मकानात प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे मरहले के तहत आंध्र प्रदेश के सुपुर्द किए गए हैं। इसके लिए गुंटूर जिले में एक तकरीब मुनक्द की गई। जनाब चौहान ने पहले आजमाइशी हाउसिंग प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा जिसमें 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके तहत 14 करोड़ रुपए की लागत से 177 मकान तामीर किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू भी इस मौके पर मौजूद थे। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने इज्तिमा से खिताब करते हुए इस प्रोजेक्ट को देही मकानात को जदीद शक्ल दिए जाने की जानिब एक बड़ा कदम करार दिया। 7 ओपेक प्लस मुल्कों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने सितंबर 2026 के अपने पैदावार कोटे में नवंबर के लिए कोई तब्दीली न करने का फैसला किया है। यह फैसला कल एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान किया गया जिसमें मुल्कों ने तेल की आलमी मार्केट के हालात और मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया। यह ग्रुप हर महीने मीटिंग का इनकाद करेगा और अगली मीटिंग यकुम नवंबर को मुनक्द की जाएगी। इसके अलावा मुश्तरका वजारती मॉनिटरिंग कमेटी JMMC की 68वीं मीटिंग में
بین الاقوامی سمندری راستوں اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا گیا اور خبردار کیا گیا کہ حملوں اور رکاوٹوں کی وجہ سے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے اور توانائی کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکہ کے ساحلی محافظ دستے نے تصدیق کی ہے کہ برمودا سے بوسٹن جانے والے لاپتہ طبی طیارے کا ملبہ نانٹکٹ کے ساحل کے قریب سے ملا ہے۔ طیارے نے کینیڈا کے 4 اور برمودا کے 2 شہری سوار تھے۔ شہری ہوا بازی کی وفاقی انتظامیہ نے کل رات تقریباً 2 بجے کوسٹ گارڈ کو اطلاع دی کہ گلف سٹریم G100 طیارہ جس کا ٹیل نمبر CGRJP ہے سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ تلاش میں مصروف ساحلی محافظ دستے نے بتایا ہے کہ ملبہ اسی طیارے کا ہے اور طیارے میں سوار 6 افراد کی تلاش جاری ہے۔ لائیو ATC.net پر جاری کیے گئے ایئر ٹریفک کنٹرول کے آڈیو سے پتا چلا ہے کہ پائلٹ نے ساحل کے قریب پہنچنے کے دوران بجلی کے نظام میں خرابی کی اطلاع دی اور ایمرجنسی صورتحال کا اعلان کیا تھا۔ سوئٹزرلینڈ کے صدر گائی فارمالن بھارت کے 3 روزہ دورے کے لیے آج نئی دلی پہنچیں گے۔ وہ اعلی سطح

0: और 2030 के मेजबान शहर दोहा को बाजाब्ता तौर पर मेजबानी सौंपने की तकरीब शामिल थी। एशियन गेम्स की अलामत समझे जाने वाले मशाल और परचम कतर के नुमाइंदों के हवाले किए गए, जिसके साथ अगले एशियाई खेलों की मेजबानी की बाजाब्ता तौर पर मुंतकली अमल में आई। इख्तितामी तकरीब में भारतीय तिरंगा उठाने का एजाज शूटिंग की उभरती हुई भारतीय खातून खिलाड़ी नीरू धांधा को हासिल हुआ। सोने के दो तमगे जीतने वाली नीरू ने इस काबिल फख्र लम्हे में भारतीय दस्ते की क्यादत की। भारत मजमुई तमगों की फहरिस्त में चीन, जापान और जनूबी कोरिया के बाद चौथे मुकाम पर रहा। भारतीय दस्ता 85 तमगों के साथ वतन वापस लौटा, जिसमें सोने के 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगे शामिल हैं। ये एशियन गेम्स की तारीख में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तमगों की तादाद है, जो सिर्फ 2023 में हांगजू में हासिल किए गए रिकॉर्ड तमगों की तादाद से कम है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर ख़ारिजा डॉ जयशंकर ने कहा है कि दुनिया के बदलते हुए मंजरनामे से उभरती हुई और औसत दर्जे की ताकतों के माबैन ताउन के नए मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने अमन, मजबूत सप्लाई चेन और कनेक्टिविटी को इनका अहम एजेंडा करार दिया। ईरान ने कहा है कि अब नए हुरमुज उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक अमरीका उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं कर देता। ईरान का इरादा है कि वह अपने मिजाइलों की किस्मों में इजाफा करेगा। 7 ओपेक प्लस मुल्कों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने सितंबर 2026 के अपने पैदावार कोटे में नवंबर के लिए कोई तब्दीली न करने का फैसला किया है। स्विट्जरलैंड के सदर गाई पारमालिन भारत के 3 रोजा दौरे के लिए आज नई दिल्ली पहुंचेंगे और एशियन गेम्स 2026 जापान में जगमगाती हुई एक तकरीब के दौरान अपने अख्ताम को पहुंचे। भारत 85 तमगों के साथ चौथे मुकाम पर रहा। उसने सोने के 21 तमगे हासिल किए। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब का एक बजे चाहता है उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात अब अख्ताम पजीर होती हैं। सुबह 9:30 पर पहली मजलिस की नशरियात लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। जय हिंद। नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य भी बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्य स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी सीईपीए पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। दोनों देशों के अधिकारी अब इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से प्रगति के इच्छुक हैं। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई पार

0: तीन दिन की आधिकारिक भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनके साथ वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबारी जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पार्मेलियन विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा के लिए वार्ता करेंगे। दोनों नेता बहुपक्षीय परिदृश्य में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रूपये की लागत के 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। यह कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि भदोही जिले का नाम अब संत रविदास नगर भदोही होगा। उन्होंने भदोही में एक कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने 1,340 करोड़ रूपये से अधिक की 112 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। मतदान कल मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टनचावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जल डमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिन तक मुंबई, ठाणे और पालघर के कुछ इलाकों में गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान जताया है। रायगढ़ और रत्नागिरी में भी ऐसी ही स्थिति हो सकती है। हालांकि कल से कोंकण क्षेत्र में मौसम के ज्यादातर शुष्क रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हिमाक्षी पंवार। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are among the key areas where emerging and middle powers can play an important role. Dr. Jayashankar was speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi yesterday. He said the world, its agenda and its geopolitical landscape are all undergoing significant changes, creating substantial scope for cooperation among emerging and middle powers.
2: There is today a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. The world is changing, its agenda is changing, the landscape is changing, the architecture is changing, and I'm very glad that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose and a clearer direction.
1: The minister also emphasized that Russia is a country that stood by India in many ways when India's security and territorial integrity was under threat. He stressed that at a time when much of the world preferred backing a military regime next to India, Russia was a country with which India's relations were very good. Dr. Jayashankar termed the Russia-Ukraine conflict as unfortunate, saying that India's position has been very clear that it would like to see an end to this conflict. India and Canada will kick off the 5th round of negotiations today for their proposed Comprehensive Economic Partnership Agreement in Ottawa, as both sides aim to conclude the trade pact by the end of 2026. The 5-day round, led by the chief negotiators of the two countries, will continue till 9th of this month. The previous round concluded in New Delhi on 18th of last month, with officials now pushing for faster progress towards a final agreement.

यह आकाशवाणी दिल्ली का एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। मध्य रात्रि के 1:10 हुए हैं। आपकी दोस्त कीर्ति आपके साथ है कार्यक्रम गीत सुनहरे लेकर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं पुराने फिल्मी नगमे जो आज भी आपके दिल में कहीं ना कहीं बसे हैं, और बस इस कार्यक्रम के माध्यम से उन यादों को ताजा करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला गीत आपके लिए आ रहा है मुकेश की आवाज।

मुकेश की आवाज के बाद अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में अगला गीत फिल्म काला पानी से। इस गीत के बोल लिखे थे मजरूह ने और संगीत से पिरोया था एसडी बर्मन ने।

0: रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: अंदर है तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: गीत सुनहरे कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म चलती का नाम गाड़ी से, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। इस गीत के बोल मजरूह ने लिखे थे और संगीत एसटी बर्मन ने दिया था।
1: मगर आपने तो कहा था कि
2: हीराब,
1: तुमने तो कहा था कि कुछ काम वाम करने का है, यहाँ तो कुछ गाड़ी वाली भी नहीं दिखाई देती, मैं मरम्मत किसकी करूँगा?
2: अरे गाड़ी की मरम्मत किसी और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता।
1: और भला क्या काम हो सकता है?
2: और बहुत से काम हो सकते हैं।
1: जैसे?
2: कर सकोगे?
1: मैं हर काम कर सकता हूँ।
2: सोच लो।
1: सोच लिया।
2: और अगर न कर सके तो?
1: हार मान जाऊंगा।
2: ऐसे नहीं, कोई शर्त होनी चाहिए।
1: क्या?
2: हाँ, अगर तुम हार गए तो ये टोकरी उठाकर सारा दिन साथ घूमना पड़ेगा।
1: टोकरी?
2: मंजूर।
1: मंजूर, काम तो बताइए।
2: जरा सोच तो लू।
1: हाँ।
2: वो देखते हो वो?
1: हाँ हाँ।
2: क्या?
1: मुर्गी।
2: हाँ पकड़ लाओ।
1: मुर्गी?
2: हाँ।
1: ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी पकड़ता हूँ। ये लीजिए।

गीत सुनहरे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त कीर्ति के साथ, और अगला गीत जो हमारी फेहरिस्त में है वो हम आपको सुनवाएंगे फिल्म गाइड से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

और अगला गीत फिल्म श्री 420 से। नन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज में श्री, आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

और अब इस कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। फिल्म हम दोनों से अगला गीत आ रहा है। गीत के बोल साहिर ने लिखे थे और संगीत जयदेव का है। आइए सुनते हैं जो आपका दिल हमारे लिए कह रहा है।

0: इसी आखिरी गीत के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की दीजिए अपनी दोस्त कीर्ति को इजाजत। फिलहाल समय है समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य भी बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: उन्होंने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए पर बातचीत का पांचवां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में पांच दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। दोनों देशों के अधिकारी अब समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से प्रगति के इच्छुक हैं। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलेन 3 दिन की आधिकारिक भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनके साथ वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबारी जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पारमेलेन विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा के लिए वार्ता करेंगे। दोनों नेता बहुपक्षीय परिदृश्य में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को कल 3,600 करोड़ रुपए की लागत के 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। यह कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधार

0: चर्चिला भी रखी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणि मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। मतदान कल मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस भूमि पर किसी भी प्रकार की अनुचित और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विश्व हिन्दू परिषद के पूर्व अध्यक्ष और राम मंदिर आंदोलन के नेता अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी के अवसर पर कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राष्ट्र विरोधी ताकतें पूरे देश में सक्रिय हैं। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने अपने राष्ट्रीय युवा मंच माई भारत के माध्यम से कल देश भर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1,00,000 से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुपर इंटेलिजेंस फोर्स नामक नई सरकारी कार्यबल की घोषणा की है। यह कार्यबल संघीय सरकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से जुड़े प्रयासों के बीच समन्वय का काम करेगा। राष्ट्रीय खुफिया निदेशक जे क्लेटन के नेतृत्व वाले इस कार्यबल में संघीय व्यापार आयोग, रक्षा विभाग और कार्मिक प्रबंधन कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में गरज और चमक के साथ वर्षा तथा बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हिमाक्षी पवार। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are among the key areas where emerging and middle class can play an important role. Dr. Jaishankar was speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi yesterday. He said the world, its agenda and its geopolitical landscape are all undergoing significant changes, creating substantial scope for cooperation among emerging and middle powers.
2: There is today a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. The world is changing, its agenda is changing, the landscape is changing, the architecture is changing, and I'm very glad that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose and a clearer direction.
1: The minister also emphasized that Russia is a country that stood by India in many ways when India's security and territorial integrity was under threat. He stressed that at a time when much of the world preferred backing a military regime next to India, Russia was a country with which India's relations were very good. Dr. Jaishankar termed the Russia-Ukraine conflict as unfortunate, saying that India's position has been very clear and that it would like to see an end to this conflict. India and Canada will kick off the fifth round of negotiations today for their proposed Comprehensive Economic Partnership Agreement in Ottawa, as both sides aim to conclude the trade pact by the end of 2026. The five-day round, led by the chief negotiators of the two countries, will continue till 9th of this month. The previous round concluded in New Delhi on 18th of last month, with officials now pushing for faster progress towards a final agreement. Swiss President Guy Parmelin will arrive in New Delhi today for a three-day state visit to India. He will be accompanied by a high-level delegation comprising senior officials and business leaders. Prime Minister Narendra Modi and President Parmelin will hold bilateral discussions to review progress in bilateral cooperation across a wide range of areas. These include trade and investment, science, technology and innovation, mobility, culture and people-to-people contact. The visiting dignitary will also meet President Draupadi Murmu and External Affairs Minister Dr. Jaishankar. Union Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan handed over the first installment of 3 lakh houses.

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। मध्यरात्रि के 2:10 अब हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम गीत बहार, और इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त कीर्ति। तो चलिए फेस तैयार है और इन गीतों के सफर पर निकल चलते हैं और सुनते हैं इन गीतों को 3 बजे तक। आइए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।
1: कमान अरुण, मेरी पार्टी में रंग कैसे जमेगा जब तक तुम शेर नहीं सुनाओगे।
2: हाँ, कमान अरुण,
3: कमान कमान कमान यार,
2: क्या करूँ यार, आज कोई शेर ही नहीं बन रहा।
4: अरे ये क्या हुआ,
2: ये तो शम्माई बज गई। अरे अब तो इसे खुदा ही रोशन कर सकता है भाई। अरे चेक करो यार, फिर तो नहीं गया
1: क्या मालूम।
2: अरे भाई किसी के पास माचिस वाचिस है कि नहीं।
5: हाँ हाँ मेरे पास है। ये आंखें, ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने।

0: इसी गीत के साथ नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इजाजत। रात्रि के 3 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में हिंदी व अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
2: There are countries who are emerging.
3: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: उन्होंने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं। सोवियत संघ कई मौकों पर भारत के साथ खड़ा रहा, खासकर तब जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई पारमेलन 3 दिन की आधिकारिक भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनके साथ वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबारी जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पारमेलन विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा के लिए वार्ता करेंगे। दोनों नेता बहुपक्षीय परिदृश्य में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितम्बर को नई दिल्ली में हुई थी। दोनों देशों के अधिकारी अब समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से प्रगति के इच्छुक हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। मतदान कल मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने 23 अक्टूबर को होने वाले महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। ये चुनाव स्नातक और शिक्षा निर्वाचन क्षेत्रों की 5 सीटों के लिए होगा। भाजपा ने पुणे संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से स्मिता जाधव

पहली बार एक गजल पेश कर रहा हूं जो उर्दू बहर या मीटर के बजाय हिंदी छंदों के वजन है। उम्मीद है ये तजुर्बा आपको पसंद आएगा। मुलाहिजा फरमाएं।

श्रोताओं, इसी के साथ है गीत और गजलों का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का एयरलाइव न्यूज 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 4 बजे है। लीजिए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण को समर्पित एक रचना, स्वर चेरतला आर गोपालन नायर और के राधामणि के हैं।

0: इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एआई लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 4:20 हुए हैं। ये वक्त है कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम का। इसे सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे शीरगाजी एस गोविंदराजन का रागम कल्याणी में गायन। आपके साथ वायलिन पर हैं तिरुप्परकरल एस वीर राघवन।

0: இசைந்த தாண்டவ மூகில்.
1: इसी के साथ कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म अब यहीं संपन्न होता है. नमस्कार.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के अश्विन मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 5 अक्टूबर 2026। सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से अवगत करा देते हैं। अच्छा, थोड़ी देर में ठीक 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। आज के आओ योग करें कार्यक्रम में आप सुनेंगे गौ मुखासन के बारे में। 5:20 का वक्त है देशभक्ति गीतों का। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी आप सुन सकते हैं 5:30 पर। प्रातः 6:10 का वक्त है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन। आज के चिंतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्री कृष्ण नीति राजनीति और आध्यात्म का समन्वय। छह बजकर 45 का वक्त है श्री रामचरितमानस से पाठ का। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 69। पूरे 7:10 पर आप सुन सकते हैं संगीतिका कार्यक्रम। आज के संगीतिका में आप सुनेंगे सुकृति सेन के भजन। 7:30 का वक्त है गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। 7:40 संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसका वक्त रहेगा प्रातः 8:45।

देवपुरी मैं गया आप परमेश्वर पाया हर सिंघासन दिया श्री गुरु तह बैठाया रहस्य किए।

बरन चहन नाही मुख नाम सारे जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार संसार अगम सागर तुल्हा हर नाम गुरु मुख पाया जग जन्म मरण।

सगल पवन तारे एक थे किए बिस्तारे पूर रे ओ सर्व में आप है नरारे हर गुण नाही अंत पारे जी जंत सब थारे सगल को दाता एक है।

0: गुण गावे नवनाथ धन गुरु साज समायो मां दादा गुण रवे जे चक्कर वे कहायो गुण गावे बलरा सपत पताल बसंतो पर सरगुण उच्चरे सदा गुर संग्रह तो दूर बापुर अंग्रे गुरु नानक जस गायो कब काल सजस नानक गोर कट कट सहज समायो कमन जोग कौन ज्ञान ध्यान कमन विस्तृत करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तेर कीम ना परिए ब्रह्मा दर्शन कार से गुणंत ना पाए अगा ग्यो नहीं जाए पूर सर्वरिया समाए जे काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते हर गुर नानक जिन परस्यो ते इत उत सदा मुक्ते।
1: आदि पुरख करतार करण कारण सब आपे सर्व रहो भरपूर सगल कट रहो व्यापे व्यापत देखिए जगत जाना कौन तेरी गत सर्व की रखिया करे आपे हर पत अबनासी अबगत आपे आप उत्पत एक तू ही एक अन्नाही तुम पत हर अंत नाही पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाना हां के बल बल बल बल

सुर नर असुर अंत नहीं पायो पायो नहीं अंत सुरे असुरे नर गंधर खो जंत फिरे अबनासी अचल अजूनी संभो पुरखोतम अपार परे करण कारण समरथ सदा सोई सर्व जी मन ते आयो।

फुन बांधी साठ कठोर कचील को ज्ञानी धावत भ्रमत रहन नहीं पावत पार ब्रह्म की गत नहीं जानी जोबन रूप माया मधुमाता विचरत बिकला बड़ो अपमानी पर तन पर अपवाद नार निंदा जह मीठी जी माहेतानी बल बंच शप करत उपावा पेख तो सुन तो प्रभ अंतर जामी सील धर्म दया सुच नास तो आयो शरण जी के दानी कारण करण समर्थ।

नित पुराण बाचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जुन सिर शत्र

0: सो कवण कह श्री गुर मोयो।
1: गुरु मुख देख गुरु सुख पायो, हुती जो प्यास पीयूष पीवन की, बंछत सिद्ध गो बिद मिलायो। पूरन पाओ मन ठोर बसो, रस बासन स्यो जो दहन दिस्तायो। गोबिंद वाल गोबिंद पुरी सम, जलन तीर विपास बनायो। गयो दुख दूर।

सब रचना ब्रह्मा दिक शिव शांत मुनीसर रस रस ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख तरन गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख देव अर दानव इक तिल ताको मर्म न पावत प्रिया प्रभ प्रीत प्रेम रस भगती हर जन ताके दर्श समावत।

पुले सते दारा से प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत ते है मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरे रामदास राखो सरनाई एक अरदास

अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाई।

श्री सहज सुहिले गुण अमोले जगत उदाहरण आई पै

他阿弥陀佛，他娑诃婆耶，多克那斯巴拉玛贝那斯塔那提，扎帕扎格迪斯伊萨哈，扎扎耶，摩诃拉哈特贝卡尔塔克。पांचते सांग तूटा कहो नानक तेन खन्नी वन्या